0: उन्होंने नेटिव की सहकर्मी से दूसरा विवाह किया। वर्ष 2021 में जब उन्होंने स्क्रैम्बल की शुरुआत की तो निवेशकों की रुचि कम होने के कारण उनकी पत्नी के घर वालों ने शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई और पहले ही वर्ष में कंपनी ने 4.25 करोड़ का कारोबार कर डाला, जो दूसरे साल में दोगुना हो गया और तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो 15 करोड़ का पहुंच चुका था। फिलहाल उनकी टीम में 56 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अब तक 1000 से ज्यादा ग्राहक कंपनियों के साथ काम किया है। स्क्रैम्बल ने मात्र 3 साल में ही 15 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ये व्यावसायिक विकास उनके व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता और उनकी टीम के समर्पण को रेखांकित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमत और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पछताना, तब सिर्फ 16 साल की थीं। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पछताना का सामना हुआ, उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में, जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं, एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पछताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पछताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था। वो कॉन्फ्रेंस के लिए काबुल जाया करती और सबसे बढ़कर उन्हें पिता का पूरा साथ हासिल था। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जब पछताना काबुल जा रही थी, तब उसी बहन ने हुकूमत के नाम एक खत दिया जिसमें ये करुण गुजारिश थी कि उनके जिले में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए ताकि वो भी पढ़ सके। सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आना था ना आया, लेकिन पछताना उस हसरत के आगे पसीज उठी। आखिरकार उन्होंने उस बच्ची के पाठ्यक्रम की सामग्री और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पछताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पछताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थीं, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गई। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पछताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 250 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पछताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई, वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था, अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका। मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान, जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता। कई तरीके हो सकते हैं, घर सजाने का, खाना बनाने का, या कोई सामान बेचने का। कोई एक सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतने तरीके आपके पास होंगे। हम अपने दिमाग को बंद रखेंगे तो नए विचार कहां से आएंगे उसमें। तो बड़े बूढ़े कहते भी है ना, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। यानी कि अगर हम क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ अलग हटके सोचना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी सोच उसको रोकती है, हमें सोचने नहीं देती। इसलिए कई बार पुरानी सोच को हमें छोड़ना होगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तीन नियम जिंदगी को खूबसूरती से जीने के। नियम नंबर एक, आपका अपना दुख, दर्द या तकलीफ उतनी ही सच्ची है जितनी दूसरों की। हो सकता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे के लिए आसान हो, लेकिन इससे आपका दर्द कम नहीं हो जाता। अपने दर्द के बारे में बात करना, उसको ठीक करना आपका हक है। आपका दर्द मायने रखता है, आपका अनुभव मायने रखता है, आपका उबर कर आगे बढ़ना भी जायज है। नियम नंबर दो, कोई एक दिन ऐसा होता है जब दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, होता है ना ऐसा। मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। शांति की सांस लेते हुए हम अपने भीतर के गुबार को छोड़ने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। हम छोड़ दें उस विचार को जो भीतर अवसाद भरे जा रहा है। जाने देना यानी जो हुआ उसे मानते हुए आगे बढ़ जाना, भले ही उसके लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन उसे छोड़ना ही होगा। नियम नंबर तीन, जिंदगी के संघर्ष समझ नहीं आते, लेकिन उसके मायने होते तो हैं। जब कभी हम अपने बीते कठिन दिनों को देखते हैं, उस वक्त ये समझ में आता है कि उनके कारण ही हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। तब हम अपने संघर्षों को सलाम करते हैं। चुनौतियां केवल तोड़ती नहीं है, हमें मजबूत भी बनाती हैं। निरंतर किए गए प्रयास और संघर्ष से ही ताकत और तरक्की मिलती तो है। फिर मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, इस स्नेह की एक लघु कथा सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी जो सुकेश साहनी साहब ने लिखी है, धुएं की दीवार। बंटवारे से पहले इन दोनों भाइयों अमीचंद और दुलीचंद में बहुत प्यार था, उनके परिवार में भी। आज बंटवारे के बाद जब उनके मकान के बीच में एक दीवार खींच दी गई, तब अमीचंद शीशे के सामने खड़ा होकर पगड़ी बांध रहा था। बंटवारे के बाद वो पहली बार बाजार जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। पहले हर महीने वो बेले वाला के हाट में बाजार में जाकर सबके लिए जरूरी सामान लाया करता था, दुलीचंद और उसके बच्चों के लिए भी लाता था। उसने खिड़की के बाहर एक उदास सी निगाह डाली। अपने मकान की दो हिस्सों में बांटती हुई दीवार उसके दिल को चीरती चली गई। बंटवारे वाले दिन से उसके और छोटे भाई दुलीचंद के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद थी। बाहर दुलीचंद श्यामा गाय को धोने की तैयारी कर रहा था। बंटवारे में गाय उसके हिस्से में आई थी। अभी अमीचंद की नजर अपनी बेटी पर पड़ गई। वो हाथ में बड़ा सा गिलास लिए चुपके से अपने चाचा की ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाकर बेटी को रोकना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुलीचंद ने मुस्कुराकर अपनी भतीजी की तरफ देखा। जवाब में वो भी धीरे से हंस दी। दुलीचंद ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और झटपट उसमें दूध डाल दिया। अमीचंद एकटक इस दृश्य को देख रहा था। ठीक उसी समय दुलीचंद की पत्नी भी घर से निकली। अब अमीचंद को पूरा विश्वास हो गया कि बहू उसकी बेटी के हाथ से दूध भरा गिलास छीनकर फेंक देगी और ना जाने क्या क्या बकेगी। बंटवारे के समय भी उसने बहुत झगड़ा किया था। अमीचंद लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, और कहीं पति दुलीचंद उसे देख ना लें, वो डर से तुरंत भीतर भाग गई। अमीचंद की बेटी ने एक सांस में ही दूध का गिलास खाली कर दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ी। अमीचंद की आंखें भर आईं। उसको लगा घर के बीच की दीवार गायब हो गई। अमीचंद घर से बाहर आया और अड़ोस पड़ोस को सुनाता हुआ ऊंची आवाज में बोला, ओए दुल्ली, मैं बेले गांव जा रहा हूं बाजार, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम सबके लिए सामान ले आऊंगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

लीजिए दोस्तों, एक और बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त ये थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था, मिठाई और अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते थे, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता था। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिसमें राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए इस चक्कर में। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती ही होती है, ये राजकुमारी तो पागल हो गई है, ये केवल हमको सबको पिटवाने का मजा लूटना चाहती है और कुछ नहीं। ये नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लग गया। उसने कहा, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती तक नहीं आती। अब ये सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। और राजा ने उससे पूछा, अच्छा जी, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुना दो। हलवाई बोला, राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं तो आप लोगों के बराबर नहीं हूं, और स्वयंवर में तो सिर्फ राजाओं को ही बुलाया गया है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी हुई राजकुमारी बोल पड़ी, अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर तुमने गिनती सुना दी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, कोड़े नहीं। सब ये देखते ही रह गए कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कह दिया गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब यहां एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशाएं, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब लोग हक्के पक्के रह गए। राजकुमारी ने हलवाई से शादी की। दोस्तों इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहां शिक्षा से बड़ा तजर्बा निकला। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready. Dil ready. मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

अदाकार सिर्फ फिल्में नहीं करते, वो एक पूरा अंदाज बन जाते हैं। एक मुस्कुराहट, एक खास चाल, वो आवाज, वो टोपी और वो एवरग्रीन चार्म। आज की बातें इधर की उधर की में हम बातें करेंगे उस सितारे की जिसके लिए एवरग्रीन सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक पहचान थी। चलिए देव साहब के जन्मदिन पर खोलते हैं कुछ पुराने पन्नों को, कुछ अनजाने किस्सों को और बहुत सारी यादों को। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एस एन रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। देव आनंद 85 रुपीस की नौकरी से एवरग्रीन हीरो तक, जो स्टारडम देवानंद ने देखा है दोस्त, वो शायद ही या उनके पहले या उनके बाद कभी भी किसी एक्टर ने देखा हो। आज का सवाल ये है कि अगर आपको कोई सपना दिया जाए लेकिन जेब में आपके सिर्फ 85 रुपीस हों, तो क्या आप उस सपने के पीछे जाएंगे या फिर कहेंगे पहले थोड़े पैसे कमा लेते हैं फिर सपना अपना देखेंगे। लेकिन हिंदी सिनेमा के एक एवरग्रीन हीरो ने शायद दूसरा ही रास्ता चुना। नाम था देवानंद, जिनके नाम के साथ ही एक अंदाज याद आ जाता है, थोड़ा सा झुक कर चलना, वो खास सी स्माइल, तेज तेज डायलॉग बोलना और वो स्टाइल की आदमी स्क्रीन पर आए तो आंखें बस उसी पर टिक जाएं। लेकिन आज की कहानी सुपरस्टार देवानंद की नहीं है, स्ट्रगलिंग देवानंद की है। आज हम उन्हें एक लेजेंड के रूप में जानते हैं, लेकिन मुंबई में स्ट्रगल करते वक्त देवानंद ने अकाउंटेंसी फर्म में क्लर्क की नौकरी की थी और सिर्फ 85 रुपीस महीने कमाते थे। बाद में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में भी काम किया जहां उनकी सैलरी थी 160 रुपए। सोचिए आज जिस नाम को हम सिनेमा की चमक से जोड़ते हैं उसकी शुरुआत एक छोटी सी बहुत ही मामूली सी सैलरी से हुई थी। लेकिन यही एक बात और याद आती है, हर बड़ा काम कभी ना कभी एक छोटी सी शुरुआत ही तो था। आपको याद है आपकी पहली सैलरी, चाहे 500 हो, 1000 हो या 1500 हो, या फिर पहली सैलरी का वो पहला एनवेलप ही याद कर लीजिए जिसे खोलते वक्त लगता था, वाह अब मैं भी कमा रहा हूं। दैट फीलिंग, दैट इज प्राइसलेस। पहली कमाई छोटी हो सकती है लेकिन उसके साथ जो खुशी होती है दोस्तों, वो कभी छोटी हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। देवानंद के लिए भी वो स्ट्रगल एक मंजिल की तरफ जाने का रास्ता था। देवानंद का पूरा नाम था धर्मदेव आनंद और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उनका निक नेम था चीरू। जी हाँ, चीरू। उनकी पढ़ाई डलहौजी और लाहौर तक हुई और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया। लेकिन फिर एक्टिंग का सपना उन्हें मुंबई खींच ही लाया। और यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्हें एक्टिंग की तरफ प्रेरित करने वाले बड़े बड़े नामों में से अशोक कुमार जी भी थे। अशोक कुमार जी की फिल्में देखकर देवानंद को एक्टिंग को सीरियसली लेने की प्रेरणा मिली और फिर वही अशोक कुमार उन्हें फिल्म जिद्दी में ब्रेक देने वाले शख्स बन गए। क्या कहानी है ना, बोलते हैं ना लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, बिल्कुल ऐसे ही। एक कलाकार किसी दूसरे कलाकार को स्क्रीन पर देखता है, प्रेरित होता है और कुछ सालों बाद उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी ना हमें अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही किसी एक इंसान की जरूरत होती है जो हमसे कहे तुम कर सकते हो। बस कभी कभी एक सेंटेंस, एक मौका और एक इंसान का आप पे भरोसा आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है।
और देवानंद की कहानी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है उनका स्टाइल। आज हम किसी एक्टर की हेयर स्टाइल, जैकेट या कैप को देखकर कहते हैं, यार क्या स्टाइल है। लेकिन देवानंद के जमाने में उन्होंने अपना एक अलग ही अंदाज बना लिया था। उनका स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं था, उनका चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, सब कुछ एक सिग्नेचर था। और उनके ब्लैक सूट को लेकर तो एक मशहूर किस्सा भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक काला पानी के बाद उन्हें पब्लिक में ब्लैक सूट ना पहनने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि उनकी ब्लैक सूट वाली अपीयरेंस को लेकर फीमेल फैंस की दीवानगी के किस्से बहुत मशहूर हो गए थे। ये एक रिपोर्टेड एनेक्डोट है जिसे मीडिया में अलग अलग तरह से बताया गया है। मतलब आज हम कहते हैं ब्लैक इज क्लासी, उस जमाने में देवानंद ने शायद इसे ब्लैक इज डेंजरस बना दिया था। अच्छा बताइए, आपके हिसाब से किसी एक्टर को स्टाइल आइकॉन क्या बनाता है? उसके कपड़े, हेयर स्टाइल, आवाज, चलने का अंदाज या फिर एक अपनी अलग पहचान? क्योंकि फैशन तो बदलता रहता है, लेकिन जो सिग्नेचर स्टाइल होता है बस वो याद रह जाता है। और फिर वही देवानंद जो कभी 85 रुपीस की नौकरी कर रहे थे, हिंदी सिनेमा में 100 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बने, और गाइड, ज्यूल थीफ, जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा जैसे नाम उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गए, एक किस्सा बन गए। तो आज की बात शायद सिर्फ देवानंद के बारे में नहीं है दोस्तों, बात है शुरुआतों के बारे में। आप कहां से शुरू होते हैं इससे ज्यादा जरूरी है आप रुकते कब हैं। अगर सपना सच में अपना है तो 85 रुपीस से शुरू हुई कहानी भी एक दिन बहुत बड़ी हो सकती है, लेजेंड बन सकती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, उससे बस इतना कहना, कुछ नहीं है या कहानी अभी शुरू हुई है। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की और देवानंद साहब की, जहां पुरानी फिल्मों के पर्दे के पीछे कभी कभी जिंदगी की एक नई बात सामने आती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: देखो भैया, अगर गलती हो जाए ना कोई, तो पता है क्या करना चाहिए? शांति से बैठो, सोचो कि नाम किसका लगाना है।

0: और अब बात इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: नमस्ते, मैं हूँ उषा नागराजन। मैं बातें इधर की उधर की SN रेडियो के लिए कहानी पढ़ना चाहती हूँ। कहानी कुछ ऐसी है, बहुत समय पहले विजयनगरम नाम का एक महान राज्य था। राजा कृष्णदेवराय इस राज्य पर शासन करते थे। वो बहुत अच्छे राजा थे। वो चाहते थे कि उसकी प्रजा बहुत खुश रहें। उनके पास कई बुद्धिमान मंत्री और बहादुर सैनिक थे। तेनालीराम दरबार के सबसे लोकप्रिय मंत्री थे। तेनालीराम बहुत मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक कवि भी थे और राजा के अच्छे एडवाइजर भी थे, लेकिन सभी मंत्री उनसे जलते थे। एक दिन दरबार में राजा ने सवाल पूछा, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने एक जगह के बारे में सुना था जिसे सबसे खूबसूरत कहा जाता था। कहा जाता था वो स्वर्ग था। अभी मैं उस जगह यानी स्वर्ग देखना चाहता हूं। क्या तुम लोगों में से किसी को पता है ये जगह कहाँ है? सभी मौन रहे, बिल्कुल खामोश। तब महाराजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम तुम्हें स्वर्ग के बारे में पता है? तेनालीराम कहे, महाराज मैं जानता हूं स्वर्ग कहाँ है, लेकिन उसे आपको दिखाने के लिए मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने के समय जरूरत है। दरबार में बैठे सभी हंसने लगे। महाराजा सबको चुप करा के फिर तेनालीराम से कहते, तेनालीराम मैं तुमको 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने का समय दूंगा, लेकिन अगर 2 महीने के आखिर में नाकाम रहे तो कड़ी सजा मिलेगी, बोलो मंजूर है? तेनालीराम बोले, जी महाराज मंजूर। फिर 2 महीने के बाद तेनालीराम महाराजा और कुछ सैनिक को एक सुंदर जंगल में ले जाते। राजा को ये जंगल इतना पसंद आता है कि वहीं उस रात रुक जाते और तेनालीराम से पूछने लगे कि इस जगह के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। तभी तेनालीराम अपने हाथ में आम लेके आते और महाराज को देके बोलते, महाराज पहले ये आम खाइए, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। महाराज बोले, आम तो बहुत स्वाद है, लेकिन तेनालीराम तुम तो मुझे स्वर्ग दिखाने चले थे, तो कहाँ है स्वर्ग? तेनालीराम बोले, महाराज ये खूबसूरत प्रकृति, हरियाली, ठंडी हवा और रंग बिरंगी फूल, स्वादिष्ट फल, ये सब स्वर्ग से कम है क्या? स्वर्ग इन सबसे भी बढ़कर है क्या? महाराज बोले, सचमुच स्वर्ग जैसा ही है तेनालीराम, लेकिन तुमने सोने के सिक्के से क्या किया? 10,000 जो लिए थे उससे क्या किया? तेनालीराम बताए, महाराज क्या सिर्फ इस जगह का स्वर्ग जैसा होना ही काफी है? मैं विजयनगर में बोने के लिए कुछ बीज और पौधे लाया हूं ताकि विजयनगर के लोग भी स्वर्ग का अनुभव कर सकें। तब महाराज बोले, तेनालीराम अगर तुम ना होते तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि स्वर्ग हमारे हाथों में ही है। यहाँ कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। Now let's try to preserve the nature and make our planet Earth as a heaven. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thanks for listening.

0: गया।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: एक बार दो सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली, पता है अच्छा पति किसी को नहीं मिलता। दूसरी बोली, तो फिर? पहली बोली, मिले को ही डांट फटकार कर अच्छा बनाना पड़ता है।

जब देवानंद ने कहा ना और हिस्ट्री बदल गई। दोस्तों एक अजीब सा सवाल और पूछती हूं, आज आपको कोई ये पूछे कि आपको एक फिल्म ऑफर हुई है और वो बाद में आपके मना करने के बाद सुपर डुपर हिट हो जाए और आप उस फिल्म को पहले ही मना कर चुके हो, तो आप क्या करेंगे? सर पकड़कर बैठेंगे या कहेंगे चलो अगली बार? लेकिन हिंदी सिनेमा में एक एक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसी फिल्मों को नो कहा जो बाद में सुपर डुपर हिट हुई, लोगों के करियर्स बन गए उन फिल्म से। नाम उस शख्सियत का है देव आनंद। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक देव आनंद को जंगली और तीसरी मंजिल के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन मेकर्स के साथ डिफरेंसेस के चलते हुए उन्होंने दोनों फिल्मों से मना कर दिया और दोनों फिल्में बाद में शमी कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट्स बनी। इतना ही नहीं, जंजीर भी देव आनंद जी को ऑफर हुई थी। अब जरा सोचिए, अगर देव आनंद जी इनमें से कोई भी फिल्म कर लेते तो शायद हिंदी सिनेमा की कहानी थोड़ी से ज्यादा अलग होती। लेकिन सिनेमा भी अजीब चीज है, जो रोल एक एक्टर छोड़ देता है कभी कभी वही रोल किसी दूसरे एक्टर की पहचान बन जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने किसी चीज को मना कर दिया और बाद में लगा अरे यार ये तो कर लेना चाहिए था, कोई जॉब, कोई ऐसी ट्रिप, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर किसी दोस्त का वो सजेशन जिसे आपने उस वक्त कहा नहीं भाई मेरा मूड नहीं है और बाद में पता चला सब चले गए और फोटोज में आप ही मिसिंग हैं, मेजर फोमो। जी हाँ, लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, हर नो गलत डिसीजन नहीं होता। कभी कभी हम किसी चीज को इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होती और कभी कभी हमारी नो किसी और के लिए यस का दरवाजा खोल देती है। सिनेमा में भी ऐसा ही हुआ, देवानंद ने जो फिल्में नहीं की उन फिल्मों ने दूसरे एक्टर्स के करियर को एक नई ही दिशा दे दी। इसलिए हर छूटी हुई अपॉर्चुनिटी को फेलियर समझना बिल्कुल जरूरी नहीं। और अब बात करते हैं देवानंद की एक और पहचान की, उनकी कैप। आज भी अगर देवानंद का चेकर्ड कैप याद आए तो तुरंत उनका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी फेमस चेकर्ड प्रिंट कैप के पीछे एक और छोटी सी कहानी है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जूल थीफ में नजर आने वाली वो आइकॉनिक चेकर्ड कैप कोपेनहेगन डेनमार्क की एक शॉप से खरीदी गई थी। देवानंद उस वक्त सायरा बानो के साथ प्यार मोहब्बत की शूटिंग कर रहे थे, यानी कभी कभी किसी फिल्म का एक यादगार स्टाइल किसी बड़े डिजाइनर के स्टूडियो में नहीं जन्मता, किसी छोटी सी दुकान में ही मिल जाता है। और फिर वही कैप सिर्फ कैप नहीं रहती, वो बन जाती है देवानंद स्टाइल। यही होता है किसी बड़े कलाकार के साथ, कपड़े वही, चीज वही, लेकिन पहनने वाला ऐसा कि चीज की पहचान बदल जाती है, उस चीज को एक पर्सनालिटी मिल जाती है। और देवानंद की पहचान सिर्फ एक एक्टर की बिल्कुल नहीं।

ही थी, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। 1945 में उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। यानी वो सिर्फ दूसरों की कहानी का हीरो नहीं बनते थे, वो अपनी कहानियां भी बनाना चाहते थे, और शायद इसी में उनकी बहुत बड़ी एक खूबसूरती थी। वो रुकना नहीं जानते थे, एक्टिंग से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से डायरेक्शन, स्टाइल से सिनेमा और सिनेमा से अपनी एक अलग ही दुनिया। आपको क्या लगता है एक कलाकार की असली पहचान क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी हिट, उसका वो स्टाइल, उसी का वो अंदाज, या फिर कितने सालों तक लोग उसे याद रखते हैं? देवानंद का नाम आज भी जब आता है तो सिर्फ फिल्में नहीं याद आती, एक अंदाज याद आता है, एक स्माइल, एक कैप, एक आवाज, एक चलने का तरीका और एक पूरा दौर। और शायद इसीलिए देवानंद की कहानी में एक खूबसूरत सबक छुपा है, जिंदगी में हर मौका पकड़ना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी पहचान बनाना वो बहुत जरूरी है। कुछ अपॉर्चुनिटीज छूट जाएंगी, छूटेंगी, बहुत बड़ी है लाइफ और बहुत लोग हैं कॉम्पीट करने के लिए। कुछ डिसीजंस पर बाद में सवाल भी होगा, अगेन बहुत लोग हैं, जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग कहेंगे गलत कर दिया, लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप जी हाँ, आप अपने फैसलों के साथ जीना सीख लें और हर नए दिन के साथ आगे बढ़ते रहें, तो कहानी चलती रहेगी। आज एक काम कीजिए, अपनी जिंदगी का कोई एक नो याद कीजिए जिसके बाद आपको रिग्रेट हुआ था और लगा कि काश यार, काश इसको यस किया होता। और फिर एक और चीज याद कीजिए, शायद वही नो किसी और रास्ते का एक पहला कदम था। क्योंकि जिंदगी में हर छूटी हुई ट्रेन का मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया। कभी कभी अगली ट्रेन आपको और दूर ले जाने वाली होती है। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की स्पेशल बातें इधर की उधर की, जहां पुरानी फिल्मों के किस्से सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं लगते, कभी कभी जिंदगी का एक नया मतलब भी दे जाते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप देवानंद की कोई फिल्म देखें तो उनकी कैप जरूर नोटिस कीजिएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चुनाव के दौरान एक वोटर ने बोला, ये जो आप उंगली पर स्याही लगाते हो, ये कितने दिनों में साफ हो जाएगी? तो मतदान अधिकारी बोला, करीब 4 महीने में। वोटर ना अपने सर आगे करते हुए बोला, यार मेरे सर में लगा दो, डाई ना सिर्फ 15 दिन ही चलती है।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, जीवन एक उपन्यास की तरह है, एक नॉवल की तरह है। रहस्यों से भरा रहता है ये, क्यों? जब तक आप एक पन्ना नहीं पलटते, आपको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। मौत लोगों में दूसरा सबसे बड़ा डर है। अच्छा, तो पहला डर कौन सा है? सारे लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोलना, ये सबसे पहला डर होता है। हम जीवन में अच्छाई से दूर भागते हैं और अपने पूरे जीवन किसी न किसी समस्या से घिरे ही रहते हैं। कुछ लोग समस्याओं के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, आपके पास दो विकल्प हैं। आप भागते हैं और छिपते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दुनिया को दोष देते रह सकते हैं आप कि उन्होंने किया, या फिर आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का निर्णय ले सकते हैं। एक ही तो है जीवन, इसे भी शिक्षा ग्रहण करके और सुंदर बनाने में अपनी एनर्जी लगाइए, अपनी ऊर्जा लगाइए। अच्छा देखिए, बड़ी मजेदार बात है, हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, ईंधन पड़ता है, कहां से आता है दोस्तों? आपको पता है, धरती के नीचे दबे हुए वो पुराने पेड़ जो सड़ गए, गल गए, उन्होंने धरती के नीचे पेट्रोल को और डीजल को जन्म दिया, जो हमारी गाड़ियों को ऊर्जा देते हैं। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी को जो ऊर्जा मिल सकती है, वो एक जगह इकट्ठी रखी हुई है, वो है पुस्तकालय, लाइब्रेरीज। यहां पर बहुत सारी ऊर्जा कलेक्शन में रखी है, संग्रहित रखी है, जो कल्पना को ईंधन देती है, हमारी क्रिएटिविटी को चलाती है। सोचिए ना, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो क्या पेड़ से टपका था? जी नहीं, किसी व्यक्ति ने लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ी और उसकी कल्पना परवाज भरने लगी और उसने वो मोबाइल बनाया जो अब आपके हाथ में है। वे दुनिया की और खिड़कियां खोलती हैं क्या ये लाइब्रेरीज, और हमें खोज करने और हासिल करने के लिए मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान करती हैं ये लाइब्रेरीज। देखिए, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको खेल में माहिर तो होना होगा। सफल होने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, गौर से सुनिएगा इस बात को, बड़ी ही मजेदार है। सफल होने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है, दोस्तों की, और बहुत ज्यादा सफल होने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। जी हां, क्योंकि वो दुश्मन आपको घड़ी घड़ी हर पल खींचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और भरपूर सफलता पाते हैं। आप सूरज हो, और यदि सूरज बुझ जाए तो छाया भी मर जाएगी, क्यों? इसलिए जीवन में आप जो कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना ही चाहिए, तो आपको उसके लिए लड़ना भी चाहिए। आपको डटे रहना होगा। जब बादलों के अंदर बिजली चमकती है ना दोस्तों, तो हम कहते हैं कि यूं देखा जाए तो ये सिर्फ बादल हैं, और अपना ध्यान हमें अगले भोजन, अगले दर्द, अगली सांस, अगले पन्ने पर लगाना चाहिए कि अगले पन्ने पर भला लिखा क्या है। देखो दोस्तों, गौर करो, कोई भी व्यक्ति खुश होकर पैदा नहीं होता। हर किसी को अपनी खुशी खुद पैदा करनी पड़ती है। हम में से हर एक व्यक्ति अकेला है, लेकिन हम सभी को एक दूसरे के आराम और गर्मजोशी के देने के लिए एक साथ रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है मानो शांति एक सुस्ती है, एक कोहरा छाया हुआ है जो मानव जाति को उदासी से भर देता है। ऐसा लगता है शायद युद्ध ही है जो मनुष्य को जीवन के पूर्ण उल्लास के लिए प्रेरित कर सकता है। देखिए, इस बात को गलत ना समझिएगा दोस्तों, मैं युद्ध की बराबरी या युद्ध को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन शांति किस हद तक हमारे जीवन को उत्साहित करती है, जरा गौर कीजिएगा। सच तो देखिए यही है कि दुनिया बहुत सुंदर है।
आपको इस सुंदरता को पहचानना तो पड़ेगा। हमारी धरती में जादू।

है, लेकिन आपको जादूगर बनना होगा और आपको जादू को करके दिखाना होगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है। कैसे? ये हमारी बड़ी वाली की वो हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों जाया ना करो अपने अल्फाजों को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो आपको समझता कौन है। दोस्तों एक सवाल बार बार पूछा जाता है, चारों तरफ पूछा जाता है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है। देखिए सवाल तो बहुत ही आसान है लेकिन जवाब बहुत रहस्यमयी और गूढ़ है। अब सुनिए, जो कहता है कि केवल उन्हीं बातों को सुनूंगा जिनको सुनने से मन में परम पुरुष की ओर बढ़ूंगा मैं, केवल उन्हीं बातों को सोचूंगा जिनको सोचने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता ही चला जाएगा, केवल उन्हीं को अपने मन का विषय बनाऊंगा जिसकी भावना लेने से मन चैतन्य की ओर बढ़ता है, ऐसे मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का काम क्या होता है। ऐसे मनुष्य के लिए यह बिल्कुल ठीक है कि ज्ञानेंद्रियों के जरिए मन को जो कुछ भी ग्रहण करें उसमें ईश्वर की भावना हो। ठीक उसी तरह कामेंद्रियों से मनुष्य जो कुछ भी करे उनके प्रति उसे ये भावना लेनी होगी कि वे सभी वस्तुएं परमात्मा के ही विशेष रूप हैं। ऐसे में वो बाहर की जिस भी वस्तु के संपर्क में आएगा वो ईश्वर की भावना के साथ होगा, तो वो आध्यात्मिक साधना का स्वरूप बन जाएगा। दोस्तों याद रखिए, सुनने से, मनन करने से और ध्यान करने के जरिए मनुष्य बहुत पुण्य कमा सकता है, फिर महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से भी पुण्य अर्जित हो सकता है। अब ये कैसे होता है? अचानक मन में एक भावना का उदय होता है कि मैं इस विराट, इस महान व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं। ये भावना मन में लगातार बढ़ती रहती है। इस भावना के बढ़ते रहने के कारण मन पवित्र हो जाता है, इससे मनुष्य का कल्याण होता है। इसी तरह महापुरुषों के स्पर्श से भी मन पवित्र हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए ये कहना बहुत ही संगत है कि महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से जीव की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। जहां दर्शन या स्पर्श के बदले मन में नजदीक जाने का भाव होता है वहां ना दर्शन करने की जरूरत होती है और ना ही स्पर्श करने की। सुनने के शब्द को रखा गया है धर्म के प्रचार के लिए, मानव मन में सात्विक भाव जगाने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। देखिए जब आप कीर्तन करते हैं तब उससे केवल आप ही आनंद पाते हैं ऐसी बात नहीं है, आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है जब वो दूसरों के कानों में पड़ता है तो उन्हें भी खुशी मिलती है, उनकी भी उन्नति हो जाती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए यहां सुनने के शब्द को बहुत जरूरी समझा गया है। दूसरा है मनन, यानी कि विचार करना, अपने आप में सोचना। अच्छा हो या बुरा काम हमारा मन ही करता है। देखिए केवल हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ से तो चोरी करने का अर्थ है कि मन चोरी कर रहा है, इसलिए मनन क्रिया के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, यानी कि एकांत में अपने से बात कीजिए, अपने आप सोचिए। सत्संग के फलस्वरूप साधु संगत में मन अच्छी बातों को लेकर चिंतन करता ही है, इसलिए मानसिक उन्नति हो जाती है। और मानसिक उन्नति का मतलब है पूरे मनुष्य की उन्नति। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आप हैं आपके दोस्त समीर के साथ। तो दोस्तों, एक बार एक सूफी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ नदी में नहाने के लिए गए। उन्होंने देखा कि किनारे पर एक परिवार के ही सदस्य थे जो बड़े ही गुस्से में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े, मुस्कुराए और पूछा, ये लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स कुछ देर सोचते रहे। उनमें से फिर एक ने कहा, जब हम शांति खो देते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं। तो सूफी ने पूछा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बगल में ही खड़ा है तो चिल्लाते क्यों हैं? बात नरमी से भी तो कही जा सकती है। स्टूडेंट्स ने कुछ और जवाब दिए, लेकिन सूफी को मजा नहीं आया। आखिरी में सूफी ने समझाया, देखो, जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो उनके दिल बहुत दूर हो जाते हैं। उस दूरी को कम करने के लिए वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जिससे कि बात सुनाई दे जाए। वो जितने गुस्से में होते हैं उतनी दूरियां उनकी बढ़ती जाती हैं, फिर उसे कम करने के लिए दरअसल वो चिल्लाते हैं। दोस्तों सोचिए ना, परिवार में ही दो लोग बिल्कुल बगल बगल में ही खड़े होते हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, उस वक्त उनके दिल दूर दूर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा, अच्छा क्या होता है जब दो लोग प्यार में होते हैं? सूफी संत ने कहा, वो धीरे धीरे बातें करते हैं, उनके दिल करीब हो जाते हैं, उनके बीच की दूरियां ना के बराबर हो जाती हैं, इसलिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह दोस्तों, ये बात तो सही है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो चिल्ला कर कभी बात नहीं करते, वो दरअसल फुसफुसा के बात करते हैं। इसका मतलब हुआ, उनके दिल काफी नजदीक होते हैं। सूफी ने आगे कहा, जब वो और अधिक प्यार करते हैं तो उनका तो बोलना ही बंद हो जाता है, कानाफूसी करने से या सिर्फ देखने भर से काम चल जाता है। इसलिए दोस्तों, दिलों को दूर मत होने दीजिए, ऐसी बातें बिल्कुल ना कहिए जिनसे दूरियां बढ़ जाएं, नहीं तो दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लौटने का रास्ता ही नहीं मिलेगा।

फिर मिलेंगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, बताता हूँ दाढ़ी वालों की दुनिया के बारे में। आजकल चारों तरफ जहां भी देखिए, गाड़ी में बैठा हो, चाहे बाइक पर बैठा हो, चाहे स्कूटर बैठा हो, बंदा जो है दाढ़ी जरूर रखे रहता है। पता नहीं क्या हो गया, तो पुरुष कुंवारा हो या विवाहित, उनमें दाढ़ी मूछे रखने का आजकल जबरदस्त क्रेज है। पुराने जमाने में राजा महाराजा, साधु संतों या फिर डकैत अधिकतर दाढ़ी मूछों में ही दिखाई देते थे। हां, कुछ विद्वानों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों आदि की असली पहचान पूछ परख ही दाढ़ी मूछों के कारण होती थी। इसी कारण उन्हें जरूरत से ज्यादा मान सम्मान भी मिल जाता था। लेकिन आजकल हर आयरा गैरा नत्थु खैरा दाढ़ी बढ़ाने के चक्कर में रहता है, ताकि वो भी बस उसी कैटेगरी में आसानी से घुस जाए, उन्हें भी आदरणीय समझा जाए। कुछ गोरे चिकने चुपड़े चेहरों पर दाढ़ी खूब जंचती और फबती भी है, गजब का आकर्षण शक्ति होती है उनकी दाढ़ी में। लेकिन कुछ के चेहरों पर तो उगाई दाढ़ी मूछे बड़ी डरावनी और भद्दी लगती हैं, उनका चेहरा बेहद बदसूरत भयानक दिखने लगता है। एक फिल्म देखी थी काफी समय पहले, जिसमें काले रंग के एक हीरो के लंबे लंबे काले काले बाल थे, घनी दाढ़ी मूछें थी, ऊपर से शरीर पर डार्क कलर के कपड़े पहन रखे थे और आंखों पर काला गॉगल चढ़ा कर रखा था। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। वो नायक कम खलनायक ज्यादा लग रहे थे। कुछ वर्षों पहले तक छोटे बड़े शहरों या महानगरों में भी हमेशा उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा भरे हुए क्लीन शेव वाले चेहरे नजर आया करते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई, उनमें से अब ज्यादातर तो दाढ़ी वाले हो गए हैं। हर गाड़ी में बैठा दिखाई देता है, मोबाइल फोन और दाढ़ी के साथ। पुराने जमाने में मूछों का भी बड़ा महत्व था, इसे मर्द मानसिकता से जोड़कर देखा जाता था। मुझे भी विवाह के बाद शौक चर्राया था दाढ़ी मूछों का, लेकिन एक रात श्रीमती जी ने जो क्रोधित होकर इस चुभती दाढ़ी को मुड़वाया, बस जी खत्म हो गया मामला। सुबह सैलून में जाकर दाढ़ी मूछे मुड़वाने पर लगा हुआ चेहरा पर भार बहुत हल्का हो गया। भैया, ये भार हल्का ही कर लेना ठीक है, ये दाढ़ी रख के ना बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। जिन लड़कों भी रखते हैं ना, उन्हें बता दीजिएगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

लीजिए एक और मजेदार बात। आजकल हमारे बड़े शहरों में लोग मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर बात करने का एक नया स्टाइल अपनाते हैं। शहरों में तब से लोगों की आवाज धीमी, कुछ और धीमी, कुछ ज्यादा ही धीमी होती चली जा रही है। आवाज उनकी धीमी हो रही है और दिल हम छोटे शहर वालों का बैठा जा रहा है। अब क्या करें, हमारी तो आधी उम्र हो गई। वो बड़े वाले गायक हुआ करते ना, ऊंचे स्वर में जो गाते थे, और गली मोहल्लों में दोस्तों यारों को हम तो ऊंची ऊंची आवाज में पुकारते थे। हमारी तो उम्र गुजर गई ऊंचा ऊंचा बोलने में। हम धीमी आवाज भला क्या जाने। शाम को मां जब गैलरी से लटक कर अपने बेटे को ए महेश कहकर बुलाती थी, अब बदले में बेटा मैदान से ही अरे यार यहां कह के चिड़ मिश्रित जवाब नहीं देता था, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम किसी जिंदा समाज में रह रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जो चलती हुई चक्की के सामने कबीर की तरह रोते नहीं है, बल्कि चलती आटा चक्की के सामने खड़े होकर अपने दोस्त को 10 साल पुराना जोक सुनाकर हंसा डालते हैं, और आरा मशीन के सामने खड़े होकर अपने दोस्त को मोबाइल पर कोई नंबर बताते हैं और सही सही डिक्टेट करा देते हैं। जी हां, सच तो यह है कि धीमी आवाज में समाज का भद्र वर्ग ही बोलता है। शहर में रहने वाले इंटेलिजेंट और यू नो सिविलाइज्ड लोग ही धीरे धीरे बोलते हैं। वो बेचारे छींकते भी हैं ना तो 10 डेसिबल की आवाज के साथ सॉरी बोलते हुए, हंसते हैं तो ऐसे जैसे बिना ब्याज और गारंटी के उधार ले रहे हों, और रोते ऐसे हैं जैसे उनसे कोई गुनाह हो गया हो। ऐसे लोगों के बच्चे भी बड़े सयाने होते हैं भैया। जब उनकी माँ अपनी सहेलियों के बीच बच्चे के जीनियस होने की बातें कर रही होती है और बदले में एक आंटी जल भुनकर पूछती है अच्छा 17 सिग्जा कितना होता है बेटे बताना, तो बच्चा सुनकर बोलकर जवाब सोचने का वक्त निकाल लेता है और फिर सवाल रिपीट होने के दौरान गुणा भाग करके तुरंत 102 बोल पड़ता है, जिसके लिए उसे शाबाशी मिल जाती है। उसे देखकर मां की छाती चौड़ी हो जाती है और बाकी की आंटियां जल भुनकर खाक हो जाती हैं। तो भैया शहर

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, ये टीवी कितने का है?
2: दुकानदार ने कहा, 50,000 रुपए का।
1: लड़की, इतना महंगा, ऐसा क्या खास है इसमें?
2: दुकानदार ने कहा, लाइट जाने के बाद है ना, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लड़की बोली, ओहो, पैक कर दो फिर इसे।

सदियों पुरानी बात है। चीन के थिंगजा इलाके के एक राजकुमार की सम्राट के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक उसे इसके लिए पहले शादी करनी थी। एक अक्लमंद मंत्री की सलाह पर उसने प्रांत की विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार के महल में एक बूढ़ी महिला वर्षों से नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी भी राजकुमार से मनी मन बड़ा प्रेम करती थी। घर पहुंचकर जब नौकरानी ने राजकुमार की योजना का समाचार बताया तो वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी बेटी भी कन्या चयन प्रतियोगिता में शामिल होने का इरादा रखती थी। उसने बेटी से कहा, मेरी बच्ची, दरबार में सब सुंदर और धनाढ्य परिवार की बेटियां होंगी, तुम वहां क्या करने जा रही हो? तुमको तकलीफ होगी। बेटी ने मां को जवाब दिया, मां, मुझे पता है कि मुझको कभी भी चुना नहीं जाएगा, पर मुझे राजकुमार के करीब रहने के लिए कुछ और पल मिल जाएंगे ना, मैं बस इसी में खुश हूं। रात में जब बूढ़ी नौकरानी की बेटी महल पहुंची तो वहां रेशमी कपड़ों और गहनों में सजी धजी तमाम युवतियां इकट्ठी थीं। दरबारियों से घिरे हुए राजकुमार ने घोषणा की कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। जो युवती 6 महीने में मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लाएगी वही चीन की भावी महारानी होगी। उस लड़की ने भी अपना बीज लिया और घर चली आई। उसने बीज को एक फूलदान में लगाया। वो बागवानी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बड़े धैर्य और कोमलता से उसने फूलदान की मिट्टी की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर फूलों की सुंदरता उसके प्यार जितनी गहरी होती है तो उसे परिणाम के बारे में चिंता करने की भला क्या जरूरत है। मगर कुछ नहीं हुआ। उस युवती ने कई मालियों से सलाह ली, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। 6 महीने हो गए, गुलदान में कुछ भी नहीं निकला। ये जानते हुए कि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, उस युवती ने यह सोचकर महल जाने का फैसला किया कि प्रेमी के दीदार का ही एक मौका ले लूं। महल पहुंचकर उसने देखा, सबके हाथों में गुलदान में एक से बढ़कर एक फूल थे। आखिरकार वो पल आया जब राजकुमार ने सभी फूलों को देखा और आखिरकार नौकरानी की बेटी की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शिकायतें की कि जो एक लड़की इस परीक्षा में नाकाम रही, आपने उसे ही चुन लिया। तब राजकुमार ने बहुत शांति से जवाब दिया, आप सभी में से एकमात्र यही है जिसने उस फूल को विकसित किया, जिसने उसे महारानी बनने के लिए योग्य बनाया। यह है ईमानदारी का फूल, क्योंकि आपको बांटे गए सारे बीज बांज थे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: इस जाबाज सेना के पराक्रमी कप्तान को करगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
3: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
8: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
8: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

0: छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परम वीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, नहीं। तू भी बचवारा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ। राम राम भाई।
3: राम राम भाई। राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
2: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
3: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ।

0: सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत फीस लगती है।
1: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
0: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
1: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है? फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
0: अच्छा,
1: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
0: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। चलो चलो
1: चलो।
0: मैडम जी नमस्ते।
2: नमस्ते। नमस्ते शंभू।
1: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए।
1: जी धन्यवाद।
2: कहो शंभू, कैसे आना हुआ?
0: मैडम जी, ये हरिया है, अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं। मैंने समझाया भी, पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है।
2: अरे शंभू, तुम्हें नहीं मालूम? हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है।
0: अच्छा, तो मैडम जी क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, आजकल हमारे यहाँ दाखिला चल भी रहा है, आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा। बस तुम अपना BPL कार्ड या फिर SC/ST का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना।
1: देखा, मैंने कहा था ना।
0: आज मेरा सपना सच हो गया। मैडम जी धन्यवाद। और हरिया, तुम्हारा भी धन्यवाद।
1: और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद।
2: बिल्कुल ठीक, शिक्षा का अधिकार हमारा,
3: हर सपना सच हुआ हमारा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 10 के अभिल 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: हसरत मोहानी।

0: आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
2: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
3: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में।
2: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
3: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
3: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस
1: जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
3: जी जी आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
2: ये थोड़ा सा अजीब है,
3: लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं?
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
3: मोहानी साहब
2: जी,
3: ये पर्दे की ओट से निकाल कर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
3: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
3: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
3: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
3: लाइए
2: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
1: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
3: लिख दिया,
2: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद गिरामी।
2: है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह क्या बात है, है मश्के सुखन जारी,
2: चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह,
2: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
3: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या क्या
1: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
3: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
6: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
3: मोहानी साहब, इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
2: जी नहीं नहीं नहीं,
6: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
3: क्या?
2: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया।

0: आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: मोहाली साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
2: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
3: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
4: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
3: आपने कुछ खाया ही नहीं।
4: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
3: जी, बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
4: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
3: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
4: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी, शब्बा खैर।
4: शब्बा खैर। बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
4: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद

0: किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
1: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
2: भगत सिंह।
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
6: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
7: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
6: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
7: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
5: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
7: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
7: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
5: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
8: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
9: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
8: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
10: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
11: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
10: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
11: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
10: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
11: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
10: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
11: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
10: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
11: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
10: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
11: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
12: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
10: जी बताइए डॉक्टर।
11: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
10: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये
11: दोनों के लिए?

0: फायदेमंद है, अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी
0: चाहिए। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहाँ पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी,
1: और डॉक्टर साहब एक
2: क्या, फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
1: बताइए
0: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी, और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए, कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु हैं वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा। जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़, सभी किसान भाइयों नो बहुत बहुत स्वागत करे है। रेडियो टंट्या भील 90.8 FM नो यू खेतीबाड़ी कार्यक्रम हंगला किसानों हरु, किसानों नी जानकारी बढ़ावा हरु इना कार्यक्रम नी हमें शुरुआत करी है। अने यो हमारो एक प्रयास है कि अपर झाबुआ जो भी किसान है त्या इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी अलग अलग प्रकार नी खेती ना बारा मा जानकारी ले, अने हजू भी कई नी चीजें हैं अपर कृषि मा, कई नी फसलें हैं, कई नी कृषि है जे करीने आपण किसान भाई है अधिक थी अधिक मुनाफो ली सके। केम के दिन प्रतिदिन आपणी जो प्रकृति है तिनमां बदलाव आवता जई रहा है, अने इना बदलाव ने देखते हुए जो हमारी उत्पादन क्षमता है ते कई थी कम थई जाए है, अने निरंतर हमु जो रासायनिक खातरोनो प्रयोग करी रहा है तिनथी जो हमारी जगह है धीरे धीरे भट्टाती जा रही है। यो हमारी हरू एक संकट है कि आवा वाली पीढ़ी ने आपू हूँ आल हूँ ते कहीं ना कहीं हंगली बातों ने अगर आपू देखी ते अपन किसान भाई है तीना जागरूक करवानी जरूरत है। अगर हमारो किसान भाई जागरूक भी थायो है ते इनो सॉल्यूशन हुए, इनो निराकरण आपू की कम करी सकी, इनी बात थी अपन किसान है त्या इना ज्ञान नो अभाव है अपना किसानों भाई ने। तो एतरे हमू कोशिश करी है रेडियो टंट्या भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हमू प्रयास करी है कि अपना किसानों तक एक्सपर्ट नी राय पुगे, जे विशेषज्ञ है तिनानी बातें हमू रेडियो टंट्या भील ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी किसानों तक पुगाड़ी सकी, अने आपणो जो किसान है वो इनी जो जगह नी में जो कमी आवी रही है तीन पासो की कम हदारी सके, अने पासो की कम एक अपनी जगह ने पासो सजीव किकम बनावी सके तेना बारा मा जानकारी ली सके। तिनी हाते हाते आप हमो चर्चा भी करी है कि कईनी फसल जो है फायदेमंद थी सके हमारे किसान भाइयों ने, केम के अगर आप देखी थे अधिकतर अपना किसान भाइयों का मक्की देखा है, सोयाबीन देखा जा है, फिर सेकंड आप दूसरी फसल में देखी थे गऊ ने सना देखा जा है। तिनी अलावा अगर आप देखी थे फूलों नो व्यापार जो है अपना हाँ घणो कम थई रो है, बाकी अलग अलग प्रकार की खेती है जो घनी कम मात्रा में अपना इना झाबुआ जिला में देखावा मांगे है। तो किसान भाइयों हमू कोशिश करिए हैं कि जरूरी नहीं मिले कि आप जो खाद्यान्न जो फसलें हैं तिन्हीं खेती करिए, लेकिन तिन्हीं अलावा भी अपने झाबुआ जगह में अपनी जगह ने आप देखिए तो अलग अलग प्रकार की कृषि भी संभव है। तेते कृषि की कम संभवता है तिनी ऊपर अपन कृषि विज्ञान केंद्र है जावा मा तिने माध्यम थी भी आपू तेना ताना विशेषज्ञ ने आपू पूछी सके कि हमन कई नी खेती करवी जोवे, कई नी जिना किसान भाइयों ने नहीं पतो है कि कई नी फसल आपणा होई सके, केम के त्या अधिकतर निरंतर जो है रिसर्च करता रहे है सीजो ने करी करी ना तिनी एक पणतारता रहे कि कई नी फसल आपड़ा एरिया में असल थी सके है, तिनी डिटेल में तिनी जानकारी आपड़ा केवी कि विशेषज्ञों कन उपलब्ध रहे तो ताती भी आपू तिना मदद थी जानकारी ली सकी अने आपड़ा खेतरों में इनो प्रयोग करी सकी। तो किसान भाइयों आज नो जो आपड़ा खेती बाड़ी नो यो जो विषय से त्यो है फूलों की खेती, फूलों की खेती अगर आपड़ो किसान करे है तो इनमा भी घणो फायदो अपना किसानों ना किसानों ने थई सके। तो आज ना इना कार्यक्रम में आपू जाणू कि किकम अने कईना फूल नी आपड़ खेती करवी जोवे, अन फूलों नी खेती में हूँ वातुनो ध्यान राखवो जोवे, केतरू पाणी लागे, के कईनी जमीन होवी जोवे अने एनी पूरी संक्षिप्त जानकारी आजना इना कार्यक्रम में आपू लूँ। एतरे किसान भाइयों आपू आजना इना कार्यक्रम नी शुरुआत करीए अने जाणीए के फूलों नी खेती करीने आपू किकम अधिक थी अधिक लाभ ली सकीए।
4: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: देश में फूलों के उत्पादन को लेकर खासा महत्व दिया जा रहा है। आज हमारे बागवान कितने ही फूलों से दोस्ती कर चुके हैं, फूलों से दोस्ती का ये हाथ उन्हें आय भी करा रहा है। खुशबू भरे आकर्षण लिए प्रकृति की ये भेंट एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती रहती है और हर किसी को लुभाती है। इस समय 60 से भी अधिक देश फूलों का आयात करते हैं तो 50 देश इसके निर्यात से जुड़े हुए हैं। प्रमुख पुष्प आयात करने वाले देशों की बात की जाए तो जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क आदि का नाम आता है। इस समय विश्व पुष्प आयात का 96% अंश इन्हीं देशों के आंगन में महकता है। भारत में पुष्प उत्पादन एक उभरती हुई विद्या है। किसानों के एक बड़े वर्ग को अब ये बात समझ में आने लगी है कि खेती केवल गेहूं, चावल, गन्ना, चने की ही नहीं बल्कि फूलों की भी की जा सकती है। यही कारण है कि आज देश में कुछ किसान इसे पूरक फसल के रूप में अपनाते हैं तो कुछ बड़े पैमाने पर मूल फसल के रूप में भी फूलों की खेती कर खासा उत्पादन ले रहे हैं। ताजे सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में पुष्प उत्पादन और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इसी आधार पर फूलों की खेती से रोजगार की नई राहें महक उठी हैं।
7: तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार दायरा इसका बढ़ता जा रहा है और किसान अब इसकी खेती में रुचि ले रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छी आय भी हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना इस क्षेत्र में बाकी है और किसानों के बीच में भी जागरूकता बढ़े इसलिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है, उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SS सिंधु जी मौजूद हैं जो कि पुष्प संभाग में अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधु जी। हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर वी एस राजू जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। हमारे साथ डॉक्टर बीसी कटियार जी मौजूद है, आप सीपीडब्ल्यूडी में उप महानिदेशक रह चुके हैं बागवानी विभाग में, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जीपी सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है, इन्होंने फूलों की खेती को अपनाया है और आज उन्होंने फूलों की खेती से ये कर दिखाया है कि कैसे अगर पूरी इच्छा शक्ति के साथ और वैज्ञानिक तरीकों के साथ खेती की जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है। हम सभी से बात करेंगे, एक बार फिर से सभी मेहमानों का स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंधु साहब, मैं जानना चाहूंगी कि मौजूदा स्थिति हमारे देश में फूलवानी की क्या है।
8: देखिए कि हमारे देश में जो फूलों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग इस समय यदि हम देखें तो 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती की जा रही है और उसमें जो लूज फ्लावर का जो अपना एक शेयर है वो करीब करीब 1750 टन के आसपास है और कट फ्लावर की यदि हम बात करते हैं तो लगभग वो 5000 टन कट फ्लावर का उत्पादन किया जाता है और देश में भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जाती है और बदलते मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में भी इसमें प्रचलित हैं और भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के हाई वैल्यू फ्लावर, लो वैल्यू फ्लावर किसान उगाकर अपनी अच्छी आय से।
7: डॉक्टर राजू, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमने रिपोर्ट में ये बताया कि बीते 10 सालों में इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप क्या कहेंगे कि इस दिशा में कितनी नई नई वैरायटीज आई हैं और कितना अब इस पर फोकस है?
9: अभी आप देखेंगे जो फ्लोरिकल्चर है अभी इमर्जिंग सेगमेंट है
7: जी
9: फार्मिंग का और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है दूसरे क्रॉप से आप कंपेयर करेंगे। इसमें सेगमेंट्स बहुत सारे हैं जैसे कर्तित फूल है जो बाजार में कट फ्लावर है, इसमें गुलाब में कई किस्में हैं और जो संरक्षित खेती में फर्स्ट रेड, ग्लैंड गला, ताजमहल जैसे किस्में कर सकते हैं
7: जी जी।
9: और जो लूज फ्लावर्स हैं गुलाब में, लूज फ्लावर्स में ग्रस्सा एंड टेपलेट करके वैरायटी है काफी एरिया में, इसको देसी गुलाब करके उगाया जाता है। और कर्तित फूल जो बाहरी एनवायरमेंट है आउटडोर एनवायरमेंट में जैसे सुपरस्टार है, ग्लैडिएटर जैसे वैरायटी का किसान कर रहे हैं। इसके अलावा उद्यानों के लिए भी बहुत सारे किस्में हैं, हमारे संस्था ने ही बहुत सारे किस्में इसमें निकाले हैं जैसे पूसा अजय है, पूसा गौरव है, बंजारन है, चिंगारी है, वह रक्तगंधा है। इन किसानों और नर्सरियों के लिए भी ये किस्मों का चयन कर सकते हैं किसान जो है।
7: डॉक्टर कटियार, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि का भी अब स्वरूप बदल चुका है और किसान जो है वो सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं करना चाहता, जहां भी उसे फायदा होगा वो उसे अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत है कि उसे ये विश्वास दिला जाए कि हाँ भाई इस क्षेत्र में अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आपको फायदा होगा। तो अगर फूलों के कारोबार की बात करें तो ये अब कितना उभरता हुआ क्षेत्र है, सेक्टर है और पहले से कितने आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड भी होता जा रहा है, संगठित भी हुआ है क्या?
10: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आजकल किसान जो है वो बहुत अवेयर हो रहा है और लगातार इस चीज की नॉलेज गेन करता रहता है कि हमको किसमें फायदा है। तो आजकल उसको नजर आ रहा है कि हमको बदलाव में फायदा है, रोज गेहूं चना उगाने से भी उनको शायद लगता है कि हम एक ही चीज को उगा रहे हैं
7: जी।
10: तो वो चेंज हो रहा है और बहुत सारे किसान आजकल फूल की खेती कर रहे हैं और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के आसपास है या किसी और शहर के आसपास है या किसी कस्बे के आसपास है जहां पे फूलों की डिमांड है और वहां पे आपको फूलों के खेत मिलेंगे
7: जी।
10: अब रही बात ये कि कौन सा किसान किस तरह की चीज उगा रहा है, तो जिसको जिस चीज की जानकारी मिल जाती है शुरू में वो देखता है कि हमारे

0: वो है गेंदे की खेती।
1: जी जी।
0: तो गेंदे की खेती और गेंदे के फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर किसी शादी ब्याह में, हर किसी पूजा पाठ में,
1: और सस्ता भी पड़ता है।
0: जी जी, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है और सस्ता भी है और कलरफुल भी है, बल्कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसकी तमाम सारी दवाइयां भी बनती हैं, इससे कलर भी बनता है,
1: मुरब्बा भी बनता है।
0: जी जी जी। तो इस तरह से किसान जो है बड़ा जागरूक होकर इस समय चल रहा है और वो लगातार नजर बनाए हुए है कि हमको किस तरफ जाना है।
1: जी जी, यानी इसका कारोबार भी बढ़ रहा है, जहां एक तरफ फसलों की हम बात कर रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है फूलों की खेती का वो बढ़ रहा है, लेकिन बाजार जो है उसके भी नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। मैं चलिए अब सिंह साहब से बात करती हूँ, जो कि खुद एक किसान है और फूलों की खेती कर रहे हैं। सिंह साहब आप बताइए, तो चलिए हमने जो पढ़ा और जो रिसर्च की उसके आधार पर बात कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन आप जो है आप प्रैक्टिकली उससे जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरीके से इसमें लाभ देख रहे हैं और अपने बारे में बताएं कि आप कौन कौन से फूलों की खेती कर रहे हैं।
2: देखिए, इसमें मैं जो हूँ अभी वर्तमान में क्रैसेंथेमम, जिसको गुलदावरी कहते हैं, इसकी खेती कर रहा हूँ, और ये संरक्षित खेती है, ये पॉलीहाउस के अंदर होती है, और इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो IRI ने डेवलप की हुई है, जिनको हम खुले में भी उनका उत्पादन ले सकते हैं। और गुलदावरी का मार्केट जो बाजार की डिमांड है, यहां मैं कहना चाहता हूं कि किसान कोई भी हो, जो भी करता है, काम करना चाहता है या कर रहा है, उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि बाजार में उसकी मांग किस चीज की है। तो हम जो मांग, समय के हिसाब से मांग बदलती रहती है, तो हमें अपने हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी फसल का चक्र भी बदलते रहना चाहिए।
1: जी।
2: तो अभी जो हम गुलदावरी की खेती कर रहे हैं, और गुलदावरी में का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज है, इसमें स्टैंडर्ड वैरायटीज भी हैं, स्प्रे वैरायटीज भी हैं और बटन वैरायटीज हैं, तो इसके हिसाब से हम अभी वर्तमान में इसका कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम ग्लैडुलस, जो हमारी पुष्प जो फूलों की खेती का जो ये उद्योग है हमारा, इसमें ग्लैडुलाई का बहुत बड़ा योगदान है, और क्योंकि उसके बिना ये मार्केट हमारा अधूरा रह जाता है, तो ग्लैडुलाई की खेती में भी काफी अच्छा फायदा है।
1: जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि कितना समय हो गया आप इस क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जो हम फूलवानी की बात करें, आपको कितना समय हो गया और कहां से आपको प्रेरणा मिली इसको लेकर?
2: मैं 97 से,
1: अच्छा 97 से, 1997
2: से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और इस पूरी जो श्रेय जाता है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है।
1: जी जी।
2: उस वर्ष 2000 में यहाँ पर एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट काम कर रहा था, तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली, जो हमारे गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर सिंधु साहब, उनसे ही मुझे, उस समय आप देख रहे थे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को वहां पे, तो तब से मैंने वहां से ये प्रेरणा मुझे मिली, और 1997 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने ग्लैडुलाई की खेती से स्टार्ट किया था, उसके अलावा मैंने कार्नेशन का उत्पादन किया, पुष्प बीज उत्पादन का कार्य भी मैंने किया, ग्लैडुलाई का मैंने काफी बीज उत्पादन का कार्य भी किया है मैंने। वर्तमान में मैं क्रैसेंथेमम का काम कर रहा हूँ, गुलदावरी का।
1: कितने क्षेत्रफल में करते हैं आप इसकी खेती, और अगर लाभ के हिसाब से बात करें, क्योंकि किसान सबसे पहले यही देखता है कि कितने भी हम साइंटिफिक तरीके उसे समझा लें, लेकिन वो यही जानना चाहता है कि भाई मैं इतने हेक्टर में करूंगा, मुझे कितना इसमें लाभ होगा।
2: जो इसमें लाभ, तो किसान अगर अपना लगन से करता है और साइंटिफिक तरीके से करता है, उसमें वैज्ञानिकों से समय समय पर जानकारी ले ले, क्योंकि किसान अभी, हम जितना कहना चाहें कि हम किसान परिपक्व हो चुका है, किसान अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है।
1: जी जी।
2: क्योंकि किसान अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, तो उसको पहले शुरुआत, मेरा कहना तो यह है कि उसको वैज्ञानिकों की सलाह ले, वैज्ञानिकों से पूछे कि उसमें बीमारियां क्या आनी है, उसके बाद कार्य को प्रारंभ करें, क्योंकि किसान के पास आमदनी तो बहुत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि फूलों की खेती में आमदनी बहुत है, लेकिन आमदनी के साथ साथ जो खेती है हमारी वो भगवान के भरोसे पे भी है, उसमें दैवी कामना का बहुत बड़ा रोल है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, आपने कहा कि लाभ बहुत है, लेकिन साथ ही साथ आपने बहुत सारे इसके साथ वजह भी गिनवा दी, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रबंधन बहुत जरूरी है अगर आप फूलों की खेती करें। तो सिंधु साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फूलों की खेती में क्या बहुत ज्यादा अनिश्चितता रहती है, क्योंकि अगर गेहूं धान हम करते हैं तो उसका भंडारण आसान होता है, फूलों में एक तो बाजार आपको तलाशना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, और दूसरा उसे आप भंडारित नहीं कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो क्या इससे जुड़े बहुत सारी इफ्स एंड बट्स, यानी बहुत सारी वजहें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान थोड़ा रिस्क लेने से डरता है? सिंधु साहब,
3: इसमें देखिए कि बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, नो डाउट कि इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं का यदि

0: पहले से आप थोड़ा सा निवारण करके चलेंगे तो आप एक सफल कृषक के रूप में फूलों की खेती कर सकते हैं। कि आपका बाजार आपको देखना पड़ेगा, आपको तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद चलते चलते जो वातावरण में जो बदलाव आता है, जलवायु में जितना परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आपने फूलों की खेती की हुई है, अचानक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसको भी आपको प्रबंधन उसका भी करना होगा। तो गेहूं और धान में किसान क्या है कि वो निश्चिंत हो जाता है, एक बार लगा देता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर लेता है, स्टोर कर सकता है। आज अच्छा बाजार नहीं है तो 2 महीने बाद बेच लेगा, उसको और अच्छा बाजार मिल जाएगा। लेकिन फूलों में ये संभव भी है और नहीं भी है। संभव इसलिए है कि आपके पास यदि कोई कोल्ड स्टोरेज है तो आप 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बट लेकिन बहुत लंबे समय तक आप इसको, फूलों को स्टोर नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते, आपको बाजार में उसको बेचना ही होगा।
1: यानी संवेदनशील है इसका बाजार,
0: संवेदनशील है ये जो व्यवसाय है।
1: जी राजू जी, डॉक्टर राजू, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी सिंधु जी ने कहा है, मौसम बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी भी समस्याएं हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होनी होती तब बारिश हो जाती है, तो ऐसे में क्या, जैसे कि हम धान की बात करें, गेहूं की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन या फिर इस तरीके से जो मौसम बदल रहा है उसके अनुसार नई नई वेराइटीज खोजी जा रही है, किसान उन पर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक उन पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, तो क्या फूलों को लेकर के भी इस तरीके का काम किया जा रहा है क्या?
2: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन किसान का अवेयरनेस बढ़ना है। जैसे अभी जीपी सिंह सर ने बात किया है कि जैसे गुलदावरी है, गुलदावरी का जैसे इसको क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी कम करने के लिए शेड नेट का प्रयोग कर सकते हैं, और ये ब्लैक आउट सिस्टम करके इसका फ्लावरिंग को भी रेगुलेट किया जा सकता है, ताकि बाजार में अच्छा मूल्य ला सके
1: जी।
2: और इसमें बहुत सारी किस्में भी निकाले गए हैं, जैसे पूसा अनमोल करके एक किस्म है, ये साल में 2 बार फ्लावरिंग देता है और गर्मियों में भी फूल आता है इसका। और जो ग्रीन बटन, जो हमारे किसान भाई ने कहा कि जो ग्रीन बटन है वो गर्मियों में अच्छा फूल देता है
1: जी।
2: और इसके अलावा जो उद्यानों के लिए बहुत सारे वैरायटी हैं, जिसके मतलब गमले वगैरह बना सकते हैं, गार्डन्स में उगाया जा सकता है
1: जी।
2: जैसे पूसा आदित्य है, पूसा केसरी है, पूसा सेंटिनरी है, उसका चित्राक्ष जैसे वैरायटीज है जो हमारे संस्था ने निकाली है।
1: बिल्कुल, तो अलग अलग वैरायटीज के बारे में आपने हमें अभी बताया और हम दर्शकों को इसे और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, जिन वैरायटीज के बारे में अभी हमारे मेहमान ने बताया। अब लिखना होगा ब्रेक, इसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, इनके बारे में भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे।
3: चर्चाओं का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो टाइंडाबिल 90.8 FM छाबुआ की आवाज।
4: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। ब्रेक पर जाने से पहले आप लगातार सुन रहे थे फूलों की खेती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है जो कि हमें बता रहा है कि फूलों की खेती कैसे आज के दौर में किसान अपना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कितनी संभावनाएं हैं, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं।
3: भारत में इस खुशबू भरे रोजगार का इतिहास खंगाला जाए तो पता चलता है कि देश में पुष्प उत्पादन की विधिवत शुरुआत वर्ष 1968 से ही हो गई थी। तब भारतीय पुष्प वैज्ञानिकों ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की मदद से गुलाब के फूल फ्रैंकफुर्ट और पेरिस भेजे थे। भारत सरकार की वर्ष 1988 की बीज नीति के बाद देश में फूलों के अच्छे बीज, बल्ब, कटिंग आदि का आयात हुआ। वर्ष 1991 के बाद लगभग 20 पुष्पोत्पादन या पुष्पोदन की संयुक्त देसी और विदेशी कंपनियां भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। विदेशी कंपनियां हॉलैंड और इजराइल के साथ 1,500 करोड़ रुपए की मूलधन पूंजी से पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में ऐसी ही पुष्प इकाइयां स्थापित हुई। भारत में इन्हीं की बदौलत पहली बार वर्ष 1992-93 में 387 मिलियन रुपए का पुष्प निर्यात हुआ था। ज्ञात हो कि अभी भारत के फूलों का निर्यात मुख्यतः यूरोप में होता है। वहीं हॉलैंड विश्व का सर्वोत्तम पुष्प नीलाम घर है। यहां विदेशों के फूल बिकने को आते हैं। एक लंबे समय से फूलों के व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र आधे से पौने 1% तक रही है, मगर अब भारत इस खुशबू भरी तिजारत में ठोस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आशा ये भी की जा रही है कि हम दुनिया को ये खूबसूरत तोहफा देकर अच्छी खासी विदेशी मुद्रा भी समेट पाएंगे। भारत में फूलों के कारोबार का भविष्य इसलिए भी उज्जवल है क्योंकि देश में शोधरत कृषि विश्वविद्यालयों में सबके पास एक स्वतंत्र और पूरी तरह से विकसित बागवानी विषय है। इन विभागों में 1,000 से ज्यादा छात्र डिग्री प्राप्त करते हैं और अपना पुष्प ज्ञान तो बांटते ही हैं, साथ साथ कुछ इससे जुड़ रोजगार की भी शुरुआत करते हैं। फूलों से जुड़ा रोचक मुद्दा ये भी है कि देश विदेश में सूखे फूल पत्तियों तथा टहनियों की भी मांग बढ़ती जा रही है। ये नई विद्या किसान भाइयों विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें खोल रही हैं। आज अपने देश में सूखे फूलों की घरेलू खपत तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में छोटे बड़े किसान अपना हाथ आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। सूखे फूल पत्तियों टहनियों की विदेशों में बढ़ती मांग का लाभ भारतीय पुष्प उत्पादकों ने उठाया है। यहाँ से इनका निर्यात किया जा रहा है। इसके निर्यात की मुख्य बात यह है कि इसमें पूंजी लागत जीवंत फूलों के निर्यात की अपेक्षा बहुत कम है।
2: तो चलिए इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंधु जी साहब आपसे समझना चाहूंगी कि गेंदे की कौन कौन सी वैरायटी और इस समय क्या हमारे किसान इसे ले सकते हैं।
4: देखिए, गेंदा एक ऐसा फूल है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु में और भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। एक तो गेंदा वो है जिसको कि आप सर्दियों में उगाते हैं, उसके बाद अभी देखें तो हम गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में उगाते हैं। तो अभी गर्मियों में जो लगने वाला गेंदा है वो है कलकतिया, लड्डू गेंदा। अभी आगे जो बरसात में लगेगा वो अफ्रीकन जैंट के नाम से जो किस्म है वो लगाई जाती है। फिर सर्दियों का गेंदा आ जाएगा, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारे संभाग द्वारा काफी किस्में विकसित की गई है, जिसमें से पूसा बहार और पूसा अर्पिता काफी फेमस है। पूसा नारंगी भी एक पुरानी किस्म है हमारी जो अभी अच्छी चल रही है,
2: काफी किसानों के बीच में लोकप्रिय भी है।
4: पूसा बसंती भी है और भी बहुत सारी किस्में हमारी पाइपलाइन में भी हैं जो कि अभी हाल ही में विकसित होने जा रही है। तो इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न जलवायु में
2: यानी कुल मिला के 12 महीने कर सकते हैं
4: 12 महीने अलग किस्मों का
2: अलग अलग लेकिन किस्मों का चुनाव करना होगा कि आप किस समय पर कर रहे हैं तो गेंदे की कौन सी किस्म आप ले सकते हैं। राजू जी आप बताएं गुलाब है और अन्य भी हमारे फूल है ग्लैडुलस वगैरह है इनकी कौन कौन सी वेरायटी और इस समय अगर किसान फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त कौन सी वेरायटीज होंगी।
5: जैसे गुलाब और ग्लैडुलस जो प्लांटिंग टाइम है अक्टूबर है मेन तो और जो गुलाब में काफी सारे किस्में हैं जैसे कर्तित फूल संरक्षित खेती के लिए ताजमहल एक अच्छा किस्म है
2: जी।
5: और आउटडोर के लिए ग्लैडिएटर और सुपरस्टार किस्में हैं। उद्यानों के लिए जो हाइब्रिड ट्रीज है उसमें पूसा अजय है क्वीन एलिजाबेथ करके बहुत अच्छा वैरायटी है
2: जी।
5: और जो बागवानी जो फ्लोरीबंडा जो किस्में हैं उसमें है चिंगारी है अरुणिमा है बंजारन जैसे किस्में हैं। और जो खुले फूलों के लिए आप ग्रसैन टेपलेट्स हैं और जो तेल उत्पादन के लिए हिमरोज और ज्वाला किस्में हैं वैसे ही ग्लैडियोलस में भी बहुत सारे किस्में हैं। इसमें अर्ली वेराइटीज भी है मिड है लेट वेराइटीज है हमारी संस्था ने काफी किस्में इसमें निकाली है। वैसे बाजार में बहुत सारे पॉपुलर है जैसे व्हाइट प्रॉस्पेरिटी है नोवा लक्स है प्रिसिला जैसे किस्में उगा रहे हैं किसान और हमारी संस्था ने बहुत सारे किस्में इसमें निकाली है करीब 30 के करीब किस्में है इसमें जैसे नया किस्में जो है पूसा रेड वैलेंटाइन है लाल रंग का है पूसा मनमोहक एक किस्म है और इसके अलावा पर्पल और बैंगनी रंग के फूल फ्लोरेट वाले बहुत सारे किस्में हैं जैसे पूसा उन्नति है पूसा सृजना है
2: जी जी
5: और सफेद रंग में पूसा किरण
2: जी ठीक है। ये तो आपने बताया कि इस समय कौन कौन से और एक सोच सी रहती है कि हम सर्दियों के टाइम पर ही फूलों की खेती कर सकते हैं वही सही समय है लेकिन अब जो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक इससे अब कोई समय सीमा नहीं इस पर कह सकते लागू होती है वैरायटी लीजिए मौसम के हिसाब से और आप फूलों की खेती कर सकते हैं। सिंह साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे ये समय है तो इस वक्त हमारे किसानों को बताएं कि कैसे वो खेती कर सकते हैं फूलों की और संरक्षित खेती का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल हो जाता है।
6: देखिए संरक्षित खेती का सबसे पहले निर्भर करता है कि किसान की क्षमता कितनी है क्योंकि संरक्षित खेती के लिए उसको पॉलीहाउस भी लगाना पड़ेगा और भारत सरकार उसमें अनुदान भी दे रही है लेकिन उसमें किसान को भी अपना अंश देना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि क्या किसान वो अंश देने लायक है कि नहीं है सबसे पहली बात। दूसरा यह है कि हमारा एज एक किसान होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि जो भी किसान इस फील्ड में इस क्षेत्र में आना चाहता है पहले वो बेसिक क्रॉप से आए जो छोटी क्रॉप होती है जिसमें कम खर्चा होता है कम लागत लगती है जैसे गेंदा हो गया ओपन फील्ड का खुले में गुलाब हो गया गुलदावरी का हो गया तो इस तरह की खेती से आए। और जैसे डॉक्टर राजू ने बताया कि गुलदावरी एक ऐसी क्रॉप है इसको आप पूरे साल ले सकते हैं। लोगों को ये भ्रांति है कि ये केवल जाड़े का फूल है ऐसा नहीं है हम लोग आज की डेट में इसको शॉर्ट डे करके ब्लैक शेड नेट लगा के इसको कंट्रोल कर लेते हैं और फ्लावरिंग भी इसकी ले सकते हैं। तो उससे जो ऑफ सीजन में जो हमें मिलता है ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस समय पे बाजार में जिस फूल की डिमांड कम हो अगर हम उसका उत्पादन करते हैं
2: जी जी।
6: तो निश्चित तौर पे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है।
2: जी कटियार साहब जैसे कि अभी सिंह जी ने बताया कि ये पहले सोच ले किसान देख ले समझ ले आकलन कर ले कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उसी हिसाब से ही वो संरक्षित खेती कर सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी सरकार का फोकस खास तौर पर छोटे सीमांत किसान है उन पर है उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं अगर उसे वो अपनाते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ होगा और उनकी स्थिति भी बेहतर होगी। तो ऐसे में बताइए कि फूलों की खेती संरक्षित खेती इसमें इससे जुड़े हुए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं और इसका हमारे किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं क्या क्या अनुदान है इसमें।
7: देखिए ये जो संरक्षित खेती है इसके बारे में सरकार बहुत ही बढ़ावा दे रही है और चूंकि ये प्रचार प्रसार का काम भी हमारे पूसा संस्थान में भी किया जा रहा है और पूसा संस्थान ने खास तौर से अपने यहाँ पे इस तरह के ग्रीन हाउस बना रखे हैं कि किसान वहाँ आके देखते हैं कि ये लोग किस तरह की चीजें किस तरह से उगा रहे हैं ग्लैड्स किस तरह उगा रहे हैं रोजेस किस तरह उगा रहे हैं जरबेरा किस तरह उगा रहे हैं सारी चीजें वहाँ प्रदर्शित की जा रही हैं और उसकी लगभग कुछ कीमत भी कैसे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं बना सकते हैं उसको भी वहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है।
2: पूरा प्रोजेक्ट समझाया जा रहा है
7: और इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जिसके पास ये स्कीमें हैं जो किसानों को इस तरह की टेक्निकल गाइडेंस आगे चल के देते हैं उनको पैसे की मदद करते हैं उसमें सरकार क्या छूट दे सकती है वो भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता है
2: जी।
7: हर गांव में, हर जिले में, हर प्रदेश में उनकी उनकी संस्था काम कर रही है और जो भी किसान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनके पास जाते हैं कि क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा लगेगा, वो उसमें पूरी मदद करते हैं
2: जी। सिंधु साहब, जैसे कि अभी हमें बताया कटियार जी ने कि जो किसान अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर ले जाता है उसी हिसाब से उसे मदद मिल सकती है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं, आर्थिक तौर पर भी इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है उनकी, तो क्या वो एक समूह बनाकर इस बड़े पैमाने पर खेती करने की सोचे तो उन्हें भी किसी तरह की मदद की संभावना है?
4: हाँ, देखिए कि जैसा कि भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय कि हमारे NHM प्रोग्राम में बहुत सारे किसानों को संरक्षित खेती के लिए काफ़ी अनुदान दिया जाता है और ये 50% से लेकर 85% तक है, अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग सीमाएं तय की गई है। और इसके साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बड़े प्रोजेक्ट भी देता है, कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए भी सहायता देता है और इंटीग्रेटेड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सहायता किसानों को मिलती है। 1.16 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 50% तक की उसकी बैक एंडेड सब्सिडी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भी कटियार साहब ने भी जिक्र किया। तो उसमें क्या है कि किसान अपनी खेत का संरक्षित कर सकता है, बाउंड्री वाल भी कर सकता है, ट्रैक्टर भी उसमें लगा सकता है, पानी का भी कोई साधन उसमें जुटा सकता है, तो वो काफी बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगा सकता है।
2: अच्छा।
4: उसमें ग्रीन हाउस भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ तकनीकी ज्ञान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली भी है, तो जो किसान बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, जिनकी अपना जो सामर्थ्य है, जो अपना पैसा लगा करके और उसको अच्छा अपना समय जुटा करके करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये काफी परियोजनाएं भारत सरकार की उपलब्ध है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम और लघु किसान हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उनका फायदा उठाए और कुछ ऐसे चुनिंदा फूलों से, अभी हमारे बीच में जीपी सिंह जी ने बताया कि कुछ ऐसे फूलों से खेती शुरू करे, जैसे गेंदा है, ट्यूबरोज है, रजनीगंधा है, ग्लैडलस की खेती करे, वो कम पैमाने पे करे ताकि उसको कल को कोई रिस्क भी उठाना पड़े तो उसको ज्यादा नुकसान ना
2: जी,
4: हो।
2: बिल्कुल। तो आपने बताया कि जो नई नई किस्में हैं उनका इस्तेमाल करें और शुरुआत छोटे स्तर से करें, तो मैं अब आपसे राजू जी जानना चाहूंगी कि कुछ जो वैरायटीज के बारे में आप बता रहे थे, तो इसमें गेंदा की अर्पिता, एक पूसा अर्पिता वैरायटी है, ये नई वैरायटी बताई जा रही है, इसके साथ ही पूसा बहार है, तो इनकी खासियत क्या है जो पहले किसान लेते आ रहे हैं फूलों की किस्में, उससे ये कैसे भिन्न है?
5: जी नहीं, आप देखेंगे तो गेंदे के चार किस्में हैं जो हमारी संस्था ने रिलीज किया है, उसमें पूसा नारंगी, एक पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा नारंगी गेंदा जो नारंगी कलर के फूल आते हैं, पूसा बसंती में पीले रंग के फूल आते हैं, ये दोनों फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करते हैं
2: जी।
5: और करीब 20 टन के आसपास प्रति हेक्टर फूल उत्पादन होता है
2: जी।
5: और जो

0: करीब 60 से 80 फूल प्रति पौधे में आते हैं, और अगर खुले फूलों के लिए करेंगे तो 20 टन उपज देता है।
1: अच्छा, तो ये हमारे किसान जो है जो शुरुआत करना चाहते हैं तो गेंदे की वैरायटी ले सकते हैं, ये अगर हम उन्हें कहना चाहें तो ये बेहतर रहेगा उनके लिए।
0: जी जी, गेंदा ऐसा क्रॉप है कि इसमें कम से कम इनपुट से किसान लाभ पा सकता है, और ये ऐसा क्रॉप है कि अगर किस्म का चयन करेंगे तो साल में 3 बार इसका क्रॉप ले सकते हैं।
1: जी जी पी सिंह जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि छोटे पैमाने पर शुरू करें किसान गेंदे की या फिर किसी भी फूल की जो बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उसे ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत है, या फिर जो पारंपरिक तौर पर उसे पता है कृषि जो ज्ञान है फसलों से जुड़ा हुआ उसी के आधार पर वो इसे शुरू कर सकता है, या फिर ट्रेनिंग लेना उसके लिए बेहतर रहेगा?
2: नहीं, मेरा इस प्रकरण में कहूंगा मैं कि अगर किसान ट्रेनिंग ले, उसका आके संस्थान से पूसा संस्थान से ट्रेनिंग ले, या स्थानीय स्तर पर उसके आसपास जो भी कहीं भी कृषि संस्थान है वहां से ट्रेनिंग लेता है, तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा लाभ कमा लेगा, क्योंकि नुकसान होने के बाद वापसी का कोई संभावना कृषि क्षेत्र में नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: तो यहाँ पे जो आपका एक बार नुकसान हो गया फिर उसके बाद आपको 3 महीने इंतजार करना है, फिर दोबारा से वही करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कमा पाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान को कि कहीं भी जाए वो, और जो संस्थान संबंधित संस्थान है उससे ट्रेनिंग ले, और देश में मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हर राज्य में क्षेत्र है, वो इनके प्रक्षेत्र है, तो वहां से जाके वो अपना ट्रेनिंग ले, और उसके बाद ऐसी फसलों का वैज्ञानिकों से भी सलाह ले कि मैं एक फसल से अधिक लाभ कमा सकता हूँ। सपोज वो गेंदे का उत्पादन करता है तो गेंदे का पौध भी, फूल के साथ साथ वो पौध उत्पादन भी कर सकता है, गेंदा कटिंग से भी तैयार हो जाता है, उसका बीज उत्पादन भी कर सकता है, साथ ही गुलदावदी हो गया, गुलदावदी का फूल भी बेच सकता है वो, उसके साथ साथ उन्हीं पौधों से वो नई कटिंग पौध तैयार करके नर्सरी के जो व्यवसायी हैं उनको भी पौधे सप्लाई कर सकता है, बेच सकता है वो, तो उसको वहां से भी उसको लाभ अर्जित हो जाएगा। तो किसान को अधिकतर जो बेसिक छोटा किसान है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको वैज्ञानिकों से मिलके सलाह करके पूरा ज्ञान प्राप्त करे और ऐसी फसलों का चयन करे जिससे वो अधिक लाभ कमा सकता है, फूल भी बेचे, पौधे भी बनाए, गेंदा हो गया, गुलदावदी हो गया, गुलाब हो गया, इनके पौधे भी बना सकता है, साथ में नर्सरी वालों को बेच के तो उसको दोहरा लाभ प्राप्त हो जाएगा।
1: जी जी,
2: तो ऐसी फसलों का उसको चयन करना चाहिए जिससे वो ज्यादा उसके लिए लाभदायक रहे।
1: जी कटियार जी, जैसे कि अभी हमें सिंह साहब ने बताया कि कैसे वो इसका दायरा और बढ़ा सकता है, या फिर कहे कि और विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं अतिरिक्त आय के, ये भी हमें समझा, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि किसान के स्तर पर अगर हम जाकर सोचे तो क्या उसमें इतना आत्मविश्वास हम पैदा कर पाए हैं या फिर दिखाई देता है फूलों की खेती को लेकर के कि वो इसे प्रमुख फसल के तौर पर ले, क्योंकि अभी भी वो यही सोचता है कि धान है, गेहूं है, ये तो चलिए हो ही जाएगी और बिक ही जाएगी मंडियों में, लेकिन फूलों के लिए उसे जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, तो क्या ये समय आ चुका है या फिर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसे किसान प्रमुख फसल के तौर पर भी लेंगे?
3: जी बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। मैं इसमें ये कहूंगा कि जो हमारे किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़ा सा जो आगे हैं, पैसे वाले हैं, तो वो इसमें उन्होंने पहल की है, वो पहले इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे आपने अभी पूछा था कि जो छोटे किसान हैं क्या वो ग्रीन हाउस बना सकते हैं, तो छोटे किसान इसमें हिम्मत कम कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
3: जो बड़े किसान हैं जो रिस्क उठा सकते हैं कि अगर कोई फेलियर हो गया तो उसका जो नुकसान है वो झेल पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इस वजह से बड़े किसान ही इसमें इस संबंध में आगे आते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसान की नकल कर लेते हैं, बड़े किसान से परामर्श ले लेते हैं, या जो बड़ा किसान कहीं पूसा इंस्टीट्यूट से या किसी से सलाह लेके कोई काम कर रहा है तो वो उससे सीखते हैं, उससे परामर्श लेते हैं, और शुरुआत जैसे बार बार इस बात पे हम कह रहे हैं, हमारे और साथी लोग भी कह रहे हैं कि छोटे काम से शुरुआत करनी है
1: जी।
3: तो किसान जो है छोटे काम से शुरुआत कर रहा है, जैसे सबसे पहले गेंदा उगाता है, वो देखता है कि इसमें हमको कुछ फायदा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि गेंदा एक कैश क्रॉप है, ये जितने भी फूल हैं एक कैश क्रॉप है
1: जी जी।
3: पहले डिस्कस हो चुका है कि इसका भंडारण जो है संभव नहीं है, और जहां संभव है तो बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए ऐसी क्रॉप को बहुत जागरूकता से उगाते हैं किसान, और फिर देखते हैं कि इसकी मार्केट कहाँ है, पास में कहीं बिक्री का केंद्र है,

0: उस सबके मद्देनजर ही इसको बोते हैं। तो जो छोटे किसान हैं वो पहले छोटी पूंजी लगाते हैं, गेंदे के अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे गुलाब है, देसी गुलाब जिसको हम कहेंगे, एक तो जो पाली हाउस में या ग्रीन हाउस में लगाते हैं वो तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो ओपन फील्ड में लगाते हैं, जो हमारा देसी गुलाब है, पूजा के काम आता है, उसको हमारे किसान इजीली उगा लेते हैं
1: जी।
0: और उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है, और उसको भंडारण में उनको फ्रेश ही लाना पड़ता है बाजार में, तभी कीमत मिलती है रोज के रोज। लेकिन उसमें जैसे बरसात हो जाए या और कोई ओलावृष्टि हो जाए तो वो पेड़ चूंकि हार्ड होते हैं तो वो एक बार फूल खराब हो जाता है तो उसमें क्षमता होती है दोबारा ग्रो करने की।
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन जो सॉफ्ट क्रॉप है, जो गेंदा वगैरह है या गुलदाउदी है या ट्यूबरोज है, वो सॉफ्ट क्रॉप है, उनमें अगर एक बार ओलावृष्टि हो जाए या तेजी से बरसात हो जाए तो नुकसान बहुत हो जाता है।
2: यह सारी फसलें सॉफ्ट फसलों की गिनती में आती है, और अगर इन फसलों में ओला बारी हो जाए या तेज वर्षा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं ये जो फसलें हैं वो बर्बाद हो सकती है। तो इसके अलावा और भी क्या क्या समस्याएं आती है, इनसे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज पर।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फूलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को और जानते हैं किन किन परिस्थितियों में हमारे जीव जो फसल है वो खराब हो सकती है। जो गेंदे के फूल है और भी जो फूलों की फसलें हैं उनका हमें प्रबंधन कैसे करना है, उनकी देखरेख कैसे करनी और किस समय पर कौन से कदम उठाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आइए जानते हैं।
2: पहले हमने नई नई वैरायटीज के बारे में बताया कि कैसे किसान इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कहां से शुरुआत करें और किन किन चुनौतियों के लिए वो तैयार रहे। लेकिन अब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है, सरकार इसके लिए किस तरीके से किसानों को मदद कर रही है। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एक नया बाजार भी उभर कर आया है ऑर्नामेंटल फ्लावर्स यानी अलंकृत फूलों का, तो इससे किसान कैसे जुड़ सकते हैं, उन्हें कैसे लाभ हो सकता है, आइए बात करते हैं। डॉक्टर सिंधु, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अलंकृत फूल जो हम बता रहे हैं ये हैं क्या और इसका बाजार किस तरह का है।
3: अभी जैसे हमने बात की, अभी तक हम बात कर रहे थे फूलों की और फूलों से जुड़ी हुई किस्मों के बारे में। इसके साथ साथ एक दूसरा विषय है जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है अलंकृत बागवानी। जितने भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखते हैं, नर्सरी देखते हैं, उसमें बहुत सारे पौधे हैं जो आजकल देश विदेश से लोग मंगा करके यहाँ पे उगाते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उनका टिश्यू कल्चर करते हैं और बहुत ही तादाद में उनको पैदा करके वो बाजार में बेचते हैं। तो अलंकृत बागवानी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें भी काफ़ी किसान इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियाँ इस विषय पर काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने नर्सरी भी इस्टेब्लिश की हुई है और इसमें आजकल बहुत नए नए पौधे भी आजकल आ रहे हैं। अभी जैसे हम बात करें, ऑर्किड है, ऑर्किड यहाँ के लिए नया फूल है
2: जी।
3: सिक्किम में ठीक है, ऑर्किड अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा है
2: जी।
3: इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पौधे हैं जो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे यदि हम कंदीय फूलों की बात करते हैं तो रेनुनकुलस है, बहुत ही नया फूल है। उसके बाद अलंकृत पौधों में क्लोरोफिटम है, पेंटाज है और भी बहुत सारे ऐसे अलंकृत पौधे हैं जो कि बोने हैं, ड्वार्फ हैं, देश विदेश से भी आजकल काफी इंपोर्ट हो रहे हैं और उनको अच्छा बाजार मिल रहा है।
2: जी सिंह साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि आप किसान हैं तो इसके लिए कितना हमारे किसानों के पास कह सकते हैं कि विकल्प है या फिर जो स्थितियां हैं वो दिखाई दे रही हैं कि अनुकूल है कि अलंकृत फूलों की खेती पहली बात तो ये और उसका जो एक और नया आयाम है अलंकृत फूल या फिर बागवानी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपने इसे अपनाया है।
4: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि विविधीकरण जो हमें कृषि क्षेत्र में हमारा जो है उसमें हमें विविधीकरण की जो है उसको अपनाना जरूरी है
2: जी।
4: क्योंकि अगर हमारे पास हम चार तरह की फसल लेके चलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लेके चलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे डॉक्टर सिंधु ने बताया ये हैं, इसके अलावा लिसियंथस ऑस्टोमा काफी अच्छा पॉपुलर प्लांट है और उसकी काफी मार्केट अभी डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह के अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी अपने कट फ्लावर का जैसे हमारा काम है उसके साथ साथ अगर हम इसको भी लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्षेत्र एक है, कार्य क्षेत्र हमारा एक है, वर्किंग पीरियड हमारा एक ही है और उस अगर हम एक ही जगह पे अगर दो से तीन या चार काम को एक साथ लेके चलेंगे इसमें तो निश्चित तौर पर किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। और नर्सरी का व्यवसाय जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 7-8-10 सालों में फूलों का जो क्रेज है लोगों के बीच बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा शायद ही कोई घर आपको कहीं मिलता होगा जिस घर में 10 गमले कम से कम ना हो और उसमें ऑर्नामेंटल भी है और फ्लावर्स के भी है। तो किसान अगर इसको करता है तो निश्चित तौर पे वो लाभ अर्जन कर सकता है, चाहे वो सीमांत क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। तो फूलों की डिमांड आज की डेट में सब जगह बढ़ रही है
2: जी।
4: तो मैं तो ये कहूंगा जो भी किसान है वो संरक्षित खेती कर रहा हो फूलों की, चाहे वो खुले में कर रहा हो, वो साथ साथ नर्सरी का व्यवसाय को भी अपनाए। तो नर्सरी व्यवसाय अपनाएगा तो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकता है।
2: चलिए अब बात कर रहे थे चुनौतियों पर और साथ ही साथ उन चुनौतियों का कैसे निवारण हो रहा है या फिर हल ढूंढा जा रहा है। और जो मुझे समझ आता है एक बड़ी चुनौती ये हमारे किसानों के सामने आती है कि जो किसान शहरों के आसपास के हैं वो तो चले ठीक है फूलों की खेती अपना सकते हैं या फिर बहुत आसानी से अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें बना बाजार मिल जाता है। दूसरी बात जो यातायात का खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन वो बचता है, भंडारण की समस्या नहीं होती है। तो क्या हम कहें कि ये सिर्फ बड़े शहरों के आसपास के जो इलाके हैं जो गांव हैं उन्हीं के लिए फायदेमंद है, दूर दराज के या फिर सुदूर इलाके के जो किसान हैं जहां दूर है शहर जहां पर इनकी डिमांड होती है उनके लिए अभी भी दूर की कौड़ी है ये? सिंधु साहब
3: देखिए ऐसा है कि चुनौतियां तो बहुत हैं और जैसे दूर के किसानों का आपने जिक्र किया तो दूर के किसानों के लिए हम ये चाहेंगे कि वो इस टाइप का बिजनेस अपनाएं, इस तरह का कोई फूलों से जुड़ा हुआ धंधा अपनाएं जैसे कि बीज उत्पादन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है ये। बीज उत्पादन का वो काम कर सकते हैं, यदि वो किसी मुख्य शहर से बहुत दूर है तो बीज उत्पादन का काम कर सकते हैं, नर्सरी का काम शुरू कर सकते हैं, प्रोपोगेशन का काम कर सकते हैं जिसकी मार्केटिंग के लिए उसके पास काफी समय उपलब्ध रहता है और यदि वो समय से नहीं भी बेच पाता तो उसका जो उत्पाद है वो खराब नहीं होगा
2: जी।
3: तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको इस तरह से उनका सामना करने के लिए अपने व्यवसाय का जो विविधीकरण की अभी बात की थी वो हमें अपनाना होगा
2: जी। डॉक्टर राजू जैसे कि बीज का भी जिक्र किया सिंधु साहब ने तो हम ये भी देखते हैं कि वैज्ञानिक तो अपना काम करते हैं, वो नई नई वैरायटियां बनाते हैं उनका निर्माण करते हैं लेकिन उस वो किसानों तक कैसे पहुंचे और उस वो वैरायटी कैसे बढ़े इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। उनका काम होता कि आपने वैरायटी बना दी अब इसका लाभ कैसे पहुंचे वो दूसरा तंत्र काम करता है। तो क्या ये भी एक चुनौती रहती है कि किसानों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती?
5: आप जैसे सही बोल रहे हैं इसमें जो बीज जो किसानों तक ले जाना ये बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है और जो हमारी संस्थान है जो और ICR है सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इसी काम में लगे हुए हैं और जो फूल जो बीज से हो सकता है उसमें काफ़ी मात्रा में बीज प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन किया जाता है और डिफरेंट सेंटर्स में भी उपलब्ध किया जाता है। इसके अलावा जो मतलब प्लांटिंग मटेरियल्स जो प्लांट्स होते हैं इसका पौधे बनाना होता है उनको कमर्शलाइज भी किया जाता है और बहुत सारे नर्सरीज को भी टाई अप किया जाता है ताकि वो डिफरेंट प्लेसेस से में अवेलेबल हो। जैसे गुलाब ही है, जैसे गुलाब में जो मूल ग्रंथ होता है जो अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग होता है तो इसमें कई डिफरेंट प्लेसेस से नर्सरी से टाई अप करके उनके पास भी ये मटेरियल अवेलेबल किया जाता है ताकि वो लोकल में अवेलेबल हो। इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऐसे हैं जैसे ग्लैडियोलस वैरायटीज है, क्रिजान गुलदाउदी की वैरायटी है, हमारे संस्थान ने इसको कमर्शलाइज किया है। जो प्रोग्रेसिव किसान है या जो किसान जो मटेरियल ज़्यादा तरह के अवेलेबिलिटी कराते हैं उनके साथ कमर्शलाइज किया हुआ है ताकि वो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल कराएं और लोकल में उपलब्ध कराएं
2: जी। डॉक्टर कटियार आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बताया कि समस्याएं बहुत सारी हैं और इसको अगर और हमें बढ़ाना है निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है तो हमें इन चुनौतियों पर इन लिमिटेशंस पर हमें काम करना पड़ेगा तो ये बताइए कि सरकार भी फूलों की खेती पर काफी ध्यान दे रही है और इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट है सरकार का?
6: देखिए सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अभी तक जो चीजें हमारी लैब में बनाई जा रही हैं या लैब में उनका रिसर्च वर्क किया जा रहा है तो वो किताबों में या रिसर्च की जो थीसिस है उसके अंदर ना रहे, उससे बाहर निकल के आए। तो अब सरकार ने सारे जितने भी हमारे इस तरह रिसर्च सेंटर्स हैं इनको किसानों से जोड़ने के लिए कोशिश जारी है कि जो भी हमारे साइंटिस्ट जो भी नई चीज निकालें उसका सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंस करें, कॉन्फ्रेंस करके क्रम में हमारे जो क्षेत्रीय किसान हैं उनको बुलाएं, आमंत्रित करें, उनको सिखाएं जिससे उन्होंने जो चीज बनाई है निकाली है वो फील्ड में उतरे और किसानों को रिजल्ट मिले। सरकार भी देखे, साइंटिस्ट भी देखें कि उन्होंने जो बनाया है उसका रिजल्ट सही आ रहा है जमीन पे कि नहीं। तो इसमें सरकार बहुत ही आगे कारगर है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अलंकृत की बागवानी की बात हो रही थी तो उसमें सारे जो हमारे किसान हैं उस फील्ड में भी उतरे हुए हैं और उनमें उनको ऐसा लगता है कि शायद उनमें उनको कुछ सुविधा भी है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बीज हैं, पुटरंजिवा के बीज हैं या मलताज के बीज हैं और पेड़ों के बीज हैं, फूलों के बीज हैं तो वो कलेक्ट कर लेते हैं, उनको कुछ फ्री मिल जाते हैं पेड़ों से जो भी सड़क पे पेड़ लगे हुए हैं उनसे वो बीज तोड़ लेते हैं। सड़क के किनारे जो हाईवे पे हमने सरप प्लांट्स लगा रखे हैं उनसे उसकी वो कटिंग ले लेते हैं, तो उनके बीजों से उनकी कटिंग से फ्री में उनको जो है वो मदर प्लांट्स मिल रहे हैं सड़क के किनारे जो खड़े हैं, और उनसे वो अपनी नर्सरी ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं
2: जी।
6: और वो जैसे बात आ रही थी कि जो इंटीरियर में है या जो शहरों से दूर है या जो कस्बों से दूर है किसान, वो क्या कर रहे हैं, तो वो किसान

0: भी उसमें उतर गए हैं
1: जी
0: और वो मेन मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो बड़े जो उनके व्यापारी हैं, जो बड़े नर्सरी मैन्स हैं, उनको वो माल दे देते हैं, उनको वो अपना प्रोड्यूस दे देते हैं, और उसके बाद वो बड़े जो हैं जिनका टच शहरों से, वो आके वहाँ पे सप्लाई करते हैं।
1: जी सिंधु साहब, मंडियों की भी हम बात कर लेते हैं, तो मंडियां कैसे इससे जुड़े? फूलों की मंडियां, क्योंकि हम अनाज की मंडियां तो देखते हैं कि हर जगह उपलब्ध होती है किसानों के लिए, लेकिन फूलों की मंडियों की अगर बात करें तो वो अभी इतना बढ़ा, कह सकते हैं कि इसमें इतना विकास नहीं दिखाई देता है, तो उसको लेकर आप क्या बताएं?
2: फूलों की मंडियों का यदि हम बात करते हैं तो जो आज के समय यदि फूलों की हम बात करें तो देश में अभी कम से कम 5 या 6 बड़ी मंडियां हैं, जिसमें से दिल्ली सबसे बड़ी मंडी है। और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली की मंडियों में विकास हुआ है। अभी जो हाल ही में दिल्ली सरकार ने गाजीपुर में जो जगह दी है, वहाँ पे बहुत अच्छी दुकानें बन गई हैं, वहाँ पे काफी अच्छी सुविधाएं भी हैं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं भी वहाँ पे जुटाई गई हैं कि जो सरप्लस बच जाता है ताकि उसको स्टोर कर सके, अगले दिन फिर उसको बाहर निकाल के उसको बेचा जा सके। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्किंग के स्ट्रक्चर्स है, वो वहाँ पे जुटाई गई है। इसी तरह से बेंगलोर में है और आपका बॉम्बे है, पुणे है, चेन्नई है, तो बड़े शहरों में हैदराबाद है, वहाँ पे भी फूलों की बड़ी मंडियाँ अभी काफ़ी हद तक उपलब्ध हैं। और जो बेंगलोर की मार्केट है वो तो काफ़ी कंप्यूटराइज्ड है और काफ़ी हद तक इंटरनेट पे उसके आपको रेट मौजूद रहते हैं। दिल्ली की मंडी के रेट भी दिल्ली सरकार के जो हमारा दिल्ली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसकी साइट पे भी आपको डेली उसके रेट उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ जो छोटे आढ़ती हैं, जो छोटे कॉर्नर नुक्कड़ वाले जिनको हम बोलते हैं, वो भी छोटे छोटे बाजार हैं, छोटी छोटी मंडियां हैं और छोटी छोटी फ्लोरिस्ट शॉप हैं, जिसके माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर या प्रोड्यूसर भी जुड़ा रहता है। बड़ी मंडियों के थ्रू एक तो कस्टमर जुड़ता है, प्रोड्यूसर जुड़ता है, और एक कुछ ऐसे छोटे प्रोड्यूसर हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर से भी जुड़े हुए हैं।
1: जी जी।
2: और यहाँ तक कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है हरियाणा में, जैसे अभी कोई 18 के आसपास है फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, किसान अपना पैदा करके अपना ही बेचता है।
1: अच्छा।
2: तो वो भी एक सरकार का काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो इस तरह मंडियों की तरफ भी काफी ध्यान है सरकार।
1: सिंह साहब, क्योंकि आप खुद किसान हैं और आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि चलिए ये तो बात रही कि सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी योजना है, वैज्ञानिक अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ से आप क्या चाहते हैं कि क्या योगदान होना चाहिए या फिर उनके क्या प्रयास होने चाहिए?
3: देखिए, किसानों का सबसे जो पहले किसान जो चाहता है, जो हमको चाहिए वो अच्छी गुणवत्ता का पौध चाहिए।
1: जी।
3: जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पौध तैयार करते हैं, नई किस्में तैयार हो रही हैं, अगर हम उनकी एट ए टाइम अगर कोई किसान अगर 10,000 प्लांट मांगने पहुंच जाए तो शायद वो वहां से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो पहला तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृषि अनुसंधान संस्थान को इतनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं कि जो भी नई वैरायटी हम आपके यहाँ से रिलीज होती है, किसान को वो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके।
1: जी जी।
3: क्योंकि ऐसा नहीं है कि पौध कभी खराब नहीं होती, अगर पौध अगर आज नहीं बिकी तो 1 महीने तक 2 महीने तक वो स्टोरेज हो सकती है।
1: जी जी।
3: तो किसान को एक तो गुणवत्ता युक्त पौध मिलेगा, फिर दूसरा जो पौधा बाजार से हमको 6 रुपए या 8 रुपए 10 रुपए मिलेगा, वो वही हमको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मिनिमम रेट पे मिलेगा।
1: जी।
3: दूसरा सबसे मेन चीज उसमें रहेगा कि जो हमें संस्थान दे रहा है इसकी गारंटी है कि वो जो भी दे रहे हैं वो हमें सही पौधा दे रहे हैं।
1: जी।
3: क्योंकि बाजार से हम ओपन मार्केट से लेते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस किस्म का पौधा निकलेगा। हमने ग्रीन मांगा, निकला व्हाइट, तो वो दिक्कत किसान के सामने सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, किसान से भी, किसानों एक किसान होने के नाते मेरा सभी किसान भाइयों से भी ये मैं कहूंगा कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में ज्ञान अध्ययन कर ले, वैज्ञानिकों से सलाह कर ले, और उसके बाद उसको स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें, जिससे कि हमारा खर्चा कम से कम हो और साथ ही जो भी कार्य करें उसको विविधीकरण की योजना के तहत करें।
4: जी हाँ किसान साथियों, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर सुना है। कैसे अगर हम कोई भी अगर कोई भी फसल की हम अगर उपज लेना चाहते हैं तो उसके पहले उसका गहन अध्ययन करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत या हमारे पड़ोसी किसान से देखकर हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी फसल की खेती करें, तो कहीं ना कहीं हम उसके बीजों में और उसके रख रखाव, उसमें कौन सी दवा लगेगी आदि चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं और हमारी खेती में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, बहुत ज़रूरी है कि आप पास के केवीकी केंद्र में जाएं और वहां से संपूर्ण प्रशिक्षण ले लें। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो प्रशिक्षण केंद्र है, किसान विज्ञान केंद्र है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र जो चलते हैं उसमें भी आप भाग लेकर अपनी आपका जो भी मन है कि हम मुझे ये वाली खेती करनी है, जो भी खेती आप करना चाहते हैं वो आप उनको बताइए और जानिए कैसे उस खेती को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर गहन अध्ययन करने की बहुत ही आवश्यकता है, तो ताकि हमारी जो हमें नुकसान उठाना ना पड़े और हमें अधिक से अधिक फसल मिल सके, उससे हमारा मुनाफा भी हो सके और साथ ही हम दूसरे किसानों को भी हमारी खेती से प्रेरणा दे सकें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान भाइयों, आजना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप ये घणी खरी महत्वपूर्ण जानकारी ने जानियो है अने आशा भी करी है कि ये जानकारी घणी खरी है, आपू हमजमा भी आवी है। आपू जानिए है कि अगर आपू देखें तो आजकल आपू हर भगवान ने आपू फूल चढ़ावी से, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं अगर आपू देखें तो फूलों की खेती जो है ये एक फायदा वाली खेती थी सके है। तो किसान साथियों, हूँ आशा करूँ कि घना खरा किसान इनकी खेती ने करे अने ये बात तिना ने गले उतरी है कि फूलों की खेती में भी फायदो है। तो आशा करिए है कि ये भी खेती कहीं ना हमारा किसान जो भाई है जो करे अने अगाड़ी ली नावे इनी खेती ने भी और इनकी भी अधिक से अधिक मुनाफो आपू ले सकें। तो आज ने इना कार्यक्रम में आपू ये विस्तृत जानकारी ले दी है किसान भाइयों, अने आशा करिए है कि तमु अपना पड़ोसी किसान भाई ने भी इन्हें बारे में बताड़ो अने तीन भी ये खेती करवानो सुझाव आलो। इन्हीं हाथे किसान भाइयों, हमने समय थी गयो है तमारती विदा लेवानो, आप तमारती फिर काल मुलाकात था है इना समय पर। इतरे बनेला रहो हमारे हाथे रेडियो टाटा भी 90.8 FM नी हाथे झबवानी आवाज पर।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरे खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आज की मेहमान की कहानी एक प्रोफेशन या एक पहचान में सिमटने वाली नहीं है। डॉक्टर क्षितिजा सिंह का बचपन शिमला के एक ऐसे घर में गुजरा जहां पे आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, लिटरेचर, कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस जिंदगी का एक हिस्सा थे। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े उनके फादर और फोक आर्टिस्ट मदर ने उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही एक्सप्रेशन और अलग पर्सपेक्टिव्स की वैल्यू समझाई। फिर उनकी जर्नी साइकोलॉजी, एजुकेशन, काउंसलिंग, रेडियो, एंकरिंग, राइटिंग, पोएट्री और आर्ट तक पहुंची। साइकोलॉजी में PhD और कैलिफोर्निया के फीलिंग गुड इंस्टीट्यूट से Level 2 साइकोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग के साथ आज वो पेप किड्स में करिकुलम डायरेक्टर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ स्किल्स पर काम कर रही हैं। एक डिफेंस फैमिली का हिस्सा होने के कारण बार बार बदलते शहरों और कल्चर्स ने उन्हें अडेप्टेबिलिटी और एम्पथी सिखाई, और आज शायद इसीलिए उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत शब्द क्यूरियोसिटी है। हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखना और उससे कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना। तो आज जिंदगी अनप्लग में बात होगी इमोशनल इंटेलिजेंस, बचपन, साइकोलॉजी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, चेंजिंग आइडेंटिटीज और उन सब एक्सपीरियंस की जो एक इंसान को अंदर से शेप करते हैं। स्वागत करते हैं क्षितिजा जी का। तो क्षितिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड के एक और स्पेशल प्रोग्राम में। मैम, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी जी,
1: आई एम फीलिंग वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे आके, और आई रियली फील ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी।
0: थैंक यू फॉर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग अस द प्रिविलेज टू होस्ट यू मैम SNR पे। SN रेडियो बहुत एक्साइटेड है आपको होस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे रोल्स अपनाए, आपने बहुत सारी चीजें की जीवन में, आपने आर्ट किया, म्यूजिक किया, लिटरेचर, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, ये सब आपकी जिंदगी का बहुत कोर हिस्सा रहे हैं।
1: जी,
0: तो आपके हिसाब से ये जो क्रिएटिव एनवायरमेंट आपको बचपन से मिला, घर में भी मिला, आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फादर स्पेशली बिकॉज ही वॉज अ फोक सिंगर एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड वन, तो उस तरह से एक तो आपके पिताजी के बारे में आप हमें थोड़ा सा अगर कुछ बताएं और इस पर्सनालिटी के बारे में बताएं जो बचपन से आपको मिली, जिसने आपको शेप किया इन सभी रोल्स के लिए।
1: श्योर तनुषा, आई वुड लव टू स्पीक बिकॉज मेरे पिताजी जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो रेडियो का वो उस टाइम का नाम थे जब सिर्फ रेडियो होता था, एंड ही वॉज अ लेजेंड। तो वो मतलब घर घर में उनका नाम था, श्री अच्छर सिंह परमार। आज भी अगर आप हिमाचल के इंटीरियर्स में जाते हैं तो लोग उन्हें बहुत आदर से, सम्मान से बुलाते हैं, एंड दे नो देम, नो हिम। सो और जो फोक है, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल फोक है हिमाचल का, वो काफी उन्होंने उसको बहुत गाया और बहुत सेलिब्रेट किया, आई वुड से। एंड देर आर मेनी लॉरल्स टू हिज, यू नो, बिकॉज उनका फिर कुछ गीत ऐसे हुए हैं कि इतने पॉपुलर हो गए जो कि वो फोक, उन्होंने उसको फोक को ही डेडिकेट कर दिया, ट्रेडिशनल ही सॉन्ग्स ही उनको माना जाता है। और ही रिटायर्ड एज ड्रामा प्रोडक्शन हेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, ही वॉज ऑल्सो अ न्यूज रीडर फ्रॉम दूरदर्शन। सो वो एक बैकग्राउंड जो था घर का हमारा वैसा ही था माहौल, आप कह सकते हैं क्रिएटिव माहौल था। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट से आप जुड़ते हैं तो यू गेट एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, क्योंकि यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर आर्ट फॉर्म्स ऑल्सो। आपका एक विजन जो है बहुत ब्रॉड हो जाता है बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी ब्रॉड हो जाती है। तो उस तरीके का माहौल मिलना बचपन में, मैं कहती हूँ कि आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट, इवन नॉट ओनली मी बट माई सिबलिंग्स ऑल्सो। हम लोगों को कितने अलग अलग तरह के फील्ड के लोगों से हम लोग मिले, कोई राइटर, कोई डांसर, कोई पेंटर्स, कोई लिटरेचर में कोई कितने ही लोगों ने महारत हासिल कर रखी थी। और तो और बाकी दूसरी फील्ड से भी साइंस, हमारे डॉक्टर्स भी रहे हैं फैमिली में, आईएएस ऑफिसर्स भी रहे हैं। सो एक बहुत अलग माहौल था हमारे घर का। और सच बोलूं तो हम बहुत छोटे से घर में पले बड़े हैं, शिमला आपको मालूम है बहुत छोटी जगह है, और हमारा घर भी बहुत छोटा था। तो ऐसा नहीं था कि अगर कोई टूपे आया है, कोई बातचीत हो रही है तो हमसे छुपी रहेगी,
0: हम वही तो मजा है जी, वही तो मजा है।
1: तो वो हम मतलब, और हम सारी बातें सुनते थे, रात को देर देर तक भी कई बार जागते रहते थे। तो उसके बावजूद हम लोग कई बार, हमें दिन में इतना हमें टाइम नहीं मिलता था, तो हम रात को पढ़ते थे जब सब सो जाते थे और तब हमारी पढ़ाई शुरू होती थी। तो उस तरीके की जब हम माहौल में पले बड़े होते हैं तो एक मुझे लगता है कि एक हमें एक एडिशनल एज मिलता है लाइफ में। एक आपका पर्सपेक्टिव तो खुलता ही है, आप एडजस्ट होते हो, जो सिचुएशंस आ रही हैं जैसे आ रही हैं आप उसे एक्सेप्ट और

0: तो ये मेरे पिताजी का गीत
1: वाह
0: है,
1: ब्यूटीफुल
0: आई होप आप सबको अच्छा लगे।
1: मैम, आपकी आवाज में वो पहाड़ों वाली बात है, वो कसक है, वो एको है आपकी आवाज में। सुनते मुझे ऐसा लगा काश सुनते ही जाऊं अनप्लग्ड वर्जन, बट
0: थैंक यू सो मच
1: कोई
0: तनुष्री।
1: बात नहीं। चलिए अब हम सुनते हैं आप दोनों की ही खूबसूरत आवाजों में ये खूबसूरत गीत, सोनी सोनी शिमले।

0: बहुत ही खूबसूरत आवाजें, एकदम जहन में उतर जाने वाली आवाजें हैं आप दोनों की।
1: यू सो मच तनुषा, थैंक यू।
0: ब्यूटिफुल,
1: थैंक यू।
0: मैम, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी काम करते हैं और बच्चों को काउंसलिंग करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत ही नेचुरल सा एक सवाल इससे निकल के आता है कि जो आज के बच्चे हैं, जो हमारे जैसा बचपन जिनका नहीं है, आपके मेरे जैसा, स्क्रीन्स हैं, कॉम्पिटिशन है, कॉन्स्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन, कंपेरिजन, सब कुछ है उसके आसपास, और ये मतलब इससे कोई एस्केप नहीं है, दिस इज हाउ इट इज फॉर देम। तो इसके बीच आपके हिसाब से जब आप बच्चों से डील करते हैं, आपके एक्सपीरियंस में वो कौन सी इमोशनल स्किल है जो हर बच्चे को बचपन में इनग्रेन करनी चाहिए, उसे सिखानी जरूरी है?
1: तनुषा, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने जैसे आपने बताया कि मैंने काफी काम किया है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो मुझे लगता है कि जो हमारा दौर था वो बिल्कुल अलग था। हमारे शायद मोस्ट ऑफ अस, हमारे पेरेंट्स जो थे उनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम था घर में, कई बार दादा दादी नाना नानी भी थे, बट आजकल मोस्टली वी आर इन द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड पेरेंट्स वर्किंग, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू से ही जो बच्चे हैं आज के, हम उन्हें एक इमोशनल अवेयरनेस के बारे में जरूर बताएं। हम लोग फिजिकल फिटनेस के बारे में काफी ऑफन बात करते हैं, लेकिन एक इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से कि बच्चों से ज्यादा कई बार पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत होती है, बिकॉज आजकल के दौर में जहां इतना कॉम्पिटिशन है, इतना स्ट्रगल है, इतना मतलब हरेक को आगे बढ़ना है, एंड नो वन टीचेस आर चिल्ड्रन। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, बच्चों के 99% आए, दे आर शेयरिंग अपने बच्चों की मार्कशीट्स तक वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, यू नो 99% परसेंटाइल है या परसेंटेज है। आई मीन आई फील कि हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है, वो है फेलियर, जो कि सिर्फ एग्जाम में नहीं है, आपकी जिंदगी के भी कई ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पे आप फेल हो सकते हैं। तो वो हम अपने बच्चों को आजकल क्या हम फेल होना सिखा रहे हैं कि फेल कैसे होना है बेटा, कैसे एक ग्रेसफुली फेल होना है और उससे बाउंस बैक कैसे करते हैं? आर वी टीचिंग आर चिल्ड्रन? हम इतने सुसाइड केसेस देख रहे हैं, हम इतने ज्यादा

0: मतलब डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए उनका रेजिलियंस नहीं है, वो बाउंस बैक नहीं कर पाते. तो आर वी रियली टीचिंग आवर चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ देयर इमोशंस? आपको क्या हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप एक्सेप्ट करो डर लग रहा है. डर लगने में कोई बुरी बात नहीं है. हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब को इमोशंस फील होते हैं और डर एक नेचुरल इमोशन है, तो हम सब उसे फील करते हैं. पर क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि उससे डील कैसे करना है, एंगर से डील कैसे करना है? हम सबको गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना कोई बुरी बात है. ये हमारा इमोशनल आउटलेट है, बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम उसे चैनलाइज करना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजें हम लोग सोचते हैं कि हम खुद सीख जाएंगे, हमें कोई बताने वाला नहीं था हमारी जनरेशन को. लेकिन आजकल के माहौल और आजकल का जो दौर है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये सब उनकी अवेयरनेस में आए ये चीजें कि बेटा आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन बहुत जरूरी है उसे बाउंस बैक करना. कोई बात नहीं, 99% नहीं आए, 60% आए हैं, लेकिन अगर आपने उसमें अपना पूरा हार्डवर्क किया है और 60% आपको पूरा समझ आया है जो आपने परफॉर्म किया है, तो यू आर अ विनर, यू हैव अचीव्ड. और आपका कॉम्पिटिशन हमेशा अपने आप से है. तो हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को रेजिलियंस सिखाएं, फेल होना सिखाएं और अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना सिखाएं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, आई थिंक टुडेज एनवायरमेंट. हाँ जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि हाइपर पेरेंटिंग का जो जमाना है इसमें हम बिल्कुल मॉली कॉडलिंग करते हैं बच्चों की, और टीचर्स से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उन्हें स्कूल में मॉली कॉडल करें, और नहीं करें तो कंप्लेंट रेडी होती है.
0: हमारे दौर में यार देखो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था और ज्यादा से ज्यादा दो कॉन्सोलेशन प्राइजेस होते थे, लेकिन आजकल के कॉम्पिटिशन में हर एक बच्चे को प्राइज दिया जा रहा है,
1: कुछ ना कुछ
0: फाइटिंग फॉर इट. आई मीन आपको बच्चे को सिखाना है कि कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट नहीं आया, दैट इज नॉट द ओनली थिंग, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, यू माइट नॉट be rewarded all the time.
1: Yes, you might not be rewarded all the time. Very important, very important. And also if you are not rewarded this time, the struggle and the strive that you need to do to reach there is also absent, because aapko lagta hai acha mujhe kuch to mil gaya na, theek hai main entitled hu, main koi mila hai to matlab I deserve it, wherein perhaps you actually don't. I mean, you know, and resilience of course, yes, like you said, it's
0: accept karna bahut zaruri hai ki pehle to parents ko accept karna bahut zaruri hai ki bachcha nahi kiya.
1: Yes, actually pehle to parents
0: ko, they will not teach their children.
1: absolutely. Aur ye bhi bahut sahi aapne point out kiya ki hamare zamane mein ye sab cheeze sikhane ki zarurat hi nahi padti thi, kyunki hum already us struggle mein pade hue the, already wo dekhte the. To
0: aaj tak itne resources nahi the Tanusha, हम लोगों को एक आइसक्रीम खाने भी जब हम लोग जाते थे तो हमारे लिए सेलिब्रेशन होती थी,
1: प्रिविलेज. वो 5 रुपए हफ्ते में एक बार मिलते थे कि आज चलो 5 रुपए मिले, शायद कचौड़ी समोसा या कुछ खा पाएंगे या आइसक्रीम खा पाएंगे. उसमें भी इकोनॉमिक्स करते थे कि भाई मैं इकोनॉमिक्स करूँ, ये खाऊं कि वो खाऊं.
0: हाँ, राइट, एब्सोल्युटली. तो हम लोग मतलब अलग माहौल था आजकल, पर वो ये चेंज इज इनएविटेबल, मतलब हमें चेंज तो होना ही है. तो उस दौर के अकॉर्डिंगली क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या जरूरी है, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट. तो अभी मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: बिल्कुल, कि हारना सिखाएं, उन्हें एक्सेप्ट करना सिखाएं, रेजिलियंस थोड़ा सिखाएं, और थोड़ा उनको फेल होने के लिए एक्सेप्टेंस दें कि हाँ आप भी फेल हो सकते हो. और
0: फेल ही होंगे, आप बाउंस बैक नहीं करेंगे, डबल एनर्जी के साथ आप बाउंस बैक करके यू कैन डू मच मच बेटर.
1: यस, स्ट्राइव फॉर इट. यस, ब्यूटिफुली आंसर मैम. इसी से आगे चलते हैं. ये भी मेरा एक बहुत फेवरेट सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी जब भी कोई चेंजेस होते थे लाइफ में, स्पेशली जगह चेंज का. मुझे याद है हम अजमेर से जयपुर आए थे, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. बट जैसे आप डिफेंस फैमिली का बैकग्राउंड रहा है आपका, यू वर मैरिड इन टू अ डिफेंस फैमिली ऑल्सो, तो बार बार आपने नए शहरों को एक्सप्लोर किया, वहां के नए कल्चर्स कम्युनिटीज को एक्सपीरियंस किया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या वो अडेप्ट करना हमेशा चैलेंजिंग था, या इसी एक्सपीरियंस ने आपको थोड़ा और इमोशनली अडेप्टेबल और रेजिलियंट बनाया? कैसा एक्सपीरियंस होता है ये हर बार, यू नो, दिस चेंजिंग थिंग?
0: यार देखो तनुषा, चेंज तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो डेफिनेटली होता है, बिकॉज आपको, आप एक नए सिरे से हर बार शुरुआत करते हैं, यू नो. बट मुझे लगता है कि वो आपको चैलेंजेस तो है, लेकिन वो जो आपको सिखाता है वो एक अलग लेवल का है. वहां का कल्चर, वहां का एनवायरमेंट, और वो आपको बहुत बहुत स्ट्रांग कर देता है आपको, चाहे आप इमोशनली बोले फिजिकली बोले, आपका जो माइंड है, क्योंकि हम लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जो डिफेंस फैमिलीज में मतलब जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं, हम लोग हमेशा अपने आपको दो तीन साल में, एक साल में अपने आपको रीसेट करते हैं. वो हमने सीखा होता है उसे अनलर्न करना, जो जो हमने नए सिरे से एक नई शुरुआत करना. कई बार तो मैं मजाक में ये भी कहती हूँ कि हम हर दो साल में अपना हमारा ससुराल चेंज होता है.
1: हाँ हाँ बिल्कुल.
0: तो दैट इज, तो नए सिरे से नए लोगों के साथ, इतने लोग, मतलब हमारे हिंदी हिंदू कल्चर में कहते हैं कि कर्म जुड़े होते हैं आपके. मैं कहती हूँ पता नहीं कितने लोगों के साथ हमारे कर्म जुड़े हैं, इतने लोगों से मिली हूँ और इतने लोगों के साथ, और फ्रेंकली कह रही हूँ, मेरा हर स्टेशन में मैंने कहाँ कहाँ नहीं देखा, चाहे एक्सट्रीम नॉर्थ हो या गुजरात जैसी जगह, एक्सट्रीम गुजरात के एरियाज हो, नॉर्थ हो, जम्मू कश्मीर हो, इतने हर जगह आई हैव फाउंड वंडरफुल पीपल. ऐसा नहीं है कि मेरा एक भी बुरा एक्सपीरियंस रहा हो अपनी लाइफ का, कि मैं किसी गलत इंसान से मिली हूँ. इतने हम्बल, इतने वेलकमिंग लोग हैं हमारे इंडिया में,
1: बिल्कुल.
0: आप कहीं पे भी चले जाओ, एंड आई टेल यू, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसे मतलब ऐसी जगह मेरी शादी हुई है जहां पे मैं इन सब लोगों से मिल पाई हूँ. इनके कल्चर्स, उनका ऑथेंटिक खाना, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, और हर जगह से मैं वहां का एक ऑथेंटिक चीज उठा लेती हूँ. जैसे साड़ी उठा ली, आसाम से मेखला उठा लिया, कांजीवरम उठा लिया. उनका वो होता है एक, कहते हैं ना, एक टोकन रखती हूँ, और मतलब मुझे इतना एक्सपोजर, एंड आई हैव लव्ड इट, एंड मीन थ्रू आउट मेरी जिंदगी के 23 साल हो गए हैं, and now I'll be shifting for the 16th time.
1: Oh my. But
0: I tell you, it has, I have been blessed.
1: Right.
0: It's been a wonderful experience.
1: Right.
0: My life, yeah.
1: आई एम श्योर मैम, आई एम श्योर. बहुत सुंदर आपने बात कही एक, कि ये एक्सपीरियंसेस होते तो इनिशियली तो आपको ऑब्वियसली जिटर्स फील होते होंगे, बट फिर इवेंचुअली वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया ना. आपने कितना कुछ सीखा, कितने सारे लोगों से मिले, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने बताया कि सब एक्सपीरियंसेस इतने वार्म थे. तो सच है कि हमारे देश में सच में मतलब दे आर गुड पीपल, एंड इट्स नॉट ऑल दैट बैड, इट्स नॉट ऑल दैट डार्क.
0: इट इज नॉट, बिलीव मी. हम लोग मतलब इतना हम लोग घूमे हैं, हम लोग बाय रोड ट्रेवल किए हैं, जगह ऐसा नहीं हुआ कि हमें कभी किसी ने कभी हमें मदद की जरूरत पड़ी हो तो कोई आगे नहीं आया है. इट हैज बीन वंडरफुल टाइम. मैं कह सकती हूँ कि हाँ, हम लोग शायद भगवान की कृपा से हम लोग थोड़े ज्यादा ब्लेस्ड हैं, बट आई टेल यू, इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, एंड लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं दुनिया में. मतलब आई बिलीव इन गुडनेस एंड काइंडनेस,
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज ऑफ देम. या
1: बिल्कुल, आई एम श्योर. Such rich experiences and such experiences of learning, unlearning and relearning life.
0: Relearning, absolutely. वो बहुत जरूरी है.
1: Beautiful. चलिए इन्हीं बातों के बीच एक और जिंदगी से ही जुड़ा हुआ गाना सुनते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं लव यू जिंदगी.
0: लव यू जिंदगी, absolutely.
1: डियर जिंदगी से.

0: बहुत ही जीवन देने वाला गीत है ये, ब्यूटीफुल.
1: यस यस एब्सोल्युटली, आई लव द सॉन्ग
0: एब्सोल्युटली मैम. आगे चलते हैं. आपने साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, एजुकेटर, पोएट, आर्टिस्ट, रेडियो प्रोफेशनल्स, ये सभी आपके रोल्स जैसे रहे हैं, बट जब आप लाइक क्षितिजा जी जब अंदर से नॉइजी फील करती हैं, तो वो अपने किस वर्जन की तरफ टर्न करती हैं, उसके साथ अपना स्पेंड करना चाहती हैं समय, उसके साथ थोड़ा रिलैक्स होके बैठना चाहती हैं, या फिर सिर्फ अंदर के लिसनर की आवाज को सुनती हैं उस मोमेंट में कि वो क्या कह रहा है?
1: I love the question because psychologist जो होता है ना वो खुद को कभी मतलब काउंसिल नहीं कर सकता तो, और ना ही हम अपने फैमिली वालों को कर सकते हैं. तो मेरे लिए क्या आउटलेट है कि जब when I am noisy, my mind is full of chaos and you know वो बहुत कुछ ट्रिगर्स होते हैं आसपास, so I find solace in my creative work. Tanusha, मैं मतलब मैंने बहुत अलग अलग, जैसे आपको पता है कि हम लोग अलग अलग जगह रहे, हर जगह हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम अपने एक करियर को परस्यू कर सकें. कई बार आप इंटीरियर्स में जा रहे हैं दो महीने के लिए, कहीं आप कहीं बहुत एक्सट्रीम ईस्ट में कहीं बैठे हैं, तो वो मतलब आपको वो आपको कंटिन्यूएशन ऑफ आपका करियर नहीं मिलता है, बट देन आइदर यू क्राई और यू एक्सेप्टेड हैप्पीली. तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मुझे वहां पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने ग्रैब किया है. तो मैंने जैसे अपना आर्ट परस्यू किया, अपनी म्यूजिक को कंटिन्यू किया, अपनी क्रिएटिव वर्क्स करती रहती हूँ, चाहे क्रोशे हो गया, निटिंग हो गया, यू नो, चाहे राइटिंग हो गया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आउटलेट है. व्हेन आई एम फुल ऑफ क्योस, मैं हमेशा मतलब मैं कई बार ये कहती हूँ कि मतलब बाहर जब भी मैं ये काम करने लगती हूँ तो शोर एकदम बंद हो जाता है, एंड इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी when I'm doing my creative works. तो हमारे बल्कि उसमें है भी kinesthetic meditation की भी बात की गई है हमारे ग्रंथों में, जहाँ पे कोई physical activity involved होती है and you are meditating. शोने भी dynamic meditation का एक form इसी base पे ईजाद किया था. तो ये हमारे लिए एक meditation है, एक form of meditation है, जहाँ पे आप बहुत से तर्क वितर्क करते हैं. आप अपने दिमाग में जब आप creative काम कर रहे थे, आप इतना उसके deep उसके अंदर चले जाते हैं कि आप अपने आप आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आने लगते हैं, क्योंकि आप कई पर्सपेक्टिव्स आपको मिलने लगते हैं. एंड सीरियसली टेलिंग यू कि आपको मतलब बहुत टाइम से भी अगर आप किसी उसमें फंसे हो, कोई ट्रैप्ड फील कर रहे हो या आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो ये ऐसे काम है जो आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी देते हैं कि ठीक है ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर मैं ये ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है. आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जब भी किसी को ऐसा लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, तो दे शुड फाइंड देयर सोलेस इन दीज क्रिएटिव वर्क्स इन सम हॉबी, ताकि वो. सो माई आउटलेट इज, मैं कोई भी क्रिएटिव काम करती हूँ तो मेरे लिए वो मेडिटेशन, एंड इट इज लाइक आई फाइंड सोलेस, और बिलीव मी आई कीप माई काम इंटैक्ट, नॉट एज अ साइकोलॉजिस्ट बट.
0: ब्यूटिफुली आंसर्ड मैम, बहुत ही गहराई से सोचने वाला सवाल और सवाल के साथ जवाब था आपका, जिसमें हम पॉन्डर कर सकते हैं इसके ऊपर कि एक्चुअली किस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट जब ऐसा नॉइजी फील करे तो किस तरह से उसको डील करता होगा, और कोई भी इंसान कैसे अपने क्रिएटिव परसूट्स में जाके एक बबल में जा सकता है जस्ट टू अवॉइड ऑल दैट नॉइज. ब्यूटिफुल मैम. ऑल्सो रेडियो कम्युनिकेशन का सवाल है जो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आपकी रेडियो जर्नी कैसी रही, और क्या आपको लगता है कि जो आवाज होती है वो कभी कभी वो इमोशंस भी रिवील कर देती है जो आपके बिल्कुल अंदर के होते हैं, आप छुपाने की कोशिश करते हैं, और क्या आपकी लिसनिंग भी रेडियो से बेटर होती है? क्या आपको इसने साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट जैसे भी हेल्प किया है, बिकॉज यू कैन लिसन बेटर?
1: तनुषा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिकॉज रेडियो सिर्फ मेरे लिए मेरी जर्नी नहीं है, वो मेरे पिताजी की भी जर्नी रही है रेडियो. और उस टाइम पे सिर्फ जब रेडियो था और गांव-गांव में टीवी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो रेडियो था, तो लोग आवाज सुन के अपना वो सारा जो उनका दुख दर्द था, जो हमारे लेजेंड्स जो

0: आई थिंक वॉइस वो एक जादू है. इट्स एन एनर्जी. हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है, यू नो.
1: बिल्कुल
0: तो इट्स
1: बिल्कुल
0: लाइक अ कॉस्मिक वेरिएशन. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम लोग रिसीवर्स भी हैं और ओमिटर्स भी हैं. तो हम जब बात करते हैं या जो भी हम अपना कॉन्वर्सेशन करते हैं, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. और अगर वो क्लियरली हमारी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होती है, तो वो कहीं ब्रह्मांड में फ्लोट करती रहती है, बिकॉज एंड इट गोज बैक टू
1: द सोर्स.
0: द सोर्स. सो ये हमारे उसमें सारी चीजें डिस्क्राइब की गई. तो मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ जब आप बोलते हैं तो वो सिर्फ एक इमोशन नहीं होता, बल्कि आप अपना इनर सेल्फ किसी को रिवील कर रहे होते हैं. एंड इफ यू आर अ गुड लिसनर, इफ यू आर अ गुड रिसीवर, तो आपको हर शब्द के पीछे के जो वो है ना, बिटवीन द लाइंस, आप समझ पाते हैं कि वो इमोशन क्या है. तो जहां पे आपको बोलना इम्पोर्टेंट है, एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, एट द सेम टाइम इफ यू आर अ गुड लिसनर, तो वो आपको एक अपर हायर एज देता है. आई थिंक यू आर यू. तो ये रेडियो बहुत, मतलब जो भाषा है उससे हमें एक तो बहुत माइंडफुली बोलना भी चाहिए और बहुत माइंडफुली रिसीव भी करना चाहिए. वो अगर नेगेटिव है तो डोंट रिसीव इट. अपने आप अपने फिल्टर्स ऑन रखिए एंड लेट दी एनर्जी गो बैक टू दी सोर्स. डोंट रिसीव इट, डोंट रिसीव. एंड और अगर अच्छा है तो उसे रिसीव करिए एंड इनकलकेट इन योर
1: क्या बात है मैम,
0: पर्सनैलिटी. आई थिंक
1: क्या बात है. ब्यूटिफुली आंसर, ब्यूटिफुली आंसर. दिस इज सो डीप एंड कितना सोचने का और फूड फॉर थॉट दिया आपने हमारे लिसनर्स को, रेडियो लिसनर्स को, क्योंकि हम SNR फैमिली में एक बहुत बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं पैशनेटली कि हम रेडियो को रिवाइव करें और उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाएं, और इसीलिए हम ऐसे शो लहर करते हैं.
0: आई कैन सी योर एफर्ट्स तनुषा. आई हैव हर्ड योर, मैंने आपके कुछ प्रोग्राम सुने हैं एंड आई फील कि वो जो ऑथेंटिक जो रेडियो था, जिसमें एक मीनिंगफुल भाषा का इस्तेमाल होता था, एक मीनिंगफुल थॉट्स आते थे, एक वो होता था, तो वो पर्सपेक्टिव अब बहुत मिसिंग है. जब मैं कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स जब मैं देखती हूँ, तो मुझे उसमें, आई मीन ठीक है, दैट्स अ ट्रेंड. आई डोंट गो, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम श्योर इट आपको बहुत उससे
1: थैंक
0: बेनिफिट
1: यू मैम, थैंक यू सो मच. एंड बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, ऑडियो स्टेशंस हो गए हैं, रेडियो स्टेशंस की जगह ऑडियो स्टेशन सुनते हैं हम.
0: मिले.
1: बट हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने मूवीज भी एयर करना शुरू करी हैं. पिछले हफ्ते हमने मुगले आजम सुनी पूरी, और इस हफ्ते हमने शोले सुनेंगे हम चार पार्ट्स में. यस यस यस यस. तो वो सिर्फ जो आपने, जी जो आपने बोला ना कि रेडियो को सुन के, सिर्फ सुन के आप देख लेते थे चीजें, ऐसा रेडियो था, ऐसे अनाउंसर्स थे, ऐसा वो दौर था रेडियो का जब लोग सिर्फ सुन के सब महसूस कर लेते थे. तो क्या खूबसूरत दौर था, भाषा की जो उसमें पकड़ थी, भाषा की इम्पोर्टेंस थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और
0: यस,
1: और ये जो कॉस्मिक कनेक्शन आपने बताया, ये एक बहुत नया पर्सपेक्टिव आपने मुझे भी दिया एज अ रेडियो पर्सन कि यस, दिस इज सो ट्रू. इट्स अ ब्यूटिफुली आंसर्ड क्वेश्चन एंड आई रियली वुड लाइक आवर लिसनर्स टू पॉन्डर अपॉन दिस कि रेडियो की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज है बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर एंड ऑफकोर्स ट्रांसमिशन. ब्यूटिफुल मैम.
0: थैंक यू सो मच तनुषा.
1: जी, इन्हीं बातों के बीच हम सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत, गिलेरिया फिल्म दंगल.

0: तो देयर आई स्टार्टेड राइटिंग. आई सेड कि चलो एक नया करते. हालांकि घर का, जैसे मैंने आपको बताया कि घर का माहौल ऐसा था कि हम लोग एक बहुत लिटरली मतलब रिच बैकग्राउंड में पले बढ़े, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ लिखना क्या होता है, पोइट्री क्या होती है, शायरी क्या होती है, ना उस तरीके से हम बना था थोड़ा सा. तो आई स्टार्टेड राइटिंग वहां पे, क्योंकि कुछ नहीं था करने को, तो खाली वक्त में मैं लिखना शुरू किया.
1: बताइए, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. यस यस
0: तो वो एक नया एरिया मेरा डिस्कवर हुआ. तो फिर मैंने, लेकिन मैंने उसमें एक चीज मुझे बहुत लगा कि जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको कई बार खींचता है अपनी तरफ. योर माइंड इज नेवर एम्प्टी, इट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विथ सो मेनी थॉट्स एंड सो. तो कुछ समय तक मैंने लिखा, उसके बाद दो तीन डायरीज मैंने अपनी भरी. स्टॉप राइटिंग, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दिस स्पेस, बिकॉज इट्स ड्रैगिंग मी टू डीप.
1: यस, और आप बार बार डेवलप करते हो, जो स्पेशली अगर कोई इमोशनल है तो वो बार बार डेवलप करता है वापस जाके, नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ.
0: हाँ बिल्कुल, और वो मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रहा था. मैंने डेलिबरेटली उसको थोड़ा छोड़ा,
1: पॉज दिया.
0: उसके बाद मैंने काफी, मतलब जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स थे, वहां पे आई रिसाइटेड सम ऑफ माई पोएट्री. कुछ बुक्स में मेरी एंथोलॉजी ऑफ बुक्स में कहीं पे मेरी पोएट्रीज जो है वो पब्लिश हुई है. अभी एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है एंड आई एम वर्किंग on my poems now, because अभी जो मैंने बहुत पहले जो लिखी थी वो मेरी अभी डायरीज भरी पड़ी.
1: जी जी बिल्कुल, कंपाइल करें. यस यस यस, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू रीड फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर सच अ पोएटिक पर्सन योर सेल्फ. आई मीन आपके सब आंसर्स इतने इन डेप्थ में और इतने थॉट के साथ फ्लो होते हैं, तो आई कैन बी श्योर कि यू विल बी अ ब्यूटिफुल पोएट. मैं खुद पोएट्री करती हूँ, मुझे प्रोज का उतना शौक नहीं है, तो मैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर पोएट्री कंपाइलेशन.
0: आई श्योरली लेट यू नो, जब भी मेरा वो काम खत्म होगा, मैं आई एम कंपाइलिंग इट, देन आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद इस साल मैं अपनी बुक रिलीज करूंगी.
1: अमेजिंग मैम, अमेजिंग. मुझे बहुत मिरर होती है आपकी पर्सनैलिटी अपनी पर्सनैलिटी से, बिकॉज इवन आई एम लाइक दैट. आई एम इन टू मल्टीपल थिंग्स राइट नाउ, ऑल्दो प्रोफेशनली आई वॉज अ लॉयर फॉर 7 years. आई परस्यूड लॉ, आई 7 years आई वॉज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बट देन लाइफ में वो एक चेंज लिया, वो बहुत बड़ा डिसीजन लिया. नाउ आई एम इन टू मल्टीपल थिंग्स, आई एम राइटिंग ऑल्सो, आई एम डूइंग पोएट्री ऑल्सो, आई एम डूइंग आर्टिकल्स, आर जे वॉइस ओवर, बट आई थिंग. सो मुझे बहुत मिरर करी आपकी प्रोफाइल और आपकी पर्सनालिटी, और शायद इसीलिए हम कनेक्ट हुए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है. सो ब्यूटिफुल. यस यस, इसी से आगे चलते हैं. आज का हमारा आखिरी सवाल है, बट अगेन ये मेरा बहुत फेवरेट सवाल है. अगर आज की जनरेशन को इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में आपको बस एक बात कहनी हो तो वो क्या होगी?
0: जैसे मैंने पहले भी कहा तनुषा, कि आजकल की लाइफ बहुत अलग है. हम लोग जो थे, हम लोग ब्रिजेस थे. हमारे पेरेंट्स ने शायद कुछ भी नहीं देखा था, हमने देखना शुरू किया और आज हम एआई के दौर में हैं, हम लोग ब्रिज हैं. लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो उन्होंने सब कुछ देखा है. वो एआई में ही पैदा हुए हैं, वो एल्गोरिदम्स की भाषा समझते हैं, वो सोशल मीडिया की भाषा समझते हैं. और मुझे लगता है कि हमें अवेयरनेस लेके आनी बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए, कि एल्गोरिदम्स बहुत माइंडफुली डिजाइन किए गए हैं, बड़े स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किए गए हैं. आप जो देखना शुरू करते हैं अपने मोबाइल पे, आप वो ही देखते हैं और वो ही एल्गोरिदम आता है, जो कि आपको फिर बाकी पर्सपेक्टिव से बहुत दूर रखता है. इफ यू आर ऑल द टाइम ऑन सोशल मीडिया, तो वो जो आपने एक चीज देखनी शुरू की है, वो उसी को ही, उसी का एल्गोरिदम सेट करके इट विल कीप शोइंग यू द सेम थिंग ऑल ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू विल नॉट गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, योर विजन विल नॉट ब्रॉडन. सो आई, जो मैं एक पर्सनली, मैं एज अ मदर ऑल्सो ऑफ अ 19-year-old बॉय, मैं चाहूंगी कि बच्चे थोड़ा सा, इट इज इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, एआई इज इम्पॉर्टेंट, बट दिन के 2-3 घंटे प्लीज गिव टाइम टू बुक्स, गिव टाइम टू न्यूज़पेपर्स, गिव टाइम टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज, ऑटोबायोग्राफीज. तो वो आपको बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव देगा, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये ठीक है और ये गलत है. और मैं एक बहुत, मेरा दिल से मेरा एक सजेशन है जो मैं देना चाहती हूँ आजकल के बच्चों को, कि प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर, वंस ऑन इंटरनेट इज ऑलवेज ऑन इंटरनेट.
1: बिल्कुल,
0: आप इतना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं निकाल सकते वहां से. वो हमेशा बार बार बार बार कहीं

0: आपके सामने वो आएगा आपके अलग अलग पड़ावों में. तो ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ योर बिहेवियर, ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ योर लैंग्वेज, ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग एंड बी अवेयर एंड बी विजिलेंट. बी समवन जिसको कि आप लोग डायरेक्ट ना कर सकें, आप खुद अपना रास्ता ढूंढें डिफरेंट एनालाइज करके चीजों को सोच समझ के.
1: Yes.
0: So that is my one take on for younger generation.
1: ब्यूटफुल मैम, ब्यूटफुल. आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि जो आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे वो इटर्निटी के लिए चला जाता है. तो इतना अपने आप को, मतलब इतना अपना कंटेंट और अपनी भाषा ठीक रखें कि उसको कभी लुक बैक करना पड़े तो क्रिंज ना हो.
0: जी मैच्योरिटी आएगी, आप समझने लगेंगे, आपको अलग जॉब परस्पेक्टिव्स मिलेंगे, कहीं वो बार बार आपका हैम्पर नहीं.
1: यस,
0: ना दैट इट विल रिफ्लेक्ट ऑल
1: ऑफ यू. यस, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन यू.
0: सी यू एज, आई मीन, सो वो मुझे, आई ऑलवेज फील कि थोड़ा सा हम लोगों को बच्चों को अवेयर करना, उनके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन देना बहुत जरूरी है. आप कितने भी बिजी हो एज अ पेरेंट, आई ऑलवेज फील कि प्लीज एक घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको सुनो, सिर्फ सुनो.
1: यस,
0: नो नीड टू गिव एनी सजेशंस, नो नीड टू गिव स्कोल्ड देम, ओपन हार्टेडली, ओपन माइंडेडली उनको सिर्फ सुनो. डोंट शो योर रिएक्शंस.
1: यस,
0: प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज टॉक.
1: यस,
0: डोंट बी ऑलवेज इन एन एंग्री फेज की वो तुमने गलत कर दिया. नहीं नहीं, डोंट शो रिएक्शंस.
1: यस,
0: प्लीज लिसन टू योर चिल्ड्रन,
1: लेट देम हैव अ डायलॉग, ओपन
0: हार्टेडली.
1: And also you beautifully put it that हम bridges थे, but हमने सब देखा है इधर से उधर का, but ये बच्चे बहुत अलग माहौल में पढ़ रहे हैं और बहुत अलग दुनिया में बड़े हो रहे हैं. तो it's not very easy to maneuver life. And thank you so much ma'am, आपसे बहुत
0: गहरी.
1: जी
0: मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, and मुझे बहुत अच्छा लगा अपना आपसे बातचीत करके और अपने व्यूज शेयर करके. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू. क्षितिजा जी की आज की बातचीत में हमने साइकोलॉजी से लेकर पोएट्री, बचपन से लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस से लेकर सेल्फ एक्सप्रेशन तक जिंदगी के बहुत खूबसूरत रंग देखे. आपने हमारे साथ अपनी जर्नी इतनी खूबसूरती से शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM. शायद जिंदगी का मतलब हर सवाल का जवाब पाना नहीं, बल्कि हमेशा क्यूरियस रहना है, सीखते रहना है और हर एक्सपीरियंस से कुछ मीनिंगफुल बनाना है. मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए. नमस्कार.

0: में रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। दोस्तों, जीवन एक उपन्यास की तरह है, एक नॉवल की तरह है, रहस्यों से भरा रहता है ये। क्यों? जब तक आप एक पन्ना नहीं पलटते, आपको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। मौत लोगों में दूसरा सबसे बड़ा डर है। अच्छा, तो पहला डर कौन सा है? सारे लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोलना, ये सबसे पहला डर होता है। हम जीवन में अच्छाई से दूर भागते हैं और अपने पूरे जीवन किसी न किसी समस्या से घिरे ही रहते हैं। कुछ लोग समस्याओं के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, आपके पास दो विकल्प हैं। आप भागते हैं और छिपते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दुनिया को दोष देते रह सकते हैं आप कि उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया। या फिर आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का निर्णय ले सकते हैं। एक ही तो है जीवन, इसे भी शिक्षा ग्रहण करके और सुंदर बनाने में अपनी एनर्जी लगाइए, अपनी ऊर्जा लगाइए। अच्छा देखिए, बड़ी मजेदार बात है, हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, ईंधन पड़ता है, कहां से आता है दोस्तों? आपको पता है, धरती के नीचे दबे हुए वो पुराने पेड़ जो सड़ गए, गल गए, उन्होंने धरती के नीचे पेट्रोल को और डीजल को जन्म दिया जो हमारी गाड़ियों को ऊर्जा देते हैं। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी को जो ऊर्जा मिल सकती है वो एक जगह इकट्ठी रखी हुई है, वो है पुस्तकालय, लाइब्रेरीज। यहां पर बहुत सारी ऊर्जा कलेक्शन में रखी है, संग्रहित रखी है, जो कल्पना को ईंधन देती है, हमारी क्रिएटिविटी को चलाती है। सोचिए ना, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो क्या पेड़ से टपका था? जी नहीं, किसी व्यक्ति ने लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ी और उसकी कल्पना परवाज भरने लगी और उसने वो मोबाइल बनाया जो अब आपके हाथ में है। वे दुनिया की और खिड़कियां खोलती हैं क्या ये लाइब्रेरीज, और हमें खोज करने और हासिल करने के लिए मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान करती हैं ये लाइब्रेरीज। देखिए, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको खेल में माहिर तो होना होगा। सफल होने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, गौर से सुनिएगा इस बात को, बड़ी ही मजेदार है। सफल होने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है, दोस्तों की, और बहुत ज्यादा सफल होने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। जी हां, क्योंकि वो दुश्मन आपको घड़ी घड़ी हर पल खींचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और भरपूर सफलता पाते हैं। आप सूरज हो और यदि सूरज बुझ जाए तो छाया भी मर जाएगी। क्यों? इसलिए जीवन में आप जो कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना ही चाहिए, तो आपको उसके लिए लड़ना भी चाहिए। आपको डटे रहना होगा। जब बादलों के अंदर बिजली चमकती है ना दोस्तों, तो हम कहते हैं कि यूं देखा जाए तो ये सिर्फ बादल हैं, और अपना ध्यान हमें अगले भोजन, अगले दर्द, अगली सांस, अगले पन्ने पर लगाना चाहिए कि अगले पन्ने पर भला लिखा क्या है। देखो दोस्तों, गौर करो,
कोई भी व्यक्ति खुश होकर पैदा नहीं होता, हर किसी को अपनी खुशी खुद पैदा करनी पड़ती है। हम में से हर एक व्यक्ति अकेला है, लेकिन हम सभी को एक दूसरे के आराम और गर्मजोशी के देने के लिए एक साथ रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है मानो शांति एक सुस्ती है, एक कोहरा छाया हुआ है जो मानव जाति को उदासी से भर देता है। ऐसा लगता है शायद युद्ध ही है जो मनुष्य को जीवन के पूर्ण उल्लास के लिए प्रेरित कर सकता है। देखिए, इस बात को गलत ना समझिएगा दोस्तों, मैं युद्ध की बराबरी या युद्ध को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन शांति किस हद तक हमारे जीवन को उत्साहित करती है जरा गौर कीजिएगा। सच तो देखिए यही है कि दुनिया बहुत सुंदर है, आपको इस सुंदरता को पहचानना तो पड़ेगा। हमारी धरती में जादू है, लेकिन आपको जादूगर बनना होगा और आपको जादू को करके दिखाना होगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है। कैसे? ये हमारी बड़ी वाली की वो हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों जाया ना करो अपने अल्फाजों को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो आपको समझता कौन है। दोस्तों एक सवाल बार बार पूछा जाता है, चारों तरफ पूछा जाता है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है। देखिए सवाल तो बहुत ही आसान है लेकिन जवाब बहुत रहस्यमयी और गूढ़ है। अब सुनिए, जो कहता है कि केवल उन्हीं बातों को सुनूंगा जिनको सुनने से मन में परम पुरुष की ओर बढ़ूंगा मैं, केवल उन्हीं बातों को सोचूंगा जिनको सोचने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता ही चला जाएगा, केवल उन्हीं को अपने मन का विषय बनाऊंगा जिसकी भावना लेने से मन चैतन्य की ओर बढ़ता है, ऐसे मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का काम क्या होता है। ऐसे मनुष्य के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि ज्ञानेंद्रियों के जरिए मन को जो कुछ भी ग्रहण करें उसमें ईश्वर की भावना हो। ठीक उसी तरह कामेंद्रियों से मनुष्य जो कुछ भी करे उनके प्रति उसे ये भावना लेनी होगी कि वे सभी वस्तुएं परमात्मा के ही विशेष रूप हैं। ऐसे में वो बाहर की जिस भी वस्तु के संपर्क में आएगा वो ईश्वर की भावना के साथ होगा, तो वो आध्यात्मिक साधना का स्वरूप बन जाएगा। दोस्तों याद रखिए, सुनने से, मनन करने से और ध्यान करने के जरिए मनुष्य बहुत पुण्य कमा सकता है, फिर महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से भी पुण्य अर्जित हो सकता है। अब ये कैसे होता है? अचानक मन में एक भावना का उदय होता है कि मैं इस विराट, इस महान व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं। ये भावना मन में लगातार बढ़ती रहती है। इस भावना के बढ़ते रहने के कारण मन पवित्र हो जाता है, इससे मनुष्य का कल्याण होता है। इसी तरह महापुरुषों के स्पर्श से भी मन पवित्र हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए ये कहना बहुत ही संगत है कि महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से जीव की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। जहां दर्शन या स्पर्श के बदले मन में नजदीक जाने का भाव होता है वहां ना दर्शन करने की जरूरत होती है और ना ही स्पर्श करने की। सुनने के शब्द को रखा गया है धर्म के प्रचार के लिए। मानव मन में सात्विक भाव जगाने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। देखिए जब आप कीर्तन करते हैं तब उससे केवल आप ही आनंद पाते हैं ऐसी बात नहीं है। आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है जब वो दूसरों के कानों में पड़ता है तो उन्हें भी खुशी मिलती है, उनकी भी उन्नति हो जाती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए यहां सुनने के शब्द को बहुत जरूरी समझा गया है। दूसरा है मनन, यानी कि विचार करना, अपने आप में सोचना। अच्छा हो या बुरा काम हमारा मन ही करता है। देखिए केवल हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ से तो चोरी करने का अर्थ है कि मन चोरी कर रहा है। इसलिए मनन क्रिया के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, यानी कि एकांत में अपने से बात कीजिए, अपने आप सोचिए। सत्संग के फलस्वरूप साधु संगत में मन अच्छी बातों को लेकर चिंतन करता ही है, इसलिए मानसिक उन्नति हो जाती है। और मानसिक उन्नति का मतलब है पूरे मनुष्य की उन्नति। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आप हैं आपके दोस्त समीर के साथ। तो दोस्तों, एक बार एक सूफी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ नदी में नहाने के लिए गए। उन्होंने देखा कि किनारे पर एक परिवार के ही सदस्य थे जो बड़े ही गुस्से में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े, मुस्कुराए और पूछा, ये लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स कुछ देर सोचते रहे। उनमें से फिर एक ने कहा, जब हम शांति खो देते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं। तो सूफी ने पूछा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बगल में ही खड़ा है तो चिल्लाते क्यों हैं? बात नरमी से भी तो कही जा सकती है। स्टूडेंट्स ने कुछ और जवाब दिए, लेकिन सूफी को मजा नहीं आया। आखिरी में सूफी ने समझाया, देखो, जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो उनके दिल बहुत दूर हो जाते हैं। उस दूरी को कम करने के लिए वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जिससे कि बात सुनाई दे जाए। वो जितने गुस्से में होते हैं उतनी दूरियां उनकी बढ़ती जाती हैं, फिर उसे कम करने के लिए दरअसल वो चिल्लाते हैं। दोस्तों सोचिए ना, परिवार में ही दो लोग बिल्कुल बगल बगल में ही खड़े होते हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, उस वक्त उनके दिल दूर दूर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा, अच्छा क्या होता है जब दो लोग प्यार में होते हैं? सूफी संत ने कहा, वो धीरे धीरे बातें करते हैं, उनके दिल करीब हो जाते हैं, उनके बीच की दूरियां ना के बराबर हो जाती हैं, इसलिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह दोस्तों, ये बात तो सही है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो चिल्लाकर कभी बात नहीं करते, वो दरअसल फुसफुसा के बात करते हैं। इसका मतलब हुआ, उनके दिल काफी नजदीक होते हैं। सूफी ने आगे कहा, जब वो और अधिक प्यार करते हैं तो उनका तो बोलना ही बंद हो जाता है, कानाफूसी करने से या सिर्फ देखने भर से काम चल जाता है। इसलिए दोस्तों, दिलों को दूर मत होने दीजिए। ऐसी बातें बिल्कुल ना कहिए जिनसे दूरियां बढ़ जाए, नहीं तो दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लौटने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, बताता हूँ दाढ़ी वालों की दुनिया के बारे में। आजकल चारों तरफ जहां भी देखिए, गाड़ी में बैठा हो, चाहे बाइक पर बैठा हो, चाहे स्कूटर बैठा हो, बंदा जो है दाढ़ी जरूर रखे रहता है। पता नहीं क्या हो गया, तो पुरुष कुंवारा हो या विवाहित, उनमें दाढ़ी मूछे रखने का आजकल जबरदस्त क्रेज है। पुराने जमाने में राजा महाराजा, साधु संतों या फिर डकैत अधिकतर दाढ़ी मूछों में ही दिखाई देते थे। हां, कुछ विद्वानों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों आदि की असली पहचान पूछ परख ही दाढ़ी मूछों के कारण होती थी। इसी कारण उन्हें जरूरत से ज्यादा मान सम्मान भी मिल जाता था। लेकिन आजकल हर आयरा गैरा नत्थू खैरा दाढ़ी बढ़ाने के चक्कर में रहता है, ताकि वो भी बस उसी कैटेगरी में आसानी से घुस जाए, उन्हें भी आदरणीय समझा जाए। कुछ गोरे चिकने चुपड़े चेहरों पर दाढ़ी खूब जचती और फबती भी है, गजब का आकर्षण शक्ति होती है उनकी दाढ़ी में। लेकिन कुछ के चेहरों पर तो उगाई दाढ़ी मूछें बड़ी डरावनी और भद्दी लगती हैं, उनका चेहरा बेहद बदसूरत भयानक दिखने लगता है। एक फिल्म देखी थी काफी समय पहले, जिसमें काले रंग के एक हीरो के लंबे लंबे काले काले बाल थे, घनी दाढ़ी मूछें थी, ऊपर से शरीर पर डार्क कलर के कपड़े पहन रखे थे और आंखों पर काला गॉगल चढ़ा कर रखा था। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। वो नायक कम खलनायक ज्यादा लग रहे थे। कुछ वर्षों पहले तक छोटे बड़े शहरों या महानगरों में भी हमेशा उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा भरे हुए क्लीन शेव वाले चेहरे नजर आया करते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई, उनमें से अब ज्यादातर तो दाढ़ी वाले हो गए हैं। हर गाड़ी में बैठा दिखाई देता है, मोबाइल फोन और दाढ़ी के साथ। पुराने जमाने में मूछों का भी बड़ा महत्व था, इसे मर्द मानसिकता से जोड़कर देखा जाता था। मुझे भी विवाह के बाद शौक चर्राया था दाढ़ी मूछों का, लेकिन एक रात श्रीमती जी ने जो क्रोधित होकर इस चुभती दाढ़ी को मुड़वाया, बस जी खत्म हो गया मामला। सुबह सैलून में जाकर दाढ़ी मूछे मुड़वाने पर लगा हुआ चेहरा पर भार बहुत हल्का हो गया। भैया, ये भार हल्का ही कर लेना ठीक है, ये दाढ़ी रखे ना बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। जिन लड़कों भी रखते हैं ना, उन्हें बता दीजिएगा।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

लीजिए एक और मजेदार बात। आजकल हमारे बड़े शहरों में लोग मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर बात करने का

0: अब बदले में बेटा मैदान सही, अरे आ रहा हूं कह के चिड़ मिश्रित जवाब नहीं देता था तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम किसी जिंदा समाज में रह रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जो चलती हुई चक्की के सामने कबीर की तरह रोते नहीं है, बल्कि चलती आटा चक्की के सामने खड़े होकर अपने दोस्त को 10 साल पुराना जोक सुनाकर हंसा डालते हैं, और आरा मशीन के सामने खड़े होकर अपने दोस्त को मोबाइल पर कोई नंबर बताते हैं और सही सही डिक्टेट करा देते हैं। जी हां, सच तो यह है कि धीमी आवाज में समाज का भद्र वर्ग ही बोलता है। शहर में रहने वाले इंटेलिजेंट और यू नो सिविलाइज्ड लोग ही धीरे धीरे बोलते हैं। वो बेचारे छींकते भी हैं ना तो 10 डेसिबल की आवाज के साथ सॉरी बोलते हुए, हंसते हैं तो ऐसे जैसे बिना ब्याज और गारंटी के उधार ले रहे हों, और रोते ऐसे हैं जैसे उनसे कोई गुनाह हो गया हो। ऐसे लोगों के बच्चे भी बड़े सयाने होते हैं भैया, जब उनकी माँ अपनी सहेलियों के बीच बच्चे के जीनियस होने की बातें कर रही होती है और बदले में एक आंटी जल भुनकर पूछती है, अच्छा 17 सिग्जा कितना होता है बेटे बताना, तो बच्चा सुनकर बोलकर जवाब सोचने का वक्त निकाल लेता है, और फिर सवाल रिपीट होने के दौरान गुणा भाग करके तुरंत 102 बोल पड़ता है, जिसके लिए उसे शाबाशी मिल जाती है। उसे देखकर मां की छाती चौड़ी हो जाती है और बाकी की आंटियां जल भुनकर खाक हो जाती हैं। तो भैया शहरों में ना धीरे बोलने की यही वजह है, हम लोग तो देहाती हैं।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, ये टीवी कितने का है?
2: दुकानदार ने कहा, 50,000 रुपए का।
1: लड़की, इतना महंगा, ऐसा क्या खास है इसमें?
2: दुकानदार ने कहा, लाइट जाने के बाद ना ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लड़की बोली, ओहो, पैक कर दो फिर इसे।

सदियों पुरानी बात है। चीन के थिंगजा इलाके के एक राजकुमार की सम्राट के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक उसे इसके लिए पहले शादी करनी थी। एक अक्लमंद मंत्री की सलाह पर उसने प्रांत की विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार के महल में एक बूढ़ी महिला वर्षों से नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी भी राजकुमार से मनी मन बड़ा प्रेम करती थी। घर पहुंचकर जब नौकरानी ने राजकुमार की योजना का समाचार बताया तो वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी बेटी भी कन्या चयन प्रतियोगिता में शामिल होने का इरादा रखती थी। उसने बेटी से कहा, मेरी बच्ची, दरबार में सब सुंदर और धनाढ्य परिवार की बेटियां होंगी, तुम वहां क्या करने जा रही हो? तुमको तकलीफ होगी। बेटी ने मां को जवाब दिया, मां, मुझे पता है कि मुझको कभी भी चुना नहीं जाएगा, पर मुझे राजकुमार के करीब रहने के लिए कुछ और पल मिल जाएंगे ना, मैं बस इसी में खुश हूं। रात में जब बूढ़ी नौकरानी की बेटी महल पहुंची तो वहां रेशमी कपड़ों और गहनों में सजी धजी तमाम युवतियां इकट्ठी थीं। दरबारियों से घिरे हुए राजकुमार ने घोषणा की कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा, जो युवती 6 महीने में मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लाएगी वही चीन की भावी महारानी होगी। उस लड़की ने भी अपना बीज लिया और घर चली आई। उसने बीज को एक फूलदान में लगाया। वो बागवानी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बड़े धैर्य और कोमलता से उसने फूलदान की मिट्टी की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर फूलों की सुंदरता उसके प्यार जितनी गहरी होती है तो उसे परिणाम के बारे में चिंता करने की भला क्या जरूरत है। मगर कुछ नहीं हुआ। उस युवती ने कई मालियों से सलाह ली, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। 6 महीने हो गए, गुलदान में कुछ भी नहीं निकला। ये जानते हुए कि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, उस युवती ने यह सोचकर महल जाने का फैसला किया कि प्रेमी के दीदार का ही एक मौका ले लूं। महल पहुंचकर उसने देखा, सबके हाथों में गुलदान में एक से बढ़कर एक फूल थे। आखिरकार वो पल आया जब राजकुमार ने सभी फूलों को देखा और आखिरकार नौकरानी की बेटी की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शिकायतें की कि जो एक लड़की इस परीक्षा में नाकाम रही, आपने उसे ही चुन लिया। तब राजकुमार ने बहुत शांति से जवाब दिया, आप सभी में से एकमात्र यही है जिसने उस फूल को विकसित किया, जिसने उसे महारानी बनने के लिए योग्य बनाया। यह है ईमानदारी का फूल, क्योंकि आपको बांटे गए सारे बीज बांज थे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थीं, तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानों जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: दूर होकर भी दिलों के तार जुड़ जाते हैं, दूर होकर भी दिलों के तार जुड़ जाते हैं, फोन की एक घंटी से एहसास समर जाते हैं। शहर दर शहर जब मोहब्बत की बात होती है, शहर दर शहर जब मोहब्बत की बात होती है, तो सुरों के साए में फिर से नहीं महफिल सजती है। नमस्कार, आदाब और दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील से के साथ। मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज का ये शो पूरी तरह से आपका है। आज हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी प्रोग्राम फोन ए फ्रेंड। तो फोन की एक घंटी कैसे मीलों की दूरी मिटा देती है, और कैसे एक इंसान की पसंद दूसरे इंसान का एहसास बन जाती है, आज यही साझा करने हम निकले हैं। और मैं ये हरगिज़ नहीं बताऊंगी कि हम पहले कहाँ जा रहे हैं और फिर कहाँ और फिर कहाँ और फिर कहाँ और फिर कहाँ। ये राज का पर्दा तो राज के साथ साथ धीरे धीरे एक एक करके ही खुलता जाएगा। तो फोन की घंटियों का ये सुहाना सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे फोन की पहली घंटी किसके घर में जाके बजती है। टन टन टन टन।
1: हेलो अनीता जी।
2: हेलो आरती जी, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं। हम बोल रहे हैं, देखो पता है ऐसे कौन बोलता है, यूपी वाले लोग बोलते हैं। और नहीं
2: यूपी वाले लोग बोलते हैं, जो बिल्कुल हम भी वहीं से ही है, लखनऊ से।
1: अच्छा अच्छा, तो देख लो मुझे कैसे पता चल गया। ये बात होती है तो जी। मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है अनीता, और मैं सब दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ आपसे बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले कि दोस्तों ये हमारी तनुषा की मम्मी हैं और इनका नाम अनीता है, और आज से ये मेरी फ्रेंड भी हैं। तो हेलो अनीता जी।
2: हेलो आरती जी। और हर पेरेंट शायद वेट करता है कि लाइफ में कभी ऐसा मुकाम आए कि हम हमारे बच्चों के द्वारा जाने जाएं। तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बीइंग नोन
1: और मुझे भी ऐसे ही लगता है, सिंस शी इज नोन टू मी, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, जो भी जिस भी नाम से मुझे तनुषा बुलाती है, सो आई गॉट एसोसिएटेड विद हर, एंड मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती है। तो चलिए फिर प्रोग्राम का फॉर्मेट अपना हम निभाते हैं, और जैसा कि आपकी गजल की फरमाइश पूरी करते हैं, तो अनीता पहले ये बताइए कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: मेरा फेवरेट गजल सिंगर है गुलाम मलिक साहब।
1: हाँ हाँ हाँ, भला मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, गुलाम मलिक साहब तो आपके खानदानी गजल गाएंगे। आपके हस्बैंड की भी वही पहली फरमाइश पसंद थे, और तनुषा ने बताया ही था। ओके ओके ओके ओके, तो अब ये बताओ अनीता के आपके गुलाम अली साहब की आपको कौन सी गजल पसंद है?
2: देखिए, मेरे को गुलाम अली साहब की सारी गजल पसंद है, क्योंकि गजल से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग एंड लव डेवलप हुआ, वो मेरी शादी के बाद हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, स्पेसिफिकली गजल
1: जी।
2: तो ही हैड ऑल मूड का कैसेट्स थे उनके पास, और आते ही वो काम से पहली चीज अपना म्यूजिक सिस्टम है फुल वॉल्यूम में, एंड ये प्ले करते थे। तो हम न्यूली मैरिड थे तो हम जमीन में बैठते थे, हमारे पास ज्यादा फर्नीचर नहीं होता था तो ऐसे लो सिटिंग थी फ्लोर पे, तो हम मैट्रेस पे बैठ के, तो ये मुझे पॉज कर करके हर लाइन में उस उर्दू वर्ड का क्या मतलब है,
1: वो
2: हाथ पकड़ के मुझे, हम बहुत घंटों तक ये म्यूजिक इंजॉय करते थे।
1: क्या बात
2: है। मुझे गुलाम अली साहब की, अब हमारी लव मैरिज है, माय हस्बैंड इज अ पंजाबी एंड आई एम अ सिंधी।
1: अरे वाह, फिर तो वो मेरे भी रिश्तेदार हुए। वेरी नाइस।
2: तो ये जो गजल है मेरी गुलाम अली साहब की, चुपके चुपके रात दिन, ये मुझे बेहद पसंद है क्योंकि ये इतने जो गाई हुई हर शब्द है, मैं अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ कि हम जो हमारा आशिकी का दौर था, अब हम आप सोचिए, हम मैं बात करूँ 81 की,
1: जहाँ
2: लव स्टोरीज कभी कोई सोच नहीं सकते थे बच्चे, एंड प्यार व्यार तो बहुत जबरदस्त कुटाई हो जाती थी। तो उस जमाने में ये जो छुपके छत पे जाना, ये जो छुप छुप के मिलना रास्तों में, हम यू नो मैं लूडा चलाती थी, एक स्कूटर चलाते थे, तो उस टाइम फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो हम मेरे कॉलेज जाती थी, मैं सोफिया कॉलेज अजमेर से हूँ, तो ये मेरे कॉलेज के रास्ते में खड़े हुए रहते थे, फिर हम कोने में 2 मिनट अपना स्कूटर और लूना साइड में खड़ी होगी, हम बातें कर लेते थे।
1: टिपिकल स्टाइल से, आई नो,
2: बिल्कुल है ना। तो आई आइडेंटिफाई विद ऑल यू नो वर्ड्स ऑफ दैट गजल। एंड अब इनकी डेथ के बाद यू नो हमारे पास कुछ पल रह जाते हैं जो हमें गुदगुदाते हैं, और वो व्हेन यू वॉक डाउन द मेमोरी लेन वो आपके प्यार को जिंदा रखते हैं। सो आज भी मैं ये गजल सुनती हूँ तो यू नो आई फील सो यंग एंड आई गो बैक इन टू द पास्ट एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई पास्ट जस्ट स्प्राउट्स इन फ्रंट ऑफ मी।
1: मैं समझ सकती हूँ, आई कैन रिलेट विद ईच एंड एवरी वर्ड वॉट एवर यू हैव सेड सो फार अनीता।
2: जी मैम,
1: ये वाकई बिल्कुल बहुत बहुत खसूसी किस्म का ये जज्बात होते हैं, और ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसको महसूस किया हो।
2: तो
1: बहुत खूबसूरत आपकी पसंद है, और मैं सल्यूट करती हूँ आपके जज्बे को, आपके जज्बात को, आपके एहसास को, आपके हस्बैंड के लिए जो है आपके दिल में। तो इसी नोट पर फिर सुनते हैं हम अपने दोस्तों के साथ आपकी पसंद की ये गजल, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आइए दोस्तों सुनते हैं हमारी तनुषा की मम्मी अनीता जी की पसंद पर ये खूबसूरत सी गुलाम अली साहब की गजल। आइए, थैंक यू सो मच अनीता, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू।

सुना आपने दोस्तों उस्ताद गुलाम अली साहब की गाई ये लाजवाब गज़ल और अनीता जी की ये बेहद भावुक बातें। अनीता जी के घर में हमेशा से ही गज़लों का माहौल रहा है। उनके हस्बैंड यानी हमारी प्यारी तनुषा के लेट फादर गुलाम अली साहब के बहुत बड़े दीवाने थे। अनीता जी ने बताया कि जब वो कॉलेज के दिनों में अपने हस्बैंड से मिला करती थी तब ये गज़ल आई थी और शादी के बाद भी तन्हाई के पलों में दोनों साथ बैठकर आराम से इसे सुना करते थे। आज जब अनीता जी अपनी इस फरमाइश के बारे में बात कर रही थी तो उनकी आवाज़ में अपने हम सफ़र की वो पुरानी यादें और बेपनाह मोहब्बत साफ झलक रही थी। आपकी यादों के इस खूबसूरत एहसास को हमारा नमन, हमारा आदाब अनीता जी। तो दोस्तों

0: मैं ठीक हूँ मीना। आपका रेफरेंस मुझे गीता मनी ने दिया है। आप गीता मनी की फ्रेंड हैं और मुझे पता चला कि आप हमारे फरमाइशी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो इसलिए मैंने आपको कॉल
1: जी,
0: किया है। तो मीना,
1: थैंक यू,
0: यू
1: सो नाइस ऑफ यू।
0: आर वेलकम। हमारा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक गजलों का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम अपने सुनने वालों की पसंद की गजल भी सुनाते हैं फरमाइशी प्रोग्राम में। तो आज मैंने आपको इसीलिए फोन किया है। आप मुझे ये बताइए मीना कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: आती जी, मैं जगजीत सिंह की गजलें बहुत सुनती हूँ, तो सो फार ही इज माई फेवरेट सिंगर।
0: ओके, बहुत खूब। जगजीत सिंह भला किसका फेवरेट नहीं होगा। तो मीना ये बताओ कि आपको जगजीत सिंह साहब की कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है?
1: मुझे उनकी तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अगर आप मुझे ये गजल सुनवा देंगी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। एक बात और बतानी बाकी है, गजल तो हम आपकी सुना देंगे। ये बताइए
1: जी
0: मीना कि ये गजल पर्टिकुलरली आपको इतनी क्यों पसंद है?
1: एक्चुअली दिस गजल मेक्स मी रिमेम्बर ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड
0: अच्छा,
1: हु इज नो मोर, बट
0: ओ
1: वेन एवर आई हेयर जगजीत सिंह दिस गजल, रियली इट मेक्स मी सो हैप्पी।
0: ओ वेल, बहुत सुंदर। आप अपने फ्रेंड की याद में ये गजल सुनना भी
1: जी
0: चाहती हैं और आपको पसंद भी है, तो बिल्कुल
1: जी
0: हम आपके साथ अपने दोस्तों को भी सुनवाते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुमको
1: जी
0: घना साया। बहुत खूबसूरत गजल
1: धन्यवाद।
0: का इंतखाब किया आपने मीना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों
1: थैंक
0: सुनते
1: यू
0: हैं।
1: आरती जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं फिर मीना जी की पसंद की ये गजल।

0: सुना आपने दोस्तों जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की ये सदाबहार गज़ल दिल को कितना सुकून दे जाती है। मीना कपूर जी, गीता मणि जी के ज़रिए आपका हमारे रेडियो परिवार से जुड़ना हमारे लिए बहुत ख़ास है। एक बैंकर की व्यस्त ज़िंदगी से निकलकर संगीत के इस ठहराव को चुनना बताता है कि आपके दिल में कला और सुरों के लिए कितनी गहरी जगह है। आपने इस अपनी पसंद को अपने एक मरहूम दोस्त की याद में डेडिकेट किया। इस सुरीली पसंद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। हमसे जुड़ते रहिएगा, आते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारी अगली फोन कॉल किसके पास पहुंचती है। टन टन टन टन।
1: हेलो लाभ सिंह जी।
2: हाँ जी, हेलो मैम जी, कैसे हैं आप? मैम
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया।
1: तो लाभ जी, हमारे फरमाइशी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? तो आपको तो आप तो सुनते रहते हैं, आपको फॉर्मेट मालूम ही है, तो हमारे को पहले ये बताइए कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: जी, गजल सिंगर तो मेरा फेवरेट में जगजीत सिंह जी हैं।
1: अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, आपके तो फेवरेट जगजीत जी ही हैं। तो जगजीत सिंह आपके फेवरेट हैं, तो आपकी फेवरेट गजल भी होगी कोई?
2: हाँ जी, काफी गजलें उनकी, बट अभी मुझे बहुत लग रही है जो तो है कि मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे।
1: अरे
2: अपना भी राणा सारी जी की लिखी हुई गजल है, बहुत अच्छी लगी है, जगजीत सिंह जी और चित्रा मैम की गाई हुई।
1: हाँ हाँ हाँ, ये मेरा ख्याल से बहुत बहुत खूबसूरत, ये इबादत की तरह एक गजल है, मंजिल ना दे। आप गाते भी हैं क्या लाभ जी?
2: जी गाता तो नहीं, मैं बस सुनता हूँ और अपना लिखता हूँ।
1: ओके, तो ये तो बताइए कि ये मंजिल ना दे चिराग ना दे, ये गजल आपको इतनी क्यों पसंद है?
2: मैम पसंद का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही उम्दा इसके अंदर जो शायर गई है, बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी।
1: गजल के
2: बहुत प्यारे बोल हैं,
1: बोल बहुत अच्छे
2: जी,
1: हैं। जी जी जी
2: जी जी, बहुत प्यारे हैं।
1: गाया भी बहुत सुंदर है ना जगजीत जी और चित्रा जी ने, ये भी तो
2: जी
1: है ना?
2: बहुत सुंदर,
1: क्योंकि लिरिक्स अगर अच्छे होंगे और गाने वाला अच्छा होगा तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और फिर म्यूजिक म्यूजिक तो मतलब चांद लगा देता
2: है। बहुत प्यारा है।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर आप गुनगुनाना चाहते हैं?
2: गुनगुना मैं इसकी अर्ज को उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा।
1: चलो कोई बात नहीं, तो आपकी पसंद की गजल हम सब दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं। मंजिल ना दे चिराग ना दे हौसला तो दे। बहुत खूबसूरत चॉइस है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया लाभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।
2: थैंक यू।
1: बाय बाय बाय।

0: सुना आपने दोस्तों लाभ सिंह जी की पसंद की ये खूबसूरत गज़ल। लाभ जी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में हमारे शो पर आ चुके हैं और वो खुद बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं। लाभ सिंह जी ने इस गज़ल के बारे में बिल्कुल सही कहा कि ये महज एक गज़ल नहीं है, बल्कि ईश्वर के आगे की गई एक प्रार्थना है। मंजिल ना दे, चिराग ना दे, हौसला तो दे। तो जब एक फौजी हौसले की बात करता है तो उस लफ्ज़ में एक अलग ही ताकत आ जाती है। लाभ सिंह जी, आपकी पसंद हमेशा की तरह बहुत वजनी और असरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में फिर से आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो आइए आप देखते हैं कि अगली घंटी किसके घर में जाकर बजती है और क्या कहती है। टन टन टन टन।
1: हेलो आरती,
2: कैसी हो रश्मि?
1: बिल्कुल बढ़िया बढ़िया।
2: मैंने सोचा आज रश्मि से फोन पे बात की जाए और रश्मि को अपने प्रोग्राम में दावत दी जाए। हाय रश्मि, आओ और बताओ कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: हाँ जरूर, मेरी वैसे तो गजल पुरानी सिंगर जो हैं, जैसे नूरजहां है, सुरैया है, फरीदा खानम है, ये ज्यादा इनकी गजलें मैं सुनती हूँ। लेकिन अभी मुझे एक गजल उस्ताद राशिद खान से की गाई हुई बहुत अच्छी लगी, खासकर उसका
2: गजल है वो?
1: आओगे जब तुम बालमा साजिमा दन,
2: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: अंगना फूल खिलेंगे।
2: अरे वाह क्या बात है,
1: खासकर उसमें जो एक क्लासिकल फ्लेवर है ना,
2: हाँ हाँ हाँ,
1: वो उसे कुछ हटके बना देती है।
2: जी जी जी
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो ये इसलिए पसंद आई ना कि इसका क्लासिकल मतलब आपको फ्लेवर फ्लेवर वाकई गजल का भी फ्लेवर होता है। यस
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो तभी कहते हैं ना मजा आ गया, स्वाद आ गया सुनने।
1: बिल्कुल ऐसी ही गजल है ये।
2: तो जरा गा के तो सुनाओ एक दो लाइन।
1: अरे आरती मैं कहाँ गाती हूँ, तुम गाओ मेरे लिए।
2: कमाल है। फोन में आपको कर रही हूँ गाने के लिए और आप मुझे ही बोल रही हो कि मैं हूँ।
1: हाँ मैं कहाँ गाती हूँ, मैं नहीं गाती, आरती की आवाज सुननी है मुझे।
2: अरे वाह वाह वाह वाह, चलो अपनी रश्मि के लिए एनीथिंग डार्लिंग हम गा देते हैं। इसमें क्या है, क्या है ये? अच्छा
1: आओ। हाँ

0: अरे वाह, यू मेड माय डे, बहुत सुंदर,
1: थैंक यू. पता नहीं कैसी गाई गई है.
0: मैं वेरी नाइस. इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि ये इरशाद कामिल ने म्यूजिक दिया है इस गजल का.
2: okay.
0: और संदेश शांडिल्य ने इसके वर्ड्स लिखे हैं. अच्छा, बड़े पोएटिक वर्ड्स हैं और बहुत

0: ही मधुर म्यूजिक है, तो
1: या
0: इसको
1: वेरी
0: सुनते
1: नाइस.
0: हैं।
1: सुना है मैंने ये गजल, मुझे भी बहुत पसंद है, खास करके जो तुमने गजल गायक सुना है ना,
0: हाँ,
1: इरशाद, क्या नाम है,
0: राशिद खान।
1: राशिद खान. हाँ, सुनी है मैंने इसकी गजल, बहुत बहुत उम्दा
0: बहुत
1: किस्म
0: ही
1: के गजल गाई है
0: उम्दा।
1: इन्होंने. थैंक यू रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और अपनी इतनी खूबसूरत गजल हमें सुनने के लिए.
0: हाँ, नहीं, वेलकम आरती, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लोग सुने इसको और इसको एंजॉय करें, मजा आएगा।
1: यस, श्योर श्योर.
0: हाँ
1: आइए दोस्तों, फिर सुनते हैं हमारी रश्मि की पसंद की ये खूबसूरत सी गजल, और राशिद खान की आवाज में. थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच,
0: ओके आरती, बाय।
1: बाय बाय बाय.

0: रश्मि मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी ये पसंद और उस्ताद राशिद खान साहब की ये रचना सीधे दिल में उतर जाती है। जब तुमने कॉल पर मुझसे जिद की कि आरती मैं तो गाती नहीं हूँ लेकिन तुम मुझे ये दो लाइनें गाकर सुनाओ, तो तुम्हारी उस प्यारी सी फरमाइश को मैं टाल ही नहीं सकी। और जैसा तैसा मुझे आता था मैंने गा दिया। पर गाना सुनने के बाद जब तुमने ये कहा आरती यू मेड माई डे, तो सच बोलूं मेरा दिल खुशी से भर ही गया। एक नॉवलिस्ट की गहरी सोच और उस्ताद राशिद खान का ये नगमा आज के शो में एक अलग ही मिठास घोल गया। दोस्तों आपको भी महसूस हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब फोन की घंटियों का ये सुहाना सफर आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं अब घंटी किसके घर बजती है। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हाय आरती।
0: हेलो अनूप, कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा अनूप से आज फिर बात की जाए और उनकी पसंद की गजल सुनी जाए और उनको भी सुनाई जाए और अपने दोस्तों को भी सुनाई जाए। तो इस बार फिर आपने क्या सोचा है?
1: इस बार हमने एक फिल्मी गजल है और अभी नई पिक्चर आई है उस गजल को मुझे लगता है उसका ट्यून, उसका म्यूजिक, उसके लिरिक्स, हर चीज उसकी गायकी ऐसी है जो आपका बार बार सुनने का मन करेगा। और उसका उसकी मैं एक एक लाइन आपको सुनाता हूँ और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि ये गजल जब आप लोगों को सुनाएंगी तो वो भी आपको कहें कि वाह क्या गजल है। तो ये गजल कुछ ऐसी है।

0: अब आप ये गजल लोगों को सुनाइए और फिर देखिए कि लोग कैसे आपको तारीफ के फूल बांधते हैं।
1: गजल के
0: और आपके तो तमाम फैन हैं और उनकी संख्या तो अब ऐसी बढ़ रही है कि पूछिए नहीं। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी आपको लोग फरमाइश तो ठीक है लेकिन लोग और भी ज्यादा फरमाइश करने लग जाएंगे।
1: ओके थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों,
0: तो फिर आप ये हाँ ये गजल सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: बाय अनूप। तो चलिए दोस्तों, हमारे अनूप जी की पसंद पर, जो कि लखनऊ से हैं, हम उनकी पसंद की गजल सुनते हैं। अभी उन्होंने गा के बताई थी ना, वही सुनेंगे।

सुना आपने दोस्तों, अनूप जी ने इस बार कितनी अलग और नायाब गज़ल की फरमाइश की। दोस्तों ये एमजे जयंत जी की गाई हुई बहुत ही खास गज़ल है। कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर तरफ सिर्फ खामोशी होती है। इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। ये गज़ल एक ऐसे ही सफ़र को बयां करती है जहाँ एक इंसान अपने दिल के सुकून और अपनी मंजिल की तलाश में निकलता है। जगजीत साहब के लिए अनूप जी का प्यार तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों, लेकिन एमजे जयंत की इस मखमली नगमे को चुनकर उन्होंने आज के इस फरमाइशी प्रोग्राम को एक बहुत ही संजीदा और ताज़ा किस्म का मोड़ दे दिया। अनूप जी, आपकी इस खास और सुरीली पसंद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फिर आते रहिएगा। तो दोस्तों, आज जयपुर की गुलाबी हवाओं से चला ये एहसासों का कारवां दिल्ली के दिल से गुजर

0: पैनल मौजूद है, उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस एस सिंधु जी मौजूद हैं, जो कि पुष्प संभाग में अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधु जी। हमारे साथ डॉक्टर वी एस राजू जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। हमारे साथ डॉक्टर बी सी कटियार जी मौजूद है, आप CPWD में उप महानिदेशक रह चुके हैं बागवानी विभाग में, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जी पी सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है, इन्होंने फूलों की खेती को अपनाया है और आज उन्होंने फूलों की खेती से ये कर दिखाया है कि कैसे अगर पूरी इच्छा शक्ति के साथ और वैज्ञानिक तरीकों के साथ खेती की जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है। हम सभी से बात करेंगे, एक बार फिर से सभी मेहमानों का स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंधु साहब, मैं जानना चाहूंगी कि मौजूदा स्थिति हमारे देश में फूलवानी की क्या है।
1: देखिए कि हमारे देश में जो फूलों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग इस समय यदि हम देखें तो 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती की जा रही है और उसमें जो लूज फ्लावर का जो अपना एक शेयर है वो करीब करीब 1750 टन के आसपास है और कट फ्लावर की यदि हम बात करते हैं तो लगभग वो 5000 टन कट फ्लावर का उत्पादन किया जाता है और देश में भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जाती है और बदलते मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में भी इसमें प्रचलित हैं और भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के हाई वैल्यू फ्लावर, लो वैल्यू फ्लावर किसान उगाकर अपनी अच्छी आय से।
0: डॉक्टर राजू, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमने रिपोर्ट में ये बताया कि बीते 10 सालों में इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप क्या कहेंगे कि इस दिशा में कितनी नई नई वैरायटीज आई हैं और कितना अब इस पर फोकस है?
2: अभी आप देखेंगे जो फ्लोरिकल्चर है अभी इमर्जिंग सेगमेंट है
0: जी
2: फार्मिंग का और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है दूसरे क्रॉप से आप कंपेयर करेंगे। इसमें सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कर्तित फूल है जो बाजार में कट फ्लावर है, इसमें गुलाब में कई किस्में हैं और जो संरक्षित खेती में फर्स्ट रेड, ग्लैंड गला, ताजमहल जैसे किस्में कर सकते हैं
0: जी जी।
2: और जो लूज फ्लावर्स हैं गुलाब में, लूज फ्लावर्स में ग्रसान टेपलेट करके वैरायटी है, काफी एरिया में इसको देसी गुलाब करके उगाया जाता है। और कर्तित फूल जो बाहरी एनवायरमेंट है, आउटडोर एनवायरमेंट में, जैसे सुपरस्टार है, ग्लैडिएटर जैसे वैरायटी का किसान कर रहे हैं। इसके अलावा उद्यानों के लिए भी बहुत सारे किस्में हैं, हमारे संस्था ने ही बहुत सारे किस्में इसमें निकाले हैं, जैसे पूसा अजय है, पूसा गौरव है, बंजारन है, चिंगारी है, वह रक्तगंधा है। इन किसानों और नर्सरियों के लिए भी ये किस्मों का चयन कर सकते हैं किसान जो है।
0: डॉक्टर कटियार, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि का भी अब स्वरूप बदल चुका है और किसान जो है वो सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं करना चाहता, जहां भी उसे फायदा होगा वो उसे अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत है कि उसे ये विश्वास दिला जाए कि हाँ भाई इस क्षेत्र में अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आपको फायदा होगा। तो अगर फूलों के कारोबार की बात करें तो ये अब कितना उभरता हुआ क्षेत्र है, सेक्टर है, और पहले से कितने आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड भी होता जा रहा है, संगठित भी हुआ है क्या?
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आजकल किसान जो है वो बहुत अवेयर हो रहा है और लगातार इस चीज की नॉलेज गेन करता रहता है कि हमको किसमें फायदा है। तो आजकल उसको नजर आ रहा है कि हमको बदलाव में फायदा है। रोज गेहूं चना उगाने से भी उनको शायद लगता है कि हम एक ही चीज को उगा रहे हैं
0: जी।
3: तो वो चेंज हो रहा है और बहुत सारे किसान आजकल फूल की खेती कर रहे हैं और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के आसपास है या किसी और शहर के आसपास है या किसी कस्बे के आसपास है, जहां पे फूलों की डिमांड है और वहां पे आपको फूलों के खेत मिलेंगे
0: जी।
3: अब रही बात ये कि कौन सा किसान किस तरह की चीज उगा रहा है,

0: शुरुआत मेरा कहना तो यह है कि उसको वैज्ञानिकों की सलाह ले, वैज्ञानिकों से पूछे कि उसमें बीमारियां क्या आनी है, उसके बाद कार्य को प्रारंभ करें। क्योंकि किसान के पास आमदनी तो बहुत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि फूलों की खेती में आमदनी बहुत है, लेकिन आमदनी के साथ साथ जो खेती है हमारी वो भगवान के भरोसे पे भी है, उसमें दैविक आपदा का बहुत बड़ा रोल है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, आपने कहा कि लाभ बहुत है लेकिन साथ ही साथ आपने बहुत सारे इसके साथ वजह भी गिनवा दी। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रबंधन बहुत जरूरी है अगर आप फूलों की खेती करें तो। सिंधु साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फूलों की खेती में क्या बहुत ज्यादा अनिश्चितता रहती है, क्योंकि अगर गेहूं धान हम करते हैं तो उसका भंडारण आसान होता है, फूलों में एक तो बाजार आपको तलाशना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, और दूसरा उसे आप भंडारित नहीं कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो क्या इससे जुड़े हुए बहुत सारी इफ्स एंड बट्स, यानी बहुत सारी वजहें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान थोड़ा रिस्क लेने से डरता है? सिंधु साहब,
2: इसमें देखिए कि बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, नो डाउट कि इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं का यदि पहले से आप थोड़ा सा निवारण करके चलेंगे तो आप एक सफल कृषक के रूप में फूलों की खेती कर सकते हैं। कि आपका बाजार आपको देखना पड़ेगा, आपको तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद चलते चलते जो वातावरण में जो बदलाव आता है, जलवायु में जितना परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आपने फूलों की खेती की हुई है, अचानक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसको भी आपको प्रबंधन उसका भी करना होगा। तो गेहूं और धान में किसान क्या है कि वो निश्चिंत हो जाता है, एक बार लगा देता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर लेता है, स्टोर कर सकता है। आज अच्छा बाजार नहीं है तो 2 महीने बाद बेच लेगा, उसको और अच्छा बाजार मिल जाएगा। लेकिन फूलों में ये संभव भी है और नहीं भी है। संभव इसलिए है कि आपके पास यदि कोई कोल्ड स्टोरेज है तो आप 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बट लेकिन बहुत लंबे समय तक आप इसको फूलों को स्टोर नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते, आपको बाजार में उसको बेचना ही होगा।
1: यानी संवेदनशील है इसका बाजार,
2: संवेदनशील है ये जो व्यवसाय है।
1: जी राजू जी, डॉक्टर राजू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी सिंधु जी ने कहा है मौसम बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी भी समस्याएं हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होनी होती तब बारिश हो जाती है, तो ऐसे में क्या, जैसे कि हम धान की बात करें, गेहूं की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन या फिर इस तरीके से जो मौसम बदल रहा है उसके अनुसार नई नई वैरायटीज खोजी जा रही है, किसान उन पर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक उन पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, तो क्या फूलों को लेकर के भी इस तरीके का काम किया जा रहा है क्या?
3: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन किसान का अवेयरनेस बढ़ना है। जैसे अभी जीपी सिंह सर ने बात किया है कि जैसे गुलदावरी है, गुलदावरी का जैसे इसको क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी कम करने के लिए शेड नेट का प्रयोग कर सकते हैं, और ये ब्लैक आउट सिस्टम करके इसका फ्लावरिंग को भी रेगुलेट किया जा सकता है ताकि बाजार में अच्छा मूल्य ला सके
1: जी।
3: और इसमें बहुत सारी किस्में भी निकाले गए हैं, जैसे पूसा अनमोल करके एक किस्म है, ये साल में 2 बार फ्लावरिंग देता है और गर्मियों में भी फूल आता है इसका। और जो ग्रीन बटन, जो हमारे किसान भाई ने कहा कि जो ग्रीन बटन है वो गर्मियों में अच्छा फूल देता है
1: जी।
3: और इसके अलावा जो उद्यानों के लिए बहुत सारे वैरायटी हैं जिसके मतलब गमले वगैरह बना सकते हैं, गार्डन्स में उगाया जा सकता है
1: जी।
3: जैसे पूसा आदित्य है, पूसा केसरी है, पूसा सेंटिनरी है, उसका चित्राक्ष जैसे वैरायटीज है जो हमारी संस्था ने निकाली
1: जी। बिल्कुल, तो अलग अलग वैरायटीज के बारे में आपने हमें अभी बताया और हम दर्शकों को इसे और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे जिन वैरायटीज के बारे में अभी हमारे मेहमान ने बताया। लिखना होगा ब्रेक के बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, इनके बारे में भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे।
4: चर्चाओं का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। ब्रेक पर जाने से पहले आप लगातार सुन रहे थे फूलों की खेती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है जो कि हमें बता रहा है कि फूलों की खेती कैसे आज के दौर में किसान अपना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कितनी संभावनाएं हैं, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं।
3: भारत में इस खुशबू भरे रोजगार का इतिहास खंगाला जाए तो पता चलता है कि देश में पुष्प उत्पादन की विधिवत शुरुआत वर्ष 1968 से ही हो गई थी। तब भारतीय पुष्प वैज्ञानिकों ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की मदद से गुलाब के फूल फ्रैंकफर्ट और पेरिस भेजे थे। भारत सरकार की वर्ष 1988 की बीज नीति के बाद देश में फूलों के अच्छे बीज, बल्ब, कटिंग आदि का आयात हुआ। वर्ष 1991 के बाद लगभग 20 पुष्पोत्पादन या पुष्पोदन की संयुक्त देसी और विदेशी कंपनियां भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। विदेशी कंपनियां हॉलैंड और इजराइल के साथ 1,500 करोड़ रुपए की मूलधन पूंजी से पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में ऐसी ही पुष्प इकाइयां स्थापित हुई। भारत में इन्हीं की बदौलत पहली बार वर्ष 1992-93 में 387 मिलियन रुपए का पुष्प निर्यात हुआ था। ज्ञात हो कि अभी भारत के फूलों का निर्यात मुख्यतः यूरोप में होता है। वहीं हॉलैंड विश्व का सर्वोत्तम पुष्प नीलाम घर है। यहां विदेशों के फूल बिकने को आते हैं। एक लंबे समय से फूलों के व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र आधे से पौने 1% तक रही है, मगर अब भारत इस खुशबू भरी तिजारत में ठोस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आशा ये भी की जा रही है कि हम दुनिया को ये खूबसूरत तोहफा देकर अच्छी खासी विदेशी मुद्रा भी समेट पाएंगे। भारत में फूलों के कारोबार का भविष्य इसलिए भी उज्जवल है क्योंकि देश में शोधरत कृषि विश्वविद्यालयों में सबके पास एक स्वतंत्र और पूरी तरह से विकसित बागवानी विषय है। इन विभागों में 1,000 से ज्यादा छात्र डिग्री प्राप्त करते हैं और अपना पुष्प ज्ञान तो बांटते ही हैं, साथ साथ कुछ इससे जुड़ रोजगार की भी शुरुआत करते हैं। फूलों से जुड़ा रोचक मुद्दा ये भी है कि देश विदेश में सूखे फूल पत्तियों तथा टहनियों की भी मांग बढ़ती जा रही है। ये नई विद्या किसान भाइयों विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें खोल रही हैं। आज अपने देश में सूखे फूलों की घरेलू खपत तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में छोटे बड़े किसान अपना हाथ आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। सूखे फूल पत्तियों टहनियों की विदेशों में बढ़ती मांग का लाभ भारतीय पुष्प उत्पादकों ने उठाया है। यहां से इनका निर्यात किया जा रहा है। इसके निर्यात की मुख्य बात यह है कि इसमें पूंजी लागत जीवंत फूलों के निर्यात की अपेक्षा बहुत कम है।
2: तो चलिए इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंधु जी साहब आपसे समझना चाहूंगी कि गेंदे की कौन कौन सी वैरायटी और इस समय क्या हमारे किसान इसे ले सकते हैं।
4: देखिए, गेंदा एक ऐसा फूल है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु में और भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। एक तो गेंदा वो है जिसको कि आप सर्दियों में उगाते हैं, उसके बाद अभी देखें तो हम गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में उगाते हैं। तो अभी गर्मियों में जो लगने वाला गेंदा है वो है कलकतिया, लड्डू गेंदा। अभी आगे जो और बरसात में लगेगा वो अफ्रीकन जैंट के नाम से जो किस्म है वो लगाई जाती है। फिर सर्दियों का गेंदा आ जाएगा, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारे संभाग द्वारा काफी किस्में विकसित की गई है। जिसमें से पूसा बहार और पूसा अर्पिता काफी फेमस है। पूसा नारंगी भी एक पुरानी किस्म है हमारी जो अभी अच्छी चल रही है,
2: काफी किसानों के बीच में लोकप्रिय भी है।
4: लोकप्रिय भी है पूसा बसंती भी है, और भी बहुत सारी किस्में हमारी पाइपलाइन में भी है जो की अभी हाल ही में विकसित होने जा रही है। तो इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न जलवायु में
2: यानी कुल मिला के 12 महीने कर सकते हैं,
4: 12 महीने अलग किस्मों का, अलग अलग,
2: लेकिन किस्मों का चुनाव करना होगा कि आप किस समय पर कर रहे हैं, तो गेंदे की कौन सी किस्म आप ले सकते हैं। राजू जी आप बताएं, गुलाब है और अन्य भी हमारे फूल है, ग्लैडुलस वगैरह है, इनकी कौन कौन सी वेरायटी, और इस समय अगर किसान फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त कौन सी वेरायटीज होंगे।
5: जैसे गुलाब और ग्लैडुलस जो प्लांटिंग टाइम है अक्टूबर है मेन, तो और जो गुलाब में काफी सारे किस्में हैं, जैसे कर्तित फूल संरक्षित खेती के लिए ताजमहल एक अच्छा किस्म है
2: जी।
5: और आउटडोर के लिए ग्लैडिएटर और सुपरस्टार किस्में हैं। उद्यानों के लिए जो हाइब्रिड टीस है उसमें पूसा अजय है, क्वीन एलिजाबेथ करके बहुत अच्छा वेरायटी है
2: जी।
5: और जो बागवानी जो फ्लोरिबंडा जो किस्में हैं उसमें है चिंगारी है, अरुणिमा है, बंजारन जैसे किस्में हैं। और जो खुले फूलों के लिए आप ग्रसैन टेपलेट्स हैं, और जो तेल उत्पादन के लिए हिमरोज और ज्वाला किस्में हैं। वैसे ही ग्लैडियोलस में भी बहुत सारे किस्में हैं, इसमें अर्ली वेराइटीज भी है, मिड है, लेट वेराइटीज है, हमारी संस्था ने काफी किस्में इसमें निकाली है। वैसे बाजार में बहुत सारे पॉपुलर है जैसे व्हाइट प्रॉस्पेरिटी है, नोवा लक्स है, प्रिसिला जैसे किस्में उगा रहे हैं किसान, और हमारी संस्था ने बहुत सारे किस्में इसमें निकाली है, करीब 30 के करीब किस्में है इसमें। जैसे नया किस्में जो है पूसा रेड वैलेंटाइन है, लाल रंग का है, पूसा मनमोहक एक किस्म है, और इसके अलावा पर्पल और बैंगनी रंग के फूल फ्लोरेट वाले बहुत सारे किस्में हैं, जैसे पूसा उन्नति है, पूसा सृजना है
2: जी जी,
5: और सफेद रंग में पूसा किरण
2: जी। ठीक है, ये तो आपने बताया कि इस समय कौन कौन से, और एक सोच सी रहती है कि हम सर्दियों के टाइम पर ही फूलों की खेती कर सकते हैं, वही सही समय है, लेकिन अब जो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक, इससे अब कोई समय सीमा नहीं इस पर कह सकते लागू होती है, वैरायटी लीजिए मौसम के हिसाब से और आप फूलों की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे ये समय है तो इस वक्त हमारे किसानों को बताएं कि कैसे वो खेती कर सकते हैं फूलों की, और संरक्षित खेती का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल हो जाता है।
6: देखिए, संरक्षित खेती का सबसे पहले निर्भर करता है कि किसान की क्षमता कितनी है, क्योंकि संरक्षित खेती के लिए उसको पॉलीहाउस भी लगाना पड़ेगा
2: जी।
6: और भारत सरकार उसमें अनुदान भी दे रही है, लेकिन उसमें किसान को भी अपना अंश देना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि क्या किसान वो अंश देने लायक है कि नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा यह है कि हमारा एज एक किसान होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि जो भी किसान इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आना चाहता है, पहले वो बेसिक क्रॉप से आए, जो छोटी क्रॉप होती है जिसमें कम खर्चा होता है, कम लागत लगती है, जैसे गेंदा हो गया, ओपन फील्ड का खुले में गुलाब हो गया, गुलदावरी का हो गया, तो इस तरह की खेती से आए। और जैसे डॉक्टर राजू ने बताया कि गुलदावरी एक ऐसी क्रॉप है, इसको आप पूरे साल ले सकते हैं। लोगों को ये भ्रांति है कि ये केवल जाड़े का फूल है, ऐसा नहीं है
2: जी।
6: हम लोग आज की डेट में इसको शॉर्ट डे करके ब्लैक शेड नेट लगा के इसको कंट्रोल कर लेते हैं और फ्लावरिंग भी इसकी ले सकते हैं
2: जी, जी।
6: तो उससे जो ऑफ सीजन में जो हमें मिलता है, ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस समय पे बाजार में जिस फूल की डिमांड कम हो, अगर हम उसका उत्पादन करते हैं
2: जी, जी।
6: तो निश्चित तौर पर हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है
2: जी। कटियार साहब, जैसे कि अभी सिंह जी ने बताया कि ये पहले सोच ले, किसान देख ले, समझ ले, आंकलन कर ले कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से ही वो संरक्षित खेती कर सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी सरकार का फोकस खास तौर पर छोटे सीमांत किसान हैं उन पर है, उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं अगर उसे वो अपनाते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ होगा और उनकी स्थिति भी बेहतर होगी। तो ऐसे में बताइए कि फूलों की खेती, संरक्षित खेती, इसमें इससे जुड़े हुई कौन कौन सी सरकार की योजनाएं और इसका हमारे किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या अनुदान है इसमें।
7: देखिए, ये जो संरक्षित खेती है इसके बारे में सरकार बहुत ही बढ़ावा दे रही है, और चूंकि ये प्रचार प्रसार का काम भी हमारे पूसा संस्थान में भी किया जा रहा है, और पूसा संस्थान ने खास तौर से अपने यहाँ पे इस तरह के ग्रीन हाउस बना रखे हैं कि किसान वहाँ आके देखते हैं कि ये लोग किस तरह की चीजें किस तरह से उगा रहे हैं, ग्लैड्स किस तरह उगा रहे हैं, रोजेज किस तरह उगा रहे हैं, जरबेरा किस तरह उगा रहे हैं, सारी चीजें वहाँ प्रदर्शित की जा रही हैं, और उसकी लगभग कुछ कीमत भी कैसे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको भी वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
2: पूरा प्रोजेक्ट समझाया जा रहा है।
7: और इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जिसके पास ये स्कीमें हैं जो किसानों को इस तरह की टेक्निकल गाइडेंस आगे चल के देते हैं, उनको पैसे की मदद करते हैं, उसमें सरकार क्या छूट दे सकती है वो भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता है। हर गांव में, हर जिले में, हर प्रदेश में उनकी संस्था काम कर रही है और जो भी किसान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनके पास जाते हैं कि क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा लगेगा, वो उसमें पूरी मदद करते हैं।
2: जी सिंधु साहब, जैसे कि अभी हमें बताया कटियार जी ने कि जो किसान अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर ले जाता है उसी हिसाब से उसे मदद मिल सकती है, लेकिन जो छोटे किसान जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं, आर्थिक तौर पर भी इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है उनकी, तो क्या वो एक बनाकर इस बड़े पैमाने पर खेती करने की सोचे तो उन्हें भी किसी तरह की मदद की संभावना है?
4: हाँ, देखिए कि जैसा कि भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के हमारे NHM प्रोग्राम में बहुत सारे किसानों को संरक्षित खेती के लिए काफी अनुदान दिया जाता है और ये 50% से लेकर 85% तक है, अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं। और इसके साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बड़े प्रोजेक्ट भी देता है, कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए भी सहायता देता है और इंटीग्रेटेड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सहायता किसानों को मिलती है। 1.16 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 50% तक की उसकी बैक एंडेड सब्सिडी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भी कटियार साहब ने भी जिक्र किया। तो उसमें क्या है कि किसान अपनी खेत का संरक्षित कर सकता है, बाउंड्री वाल भी कर सकता है, ट्रैक्टर भी उसमें लगा सकता है, पानी का भी कोई साधन उसमें जुटा सकता है, तो वो काफी बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगा सकता है।
2: अच्छा।
4: उसमें ग्रीन हाउस भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ तकनीकी ज्ञान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली भी है, तो जो किसान बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, जिनकी अपना जो सामर्थ्य है, जो अपना पैसा लगा करके और उसको अच्छा अपना समय जुटा करके करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये काफी परियोजनाएं भारत सरकार की उपलब्ध है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम और लघु किसान हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उनका फायदा उठाए और कुछ ऐसे चुनिंदा फूलों से, अभी हमारे बीच में जी पी सिंह जी ने बताया कि कुछ ऐसे फूलों से खेती शुरू करे, जैसे गेंदा है, ट्यूबरोज है, रजनीगंधा है, ग्लैडलस की खेती करे, वो कम पैमाने पे करे, ताकि उसको कल को कोई रिस्क भी उठाना पड़े तो उसको ज्यादा नुकसान ना
2: जी,
4: हो।
2: बिल्कुल। तो आपने बताया कि जो नई नई किस्में हैं उनका इस्तेमाल करें और शुरुआत छोटे स्तर से करें, तो मैं अब आपसे राजू जी जानना चाहूंगी कि कुछ जो वैरायटीज के बारे में आप बता रहे थे, तो इसमें गेंदा की अर्पिता, एक पूसा अर्पिता वैरायटी है, ये नई वैरायटी बताई जा रही है, इसके साथ ही पूसा बहार है, तो इनकी खासियत क्या है जो पहले किसान लेते आ रहे हैं फूलों की किस्में, उससे ये कैसे भिन्न है?
5: जी नहीं, आप देखेंगे तो गेंदे के चार किस्में हैं जो हमारी संस्था ने रिलीज किया है, उसमें पूसा नारंगी, एक पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा नारंगी गेंदा जो नारंगी कलर के फूल आते हैं, पूसा बसंती में पीले रंग के फूल आते हैं, ये दोनों फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करते हैं
2: जी।
5: और करीब 20 टन के आसपास प्रति हेक्टर फूल उत्पादन होता है
2: जी।
5: और जो फ्रेंच मेरीगोल्ड जो जाफरी कहते हैं हम लोग, उसका किस्म है पूसा अर्पिता, ये जो इसका जो फ्लावरिंग टाइम है ये जनवरी और फरवरी में और मार्च तक इसका 45 डेज फ्लावरिंग होता है
2: जी, जी।
5: और करीब इस 20 से 25 टन के औसतन इसका फूलों का उपज होता है। इसके अलावा एक नया किस्म है पूसा बहार।
2: अच्छा, जी,
5: ये पीले रंग का फूल देता है और ये उद्यानों के लिए काफी उपयुक्त है, करीब 60 से 80 फूल प्रति पौधे में आते हैं और अगर खुले फूलों के लिए करेंगे तो 20 टन उपज देता है।
2: अच्छा, तो ये हमारे किसान जो है जो शुरुआत करना चाहते हैं तो गेंदे की वैरायटी ले सकते हैं, ये अगर हम उन्हें कहना चाहे तो ये बेहतर रहेगा उनके लिए।
5: जी
2: जी,
5: गेंदा ऐसा क्रॉप है कि इसमें कम से कम इनपुट से किसान लाभ पा सकता है और ये ऐसा क्रॉप है कि अगर किस्म का चयन करेंगे तो साल में 3 बार इसका क्रॉप ले सकते हैं।
2: जी जी पी सिंह जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि छोटे पैमाने पर शुरू करें किसान गेंदे की या फिर किसी भी फूल की जो बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उसे ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत है या फिर जो पारंपरिक तौर पर उसे पता है कृषि जो ज्ञान है फसलों से जुड़ा हुआ उसी के आधार पर वो इसे शुरू कर सकता है या फिर ट्रेनिंग लेना उसके लिए बेहतर रहेगा?
6: नहीं, मेरा इस प्रकरण में कहूंगा मैं कि अगर किसान ट्रेनिंग ले, उसका आके संस्थान से पूसा संस्थान से ट्रेनिंग ले, या स्थानीय स्तर पर उसके आसपास जो भी कहीं भी कृषि संस्थान है वहां से ट्रेनिंग लेता है, तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा लाभ कमा लेगा, क्योंकि नुकसान होने के बाद वापसी का कोई संभावना कृषि क्षेत्र में नहीं है।
2: बिल्कुल।
6: तो यहाँ पे जो आपका एक बार नुकसान हो गया, फिर उसके बाद आपको 3 महीने इंतजार करना है, फिर दोबारा से वही करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कमा पाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान को कि कहीं भी जाए वो, और जो संस्थान संबंधित संस्थान है उससे ट्रेनिंग ले। और देश में मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हर राज्य में क्षेत्र है, वो इनके प्रक्षेत्र है, तो वहां से जाके वो अपना ट्रेनिंग ले, और उसके बाद ऐसी फसलों का वैज्ञानिकों से भी सलाह ले कि मैं एक फसल से अधिक लाभ कमा सकता हूँ। सपोज वो गेंदे का उत्पादन करता है, तो गेंदे का पौध भी, फूल के साथ साथ वो पौध उत्पादन भी कर सकता है, गेंदा कटिंग से भी तैयार हो जाता है, उसका बीज उत्पादन भी कर सकता है, साथ ही गुलदावदी हो गया, गुलदावदी का फूल भी बेच सकता है वो, उसके साथ साथ

0: उन्हीं पौधों से वो नई कटिंग्स पौध तैयार करके नर्सरी व्यवसाय नर्सरी के जो व्यवसायक हैं व्यवसायी हैं उनको भी पौधे सप्लाई कर सकता है, बेच सकता है वो, तो उसको वहां से भी उसको लाभ अर्जित हो जाएगा। तो किसान को अधिकतर जो बेसिक छोटा किसान है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको वैज्ञानिकों से मिलके सलाह करके पूरा ज्ञान प्राप्त करे और ऐसी फसलों का चयन करे जिससे वो अधिक लाभ कमा सकता है, फूल भी बेचे, पौधे भी बनाए, गेंदा हो गया, गुलदावदी हो गया, गुलाब हो गया, इनके पौधे भी बना सकता है, साथ में नर्सरी वालों को बेच के तो उसको दोहरा लाभ प्राप्त हो जाएगा।
1: जी जी।
0: तो ऐसी फसलों का उसको चयन करना चाहिए जिससे वो ज्यादा उसके लिए लाभदायक रहे।
1: जी कटियार जी, जैसा कि अभी हमें सिंह साहब ने बताया कि कैसे वो इसका दायरा और बढ़ा सकता है या फिर कहे कि और विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं अतिरिक्त आय के, ये भी हमें समझा, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि किसान के स्तर पर अगर हम जाकर सोचे तो क्या उसमें इतना आत्मविश्वास हम पैदा कर पाए हैं या फिर दिखाई देता है फूलों की खेती को लेकर के कि वो इसे प्रमुख फसल के तौर पर ले, क्योंकि अभी भी वो यही सोचता है कि धान है, गेहूं है, ये तो चलिए हो ही जाएगी और बिक ही जाएगी मंडियों में, लेकिन फूलों के लिए उसे जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। तो क्या ये समय आ चुका है या फिर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसे किसान प्रमुख फसल के तौर पर भी लेंगे?
2: जी बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो हमारे किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़ा सा जो आगे हैं, पैसे वाले हैं, तो वो इसमें उन्होंने पहल की है, वो पहले इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे आपने अभी पूछा था कि जो छोटे किसान हैं क्या वो ग्रीन हाउस बना सकते हैं, तो छोटे किसान इसमें हिम्मत कम कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: जो बड़े किसान हैं जो रिस्क उठा सकते हैं कि अगर कोई फेलियर हो गया तो उसका जो नुकसान है वो झेल पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इस वजह से बड़े किसान ही इसमें इस संबंध में आगे आते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसान की नकल कर लेते हैं, बड़े किसान से परामर्श ले लेते हैं, या जो बड़ा किसान कहीं पूसा इंस्टीट्यूट से या किसी से सलाह लेके कोई काम कर रहा है तो वो उससे सीखते हैं, उससे परामर्श लेते हैं। और शुरुआत जैसे बार बार इस बात पे हम कह रहे हैं, हमारे और साथी लोग भी कह रहे हैं कि छोटे काम से शुरुआत करनी है।
1: जी।
2: तो किसान जो है छोटे काम से शुरुआत कर रहा है, जैसे सबसे पहले गेंदा उगाता है, वो देखता है कि इसमें हमको कुछ फायदा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि गेंदा एक कैश क्रॉप है, ये जितने भी फूल हैं एक कैश क्रॉप है।
1: जी जी।
2: पहले डिस्कस हो चुका है कि इसका भंडारण जो है संभव नहीं है, और जहां संभव है तो बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए ऐसी क्रॉप को बहुत जागरूकता से उगाते हैं किसान, और फिर देखते हैं कि इसकी मार्केट कहाँ है, पास में कहीं बिक्री का केंद्र है, उस सबके मद्देनजर ही इसको बोते हैं। तो जो छोटे किसान हैं वो पहले छोटी पूंजी लगाते हैं। गेंदे के अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे गुलाब है, देसी गुलाब जिसको हम कहेंगे, एक तो जो पाली हाउस में या ग्रीन हाउस में लगाते हैं वो तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो ओपन फील्ड में लगाते हैं, जो हमारा देसी गुलाब है, पूजा के काम आता है, उसको हमारे किसान इजीली उगा लेते हैं और उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है, और उसको भंडारण में उनको फ्रेश ही लाना पड़ता है बाजार में, तभी कीमत मिलती है रोज के रोज। लेकिन उसमें जैसे बरसात हो जाए या और कोई ओलावृष्टि हो जाए तो वो पेड़ चूंकि हार्ड होते हैं तो वो एक बार फूल खराब हो जाता है तो उसमें क्षमता होती है दोबारा ग्रो करने की।
1: जी, जी, जी।
2: लेकिन जो सॉफ्ट क्रॉप है, जो गेंदा वगैरह है या गुलदावदी है या ट्यूबरोज है, वो सॉफ्ट क्रॉप है, उनमें अगर एक बार ओलावृष्टि हो जाए या तेजी से बरसात हो जाए तो नुकसान बहुत हो जाता है।
3: यह सारी फसलें सॉफ्ट फसलों की गिनती में आती है, और अगर इन फसलों में ओला बारी हो जाए या तेज वर्षा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं ये जो फसलें हैं वो बर्बाद हो सकती है। तो इसके अलावा और भी क्या क्या समस्याएं आती है, इनसे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडियाबिल 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज पर।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फूलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को और जानते हैं किन किन परिस्थितियों में हमारे जीव जो फसल है वो खराब हो सकती है, जो गेंदे के फूल है और भी जो फूलों की फसलें हैं उनका हमें प्रबंधन कैसे करना है, उनकी देखरेख कैसे करनी और किस समय पर कौन से कदम उठाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आइए जानते हैं।
1: पहले हमने नई नई वैरायटीज के बारे में बताया कि कैसे किसान इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कहां से शुरुआत करें और किन किन चुनौतियों के लिए वो तैयार रहे। लेकिन अब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है, सरकार इसके लिए किस तरीके से किसानों को मदद कर रही है। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एक नया बाजार भी उभर कर आया है ऑर्नामेंटल फ्लावर्स यानी अलंकृत फूलों का, तो इससे किसान कैसे जुड़ सकते हैं, उन्हें कैसे लाभ हो सकता है, आइए बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अलंकृत फूल जो हम बता रहे हैं ये है क्या और इसका बाजार किस तरह का है।
2: अभी जैसे हमने बात की, अभी तक हम बात कर रहे थे फूलों की और फूलों से जुड़ी हुई किस्मों के बारे में। इसके साथ साथ एक दूसरा विषय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है अलंकृत बागवानी। जितने भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखते हैं, नर्सरी देखते हैं, उसमें बहुत सारे पौधे हैं जो आजकल देश विदेश से लोग मंगा करके यहाँ पे उगाते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उनका टिश्यू कल्चर करते हैं और बहुत ही तादाद में उनको पैदा करके वो बाजार में बेचते हैं। तो अलंकृत बागवानी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें भी काफ़ी किसान इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियाँ इस विषय पर काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने नर्सरी भी इस्टेब्लिश की हुई है और इसमें आजकल बहुत नए नए पौधे भी आजकल आ रहे हैं। अभी जैसे हम बात करें, ऑर्किड है, ऑर्किड यहाँ के लिए नया फूल है
1: जी।
2: सिक्किम में ठीक है, ऑर्किड अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा है
1: जी।
2: इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पौधे हैं जो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे यदि हम कंदीय फूलों की बात करते हैं तो रैनन कुलस है, बहुत ही नया फूल है। उसके बाद अलंकृत पौधों में क्लोरोफिटम है, पेंटाज है और भी बहुत सारे ऐसे अलंकृत पौधे हैं जो कि बोने हैं, ड्वार्फ हैं, देश विदेश से भी आजकल काफी इंपोर्ट हो रहे हैं और उनको अच्छा बाजार मिल रहा है।
1: जी सिंह साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि आप किसान हैं तो इसके लिए कितना हमारे किसानों के पास कह सकते हैं कि विकल्प है या फिर जो स्थितियां हैं वो दिखाई दे रही हैं कि अनुकूल है कि अलंकृत फूलों की खेती पहली बात तो ये, और उसका जो एक और नया आयाम है अलंकृत फूल या फिर बागवानी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपने इसे अपनाया है।
3: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि विविधीकरण जो हमें कृषि क्षेत्र में हमारा जो है उसमें हमें विविधीकरण की जो है उसको अपनाना जरूरी है
1: जी।
3: क्योंकि अगर हमारे पास हम चार तरह की फसल लेके चलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लेके चलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे डॉक्टर सिंधु ने बताया ये हैं, इसके अलावा लिसियंथस ऑस्टोमा काफी अच्छा पॉपुलर प्लांट है और उसकी काफी मार्केट अभी डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह के अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी अपने कट फ्लावर का जैसे हमारा काम है उसके साथ साथ अगर हम इसको भी लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्षेत्र एक है, कार्य क्षेत्र हमारा एक है, वर्किंग पीरियड हमारा एक ही है और उस अगर हम एक ही जगह पे अगर दो से तीन या चार काम को एक साथ लेके चलेंगे इसमें तो निश्चित तौर पर किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। और नर्सरी का व्यवसाय जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 7-8-10 सालों में फूलों का जो क्रेज है लोगों के बीच बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा शायद ही कोई घर आपको कहीं मिलता होगा जिस घर में 10 गमले कम से कम ना हो और उसमें ऑर्नामेंटल भी है और फ्लावर्स के भी है। तो किसान अगर इसको करता है तो निश्चित तौर पे वो लाभ अर्जन कर सकता है, चाहे वो सीमांत क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। तो फूलों की डिमांड आज के डेट में सब जगह बढ़ रही है
1: जी।
3: तो मैं तो ये कहूंगा जो भी किसान है वो संरक्षित खेती कर रहा हो फूलों की, चाहे वो खुले में कर रहा हो, वो साथ साथ नर्सरी का व्यवसाय को भी अपनाए तो नर्सरी व्यवसाय अपनाएगा तो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकता है।
1: चलिए, आप बात कर रहे थे चुनौतियों पर और साथ ही साथ उन चुनौतियों का कैसे निवारण हो रहा है या फिर हल ढूंढा जा रहा है। और जो मुझे समझ आता है एक बड़ी चुनौती ये हमारे किसानों के सामने आती है कि जो किसान शहरों के आसपास के हैं वो तो चलिए ठीक है फूलों की खेती अपना सकते हैं या फिर बहुत आसानी से अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें बना बाजार मिल जाता है। दूसरी बात, जो यातायात का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन, वो बचता है, भंडारण की समस्या नहीं होती है। तो क्या हम कहें कि ये सिर्फ बड़े शहरों के आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, उन्हीं के लिए फायदेमंद है, दूर दराज के या फिर सुदूर इलाके के जो किसान हैं जहां दूर है शहर जहां पर इनकी डिमांड होती है उनके लिए अभी भी दूर की कौड़ी

0: सिंधु साहब,
1: देखिए ऐसा है कि चुनौतियां तो बहुत हैं, और जैसे दूर के किसानों का आपने जिक्र किया, तो दूर के किसानों के लिए हम ये चाहेंगे कि वो इस टाइप का बिजनेस अपनाएं, इस तरह का कोई फूलों से जुड़ा हुआ धंधा अपनाएं, जैसे कि बीज उत्पादन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है ये। बीज उत्पादन का वो काम कर सकते हैं, यदि वो किसी मुख्य शहर से बहुत दूर है तो बीज उत्पादन का काम कर सकते हैं, नर्सरी का काम शुरू कर सकते हैं, प्रोपोगेशन का काम कर सकते हैं, जिसकी मार्केटिंग के लिए उसके पास काफी समय उपलब्ध रहता है, और यदि वो समय से नहीं भी बेच पाता तो उसका जो उत्पाद है वो खराब नहीं होगा
0: जी।
1: तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको इस तरह से उनका सामना करने के लिए अपने व्यवसाय का जो विविधीकरण की अभी बात की थी वो हमें अपनाना होगा
0: जी। डॉक्टर राजू, जैसे कि बीज का भी जिक्र किया सिंधु साहब ने, तो हम ये भी देखते हैं कि वैज्ञानिक तो अपना काम करते हैं, वो नई नई वैरायटियां बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, लेकिन उस वो किसानों तक कैसे पहुंचे और उस वो वैरायटी कैसे बढ़े, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। उनका काम होता कि आपने वैरायटी बना दी, अब इसका लाभ कैसे पहुंचे वो दूसरा तंत्र काम करता है। तो क्या ये भी एक चुनौती रहती है कि किसानों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती?
2: आप जैसे सही बोल रहे हैं, इसमें जो बीज जो किसानों तक ले जाना ये बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है, और जो हमारे संस्थान है जो और ICAR है, सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इसी काम में लगे हुए हैं, और जो फूल जो बीज से हो सकता है उसमें काफ़ी मात्रा में बीज प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन किया जाता है, और डिफरेंट सेंटर्स में भी उपलब्ध किया जाता है। इसके अलावा जो मतलब प्लांटिंग मटेरियल्स जो प्लांट्स होते हैं, इसका पौधे बनाना होता है, उनको कमर्शलाइज भी किया जाता है, और बहुत सारे नर्सरीज को भी टाई अप किया जाता है ताकि वो डिफरेंट प्लेसेस से में अवेलेबल हो। जैसे गुलाब ही है, जैसे गुलाब में जो मूल ग्रंथ होता है जो अलग अलग प्रदर्शन के लिए अलग अलग होता है, तो इसमें कई डिफरेंट प्लेसेस से नर्सरी से टाई अप करके उनके पास भी ये मटेरियल अवेलेबल किया जाता है ताकि वो लोकल में अवेलेबल हो। इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऐसे हैं, जैसे ग्लैडियोलस वैरायटीज है, क्रिजान गुलदौदी की वैरायटी है, हमारे संस्थान ने इसको कमर्शलाइज किया है। जो प्रोग्रेसिव किसान है या जो किसान जो मटेरियल ज़्यादा तरह के अवेलेबिलिटी कराते हैं उनके साथ कमर्शलाइज किया हुआ है ताकि वो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल कराएं और लोकल में उपलब्ध कराएं
0: जी। डॉक्टर कटियार, आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बताया कि समस्याएं बहुत सारी हैं और इसको अगर और हमें बढ़ाना है, निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, तो हमें इन चुनौतियों पर, इन लिमिटेशंस पर हमें काम करना पड़ेगा, तो ये बताइए कि सरकार भी फूलों की खेती पर काफी ध्यान दे रही है और इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट है सरकार का?
3: देखिए, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अभी तक जो चीजें हमारी लैब में बनाई जा रही हैं या लैब में उनका रिसर्च वर्क किया जा रहा है, तो वो किताबों में या रिसर्च की जो थीसिस है उसके अंदर ना रहें, उससे बाहर निकल के आए। तो अब सरकार ने सारे जितने भी हमारे इस तरह रिसर्च सेंटर्स हैं इनको किसानों से जोड़ने के लिए कोशिश जारी है कि जो भी हमारे साइंटिस्ट जो भी नई चीज निकालें उसका सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंस करें, कॉन्फ्रेंस करके क्रम में हमारे जो क्षेत्रीय किसान हैं उनको बुलाएं, आमंत्रित करें, उनको सिखाएं, जिससे उन्होंने जो चीज बनाई है, निकाली है, वो फील्ड में उतरे और किसानों को रिजल्ट मिले। सरकार भी देखे, साइंटिस्ट भी देखें कि उन्होंने जो बनाया है उसका रिजल्ट सही आ रहा है जमीन पे कि नहीं। तो इसमें सरकार बहुत ही आगे कारगर है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अलंकृत की बागवानी की बात हो रही थी, तो उसमें सारे जो हमारे किसान हैं उस फील्ड में भी उतरे हुए हैं और उनमें उनको ऐसा लगता है कि शायद उनमें उनको कुछ सुविधा भी है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बीज हैं, पुटरंजिवा के बीज हैं या मलताज के बीज हैं और पेड़ों के बीज हैं, फूलों के बीज हैं, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं, उनको कुछ फ्री मिल जाते हैं, पेड़ों से जो भी सड़क पे पेड़ लगे हुए हैं उनसे वो बीज तोड़ लेते हैं, सड़क के किनारे जो हाईवे पे हमने सरप प्लांट्स लगा रखे हैं उनसे उसकी वो कटिंग ले लेते हैं, तो उनके बीजों से, उनकी कटिंग से फ्री में उनको जो है वो मदर प्लांट्स मिल रहे हैं सड़क के किनारे जो खड़े हैं, और उनसे वो अपनी नर्सरी ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं
0: जी।
3: और वो जैसे बात आ रही थी कि जो इंटीरियर में हैं या जो शहरों से दूर हैं या जो कस्बों से दूर हैं किसान, वो क्या कर रहे हैं, तो वो किसान भी उसमें उतर गए हैं
0: जी।
3: और वो मेन मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो बड़े जो उनके व्यापारी हैं, जो बड़े नर्सरी मैन हैं, उनको वो माल दे देते हैं, उनको वो अपना प्रोड्यूस दे देते हैं, और उसके बाद वो बड़े जो हैं जिनका टच शहरों से, वो आके वहाँ पे सप्लाई करते हैं।
0: जी सिंधु साहब, मंडियों की भी हम बात कर लेते हैं, तो मंडियां कैसे इससे जुड़े? फूलों की मंडियां, क्योंकि हम अनाज की मंडियां तो देखते हैं कि हर जगह उपलब्ध होती है किसानों के लिए, लेकिन फूलों की मंडियों की अगर बात करें तो वो अभी इतना बड़ा कह सकते हैं कि इसमें इतना विकास नहीं दिखाई देता है, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे?
1: फूलों की मंडियों का यदि हम बात करते हैं तो जो आज के समय यदि फूलों की हम बात करें तो देश में अभी कम से कम 5 या 6 बड़ी मंडियां हैं, जिसमें से दिल्ली सबसे बड़ी मंडी है, और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली की मंडियों में विकास हुआ है। अभी जो हाल ही में दिल्ली सरकार ने गाजीपुर में जो जगह दी है, वहां पे बहुत अच्छी दुकानें बन गई हैं, वहां पे काफी अच्छी सुविधाएं भी हैं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं भी वहां पे जुटाई गई हैं कि जो सरप्लस बच जाता है ताकि उसको स्टोर कर सके, अगले दिन फिर उसको बाहर निकाल के उसको बेचा जा सके, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्किंग के स्ट्रक्चर्स है, वो वहां पे जुटाई गई है। इसी तरह से बेंगलोर में है, और आपका बॉम्बे है, पुणे है, चेन्नई है, तो बड़े शहरों में हैदराबाद है, वहां पे भी फूलों की बड़ी मंडियां अभी काफी हद तक उपलब्ध हैं, और जो बेंगलोर की मार्केट है वो तो काफी कंप्यूटराइज्ड है, और काफी हद तक इंटरनेट पे उसके आपको रेट मौजूद रहते हैं। दिल्ली की मंडी के रेट भी दिल्ली सरकार के जो हमारा दिल्ली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसकी साइट पे भी आपको डेली उसके रेट उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ जो छोटे आढ़ती हैं, जो छोटे कॉर्नर नुक्कड़ वाले जिनको हम बोलते हैं, वो भी छोटे छोटे बाजार हैं, छोटी छोटी मंडियां हैं, और छोटी छोटी फ्लोरिस्ट शॉप हैं, जिसके माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर या प्रोड्यूसर भी जुड़ा रहता है। बड़ी मंडियों के थ्रू एक तो कस्टमर जुड़ता है, प्रोड्यूसर जुड़ता है, और एक कुछ ऐसे छोटे प्रोड्यूसर हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर से भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है हरियाणा में, जैसे अभी कोई 18 के आसपास है फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, किसान अपना पैदा करके अपना ही बेचता है।
0: अच्छा,
1: तो वो भी एक सरकार का काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो इस तरह मंडियों की तरफ भी काफी ध्यान है सरकार।
0: सिंह साहब, क्योंकि आप खुद किसान हैं और आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि चलिए ये तो बात रही कि सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी योजना है, वैज्ञानिक अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ से आप क्या चाहते हैं कि क्या योगदान होना चाहिए, फिर उनके क्या प्रयास होने चाहिए?
4: देखिए, किसानों का सबसे जो पहले किसान जो चाहता है, जो हमको चाहिए वो अच्छी गुणवत्ता का पौध चाहिए।
0: जी,
4: जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पौध तैयार करते हैं, नई किस्में तैयार हो रही हैं, अगर हम उनकी एट ए टाइम अगर कोई किसान अगर 10,000 प्लांट मांगने पहुंच जाए तो शायद वो वहां से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो पहला तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृषि अनुसंधान संस्थान को इतनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं कि जो भी नई वैरायटी हम आपके यहाँ से रिलीज होती है, किसान को वो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके।
0: जी जी।
4: क्योंकि ऐसा नहीं है कि पौध कभी खराब नहीं होती, अगर पौधे अगर आज नहीं बिकी तो 1 महीने तक 2 महीने तक वो स्टोरेज हो सकती है।
0: जी जी।
4: तो किसान को एक तो गुणवत्ता युक्त पौध मिलेगा, फिर दूसरा जो पौधा बाजार से हमको 6 रुपए या 8 रुपए 10 रुपए मिलेगा, वो वही हमको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मिनिमम रेट पे मिलेगा।
0: जी।
4: दूसरा सबसे मेन चीज उसमें रहेगा कि जो हमें संस्थान दे रहा है, इसकी गारंटी है कि वो जो भी दे रहे हैं वो हमें सही पौधा दे रहे हैं।
0: जी।
4: क्योंकि बाजार से हम ओपन मार्केट से लेते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस किस्म का पौधा निकलेगा। हमने ग्रीन मांगा, निकला व्हाइट, तो वो दिक्कत किसान के सामने सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, किसान से भी, किसानों के एक किसान होने के नाते मेरा सभी किसान भाइयों से भी ये मैं कहूंगा कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में ज्ञान अध्ययन कर ले, वैज्ञानिकों से सलाह कर ले, और उसके बाद उसको स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें, जिससे कि हमारा खर्चा कम से कम हो, और साथ ही जो भी कार्य करें उसको विविधीकरण की योजना के तहत करें।
5: जी हाँ किसान साथियों, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर सुना है, कैसे अगर हम कोई भी अगर कोई भी फसल की हम अगर उपज लेना चाहते हैं तो उसके पहले उसका गहन अध्ययन करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत या हमारे पड़ोसी किसान से देखकर हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी फसल की खेती करें, तो कहीं ना कहीं हम उसके बीजों में और उसके रख रखाव, उसमें कौन सी दवा लगेगी आदि चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं, और हमें हमारी खेती में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, बहुत जरूरी है कि आप पास के केवीकी केंद्र में जाएं और वहां से संपूर्ण प्रशिक्षण ले लें। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो प्रशिक्षण केंद्र है, किसान विज्ञान केंद्र है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र जो चलते हैं, उसमें भी आप भाग लेकर अपनी आपका जो भी मन है कि हम मुझे ये वाली खेती करनी है, जो भी खेती आप करना चाहते हैं वो आप उनको बताइए और जानिए कैसे उस खेती को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर गहन अध्ययन करने की बहुत ही आवश्यकता है, तो ताकि हमारी जो हमें नुकसान उठाना ना पड़े और हमें अधिक से अधिक फसल मिल सके, उससे हमारा मुनाफा भी हो सके और साथ ही हम दूसरे किसानों को भी हमारी खेती से प्रेरणा दे सकें।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
5: किसान भाइयों, आजना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप ये घणी खरी महत्वपूर्ण जानकारी ने जानियो है ने आशा भी करी है कि ये जानकारी घणी खरी है, आपू हमज में भी आवी है। आपू जानिए है कि अगर आपू देखी तो आजकल आपू हर भगवान ने आपू फूल चढ़ावी से। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं अगर आपू देखी तो फूलों की खेती जो है ये एक फायदा वाली खेती थी सके है। तो किसान साथियों, हूँ आशा करूँ कि घना खरा किसान इनकी खेती ने करे अने ये बात तिना ने गले उतरी है कि फूलों की खेती में भी फायदो है। तो आशा करी है कि ये भी खेती कहीं ना हमारा किसान जो भाई है जो करे अने आगाड़ी लीन आवे इनी खेती ने भी और इनकी भी अधिक से अधिक मुनाफो आपू ले सकी। तो आज ने इना कार्यक्रम में आपू ये विस्तृत जानकारी ले दी है किसान भाइयों, अने आशा करी है कि तमु अपना पड़ोसी किसान भाई ने भी इन्हें बारे में बताड़ हो अने तीन भी ये खेती करवानो सुझाव आलो। इन्हीं हाथे किसान भाइयों, हमने समय थी गयो है तमारती विदा लेवानो। आप तमारती फिर काल मुलाकात था है इना समय पर। इतरे बनेला रहो हमारे हाथे रेडियो टाटिया भी 90.8 FM नी हाथे झबवानी आवाज पर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: नमस्कार किसान भाइयों, एक बारी फिर था बहुत बहुत स्वागत करूं से रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नुयु खेतीवाड़ी कार्यक्रम आपुने खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घणी खरी महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपणी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों, आप मुं भी आशा करिए है कि इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी आपण किसान भाई लाभ ली रहा है अने जो जेम के आपू अमु फील्ड में भी आवी ने तमारथी जो राय ली है, तमारा जो समस्याओं ने जाणवानी कोशिश करी है, कहीं ना कहीं अमुन लागे है कि तमु हमारा इना कार्यक्रम में घणो भाग ली रहा है, हमली रहा है इना कार्यक्रम ने। साथ ही किसान भाइयों, हमू ये भी आशा करी है कि जो खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम है इना कार्यक्रम में जे भी जानकारी आपुन मली रही है तीनी जानकारी ने आपू अपना किसान भाइयों तक भी पुगाड़वानो प्रयास करी रहा है। तो किसान भाइयों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम आपुने अलग अलग प्रकार की खेती करवा हरू सलाह आले है। साथ ही आपुन हिकाड़े है प्रशिक्षण आले है कि किकम आपू अलग अलग प्रकार की खेती भी करी सकी है। जेम के आपू जानिए है किसान भाई, आप जावाना किसान भाई भली भांति वाकिफ है कि आप अगर आपू देखी पिछला 10 साल थी ते फसल अपना खेतरों में दिखाई रही है। भले आपू ये एक साल मक्की करी ते आपते सोयाबीन या कपा कर ली, पर जो आप इन्हीं 3-4 फसलों ने अलावा अगर आपू देखी तो अपना एरिया में बीजी फसल देखावा नहीं मांगे है। तो किसान भाइयों, आपू कोशिश करिए कि ना केवल आपू फसलों की खेती करिए, तीन अलावा भी फूलों की खेती करी सकिए, आपू आप फलों की खेती करी सकिए और भी अलग अलग घनी खरी एवं फसलें हैं जो अपना झाबुआ जिला में अनुकूलित है। अंति अगर आपू तीन आपू फसल करवा मांगी है, तीन खेती करवा मांगी है ते भी संभव है। तो किसान भाइयों, हमारो योज प्रयास है कि आप किसान भाई अलग अलग प्रकार की खेती करे अने अलग अलग प्रकार की खेती करवामा કેમ કે અલગ અલગ અગર આપ ઔષધિ પૌધાની ખેતી કરું અલગ પ્રકારની ખેતી કરું તો તેની જો માંગ હે બજારમાં જે માંગ હે તેની માંગની હિસાબથી તેમાં આવક ભી વધુ મળે હે તો આપણ કિસાન ભાઈઓ એક વાતને આપણે જાણવાની જરૂરત હે કે આપણ કિસાન ભાઈઓને સચેત રહેવું હે કે હમણે હમણાંના સમયમાં બજારમાં આની માંગ છે તેની માંગને દેખતા હોવા તેની ફસલ જો અગર આપણા એરિયામાં અગર તે ફસલ થઈ શકે હે તે તેની ફસલને કરવાનું તો આર કો સવાલ યો બને હે કે અગર આપણ કિસાન ભાઈ ચાહે તો અગર ફસલ કરવા માંગે લેકિન આપણા એરિયામાં બળે યા નહીં બળે યા તેનું બીજ કાંતું મળે તો તેના બારામાં આપણને જાણકારી આલે હે કેવી કી કિસાન વિજ્ઞાન કેન્દ્ર. જી હા કિસાન ભાઈઓ, આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં કિસાન વિજ્ઞાન કેન્દ્ર હે, તેના માધ્યમથી આપણું આપણ કિસાન ભાઈ આવી શકે તેને તાર કે જઈને પ્રશિક્ષણ લઈ શકે અને પ્રશિક્ષણને માધ્યમથી જાણી શકે કે જો હું ખેતી કરી રહ્યા તેની અલાવા બી કંઈની ખેતી આપણ ઝાબવામાં મુમકિન હે પોસિબલ હે તો તેની ખેતીને આપણું કરી શકીએ યા નહીં કરી શકીએ તેના બારામાં આપણું જાણકારી લઈ શકીએ. સાથે રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM યુ ખેતીવાડી કાર્યક્રમ તેની ઉપર ફોકસ કરે હે અને હું આપણ કેવીકીના માધ્યમથી વિશેષજ્ઞોના માધ્યમથી કોશિશ કરીએ હે કે અમારા કિસાન ભાઈઓ તક અસલથી અસલ જાણકારી મળે અને પૂરી સંપૂર્ણ જાણકારી આપણા કિસાન ભાઈઓ તક પૂગી શકે. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું ચર્ચા કરવાના હે કે કમ અવધિમાં કમ સમયમાં કંઈની કંઈની ફસલ થઈ શકે હે, કમ સમયમાં અગર આપણું વધુ અસલ જો ફસલ હે જલ્દી પાકવાવાળી ફસલે હે તે અગર આપણું કર લઈએ તે તીનથી હું થાય કે આપણું મોસમ જો એક સાલમાં આપણું 2-3 ખેતી કરી શકીએ યા 3-4 ખેતી કરી શકીએ કારણ કે કંઈ ને કંઈ અગર અવધિ કમ થઈ જાય એની તે આપણું આપણી ફસલને હજુ બઢાવી શકીએ. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું જાણવું કે કમ સમયમાં અધિક કંઈની ફસલ હે કમ સમયમાં આપણું ઉત્પાદન કરી શકીએ અને તેનાથી આપણું અધિકથી અધિક મુનાફો લઈ શકીએ. તો કિસાન ભાઈઓ, આવીએ આજના એના કાર્યક્રમની આપણું આથી શરૂઆત કરીએ છીએ.
8: જમીનેં સિકુડતી જા રહી હૈ ઓર જનસંખ્યા લગાતાર બઢતી જા રહી હૈ. કમ જમીન મેં અધિક જનસંખ્યા કા પેટ ભરના અપને આપ મેં એક ચુનૌતી બનતા જા રહા હૈ. ઇસસે નિપટને કે લિયે કઈ તરહ કી કોશિશે કી જા રહી હૈ, કુછ અનુસંધાન ભી કિયે જા રહે હૈ. જૈસે અધિક ઉપજ વાલી કિસ્મે તૈયાર કરના ઓર મિશ્રિત ફસલે ઉગાના, ઇસકે અલાવા છોટી અવધિ કી ફસલે ઉગાકર ભી થોડી ભૂમિ મેં અચ્છી પેદાવાર લી જા સકતી હૈ. યે સવાલ તબ ઓર મહત્વપૂર્ણ હો જાતા હૈ જબ તાપમાન બઢને કે અનુમાન કે કારણ ખેતી કે તૌર તરીકો મેં બદલાવ વક્ત કી માંગ હો જાતી હૈ. इस साल तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है. तो आज के विचार विमर्श में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे. छोटी अवधि बड़ी आय, ये है चर्चा का विषय. इस विषय पर चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट.
9: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન. આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં. એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
10: छोटी अवधि की फसलें 2-3 महीने में ही पक कर तैयार हो जाती हैं। जायद की ज्यादातर फसलें छोटी अवधि की ही होती हैं। इस समय किसान पालक, धनिया, मूली, लोबिया, मूंग और उड़द जैसी फसलें अपने खेतों में उगा सकते हैं। दो बड़ी फसलों के बीच में खेत अक्सर खाली रह जाते हैं. ऐसे में खेत खाली न छोड़कर अगर छोटी अवधि की फसलें बो दी जाए तो किसानों को अतिरिक्त आमदनी हासिल हो सकती है. मिश्रित खेती में छोटी अवधि की फसलें काफी कारगर हैं. जब तक मुख्य फसल कुछ बड़ी होती है, छोटी अवधि की फसलों की कटाई का समय आ जाता है. अभी की अगर बात करें तो घिये की कतारों के बीच मौजूद खाली जगह में पत्तेदार सब्जी या फिर चौलाई बोई जा सकती है. मिश्रित खेती में खरपतवार की समस्या कम होती है. साथ ही मूंग की जड़ों में मौजूद नाइट्रोजन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ा देता है. इससे मुख्य फसल और भी बेहतर होती है. जिन इलाकों में पानी की समस्या है या जहां बारिश कम होती है या फिर सूखे की हालत में छोटी अवधि की फसलें किसी वरदान से कम नहीं है. इसके अलावा अगर मौसम की मार के चलते लंबी अवधि की फसल बर्बाद होने पर छोटी अवधि की फसल बो सकते हैं। इसके अलावा मौसम की मार के चलते लंबी अवधि की फसल बर्बाद होने पर छोटी अवधि की फसल बो सकते हैं। इससे नुकसान की भरपाई को किसी हद तक कम किया जा सकता है।
8: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट और छोटी अवधि बड़ी आय से

0: जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉ संजय कुमार झा, इनके साथ ही कीट संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉ विश्वजीत पॉल, सब्जी संभाग के अध्यक्ष डॉ भोपाल सिंह तोमर,
1: नमस्कार,
0: और बागवानी संभाग के अध्यक्ष डॉ संजय कुमार सिंह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर जी, मैं सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और बहुत ही सीधा सपाट सा सवाल है कि छोटी अवधि की फसलें क्यों जरूरी है किसानों के लिए?
2: छोटी अवधि की फसलें खासतौर से फसल चक्र में एक समा जाती हैं, कम अवधि की होती हैं तो किसानों को सिंचाई या अन्य खर्चे भी कम होते हैं
0: जी,
2: जिसकी वजह से लागत उसकी कम हो जाती है तो आय बढ़ती है। तो इसलिए भी, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए भी फसल चक्र में विविधीकरण लाना आवश्यक होता है, और जैसे धान गेहूं की फसल चक्र है, धान गेहूं की फसल चक्र के बीच में यदि हम दलहन का एक की फसल लेते हैं, जैसे जायद में 2 महीने की फसल अगर हम मूंग की ले लेते हैं, तो इससे न केवल फसल विविधीकरण होता है, किसानों के खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, बल्कि लगभग ऐसी किस्में आ गई हैं जिसमें 1 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार भी होती है, ऐसी किस्में बनी हैं, तो उससे उसको आर्थिक लाभ भी होता है, चारा की भी व्यवस्था हो जाती है उसके पशुओं के लिए। तो कुल मिलाकर के ये छोटी अवधि की फसलें बहुत कारगर हैं, कुल मिलाकर के इनसे इस फसल चक्र की पद्धति को बढ़ावा देती है, सशक्त करती हैं। और साथ ही जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, चुनौतियाँ आ रही हैं, नमी कम हो रह जाती है मिट्टी के अंदर, सूखा का वो रहता है, आक्रमण रहता है, तो ऐसे समय में भी कम उम्र की जो फसलें हैं, जो किस्में हैं, उनकी खेती करके किसान भाई कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठा सकते हैं, इस चुनौतियों का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि छोटी अवधि की जो फसलें हैं वो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी आय।
0: तो मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं कम अवधि की जिन्हें किसान ले सकते हैं, जो ज्यादा फायदे देने वाली है?
2: ज्यादा फायदे देने वाली फसलों में मैंने जैसे अभी बताया कि दलहनी किस्म, दलहनी फसल है, दलहन में मूंग उर्द ऐसी फसलें हैं जो 2 महीने की अवधि में तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी अवधि में 2 महीने में तैयार होने वाली फसल रबी कटने के बाद यदि खरीफ से पहले की अवधि में किसान को वो मिल जाती हैं और वो अच्छी किस्म भी उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष भी हमें 2 किस्में निकाली हैं जो 52 से 55 दिनों के भीतर पक के तैयार हो जाती है। मूंग की 2 ऐसी किस्में हैं जो 52 से 55 यानी 2 महीने से भी 5-7 दिन पहले ही पक के तैयार हो जाती है। तो ऐसी किस्मों को यदि हम धान गेहूं वाले क्षेत्र के फसल चक्र में फिट करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगी। तो ये खास तौर से है, लोबिया की भी खेती की जा सकती है, इसके अलावा आपके चारा की भी कुछ फसलें हैं जो कि कम अवधि में आपको फायदे दे सकती है।
0: जी तोमर जी, ये बताएं कि हमारे देश में खेती और मौसम दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, मौसम के पैटर्न को देखते हुए छोटी अवधि की फसलें किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है?
1: देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर झा ने भी चर्चा किया कि हमारे यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसल चक्रों का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं
0: जी।
1: और अधिकांशतः किसान ऐसे फसल चक्रों को अपनाते हैं जो साल में या तो 2 ही फसल ले सकते हैं या कई बार 1 ही फसल ले पाते हैं, जिससे गन्ना है
0: जी।
1: तो गन्ना इतनी लंबी अवधि की फसल है कि 1 साल में 1 ही फसल मिल पाती है, या गेहूं धान में 2 फसलें। और अगर हम सब्जी फसलों की तरफ देखते हैं तो सब्जी फसलें इस चीज के लिए बहुत फायदेमंद हैं कि किसान भाई 1 ही वर्ष के अंदर 4 से 5 फसलें ले सकता है सब्जी की
0: जी।
1: और जब वो 4 से 5 फसलें लेता है तो उसको एक तो निरंतर काम मिलता है, और जो खेती में लगे हुए मजदूर हैं उनको भी काम मिलता है, क्योंकि जब खेती से जुड़े हुए मजदूर को काम नहीं मिलता है तो वो भी काम की तलाश में फिर शहरों की तरफ या इधर उधर जाता है
0: जी, जी।
1: तो ऐसे में सब्जी फसलों के द्वारा छोटी अवधि होने के कारण जहाँ तक बात है आय वृद्धि करने की, ये तो बहुत कुछ निर्भर करता है बाजार के ऊपर
0: जी, जी।
1: लेकिन अगर हम बात करें जैसे अभी गर्मी के मौसम में गेहूं की कटाई हो जाएगी, अप्रैल तक हो जाती है, और अगली जो फसल है धान की फसल की रोपाई जून के अंत में या जुलाई के पहले पखवाड़े में करने की हम लोग सिफारिश करते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे में जो ये समय है तकरीबन 45 या 50 दिन का
0: जी, जी।
1: ऐसे में भी किसान भाई बीच में एक फसल ले सकते हैं जिसको हम एग्रोनॉमी की दृष्टि से कैच क्रॉप बोलते हैं, जैसे पालक है
0: जी।
1: अभी ग्रीष्मकालीन पालक की बिजाई अगर किसान भाई कर लेते हैं तो इस अवधि में एक पालक लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धनिया एक ऐसी ऑप्शन है जिसको लिया जा सकता है, या मूली है, गर्मी की मूली है, थोड़ी पैदावार तो कम होती है लेकिन मौसम के अनुरूप न होने के कारण उपभोक्ताओं को जो मूली की मांग होती है उसमें उनको पैसा अच्छा मिल जाता है
0: जी। तो ये जमीन खाली नहीं पड़ी रहती है, उसी समय में आपको ये सब्जी किसी तरह की पत्तेदार सब्जियों का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उगा सकते हैं, उसमें आमदनी भी होती है। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अगर छोटी अवधि की फसल का चयन करते हैं किसान, तो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना अहम हो जाता है या कितना कारगर है ये उपाय?
3: ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि जानते हैं कि जो फल किसान लगाते हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, करीबन 3 से 4 वर्ष के बाद उनमें फल ली जाती है जब सगाई उसकी अच्छी तरह से करते हैं, और ये सारे बहुत दूरी पे लगाए जाते हैं, कोई 8 मीटर पे है, कोई 7 मीटर पे है, तो बीच का बहुत जगह जो है बिल्कुल खाली रहती है। और इन जो अंतर जो कहते हैं कि जो इंटरक्रॉपिंग जो है या मिक्स कहते हैं, तो इसमें जो है अगर फल अगर आम का बाग है या अमरूद लगाया हुआ है तो वहां बहुत जगह मिलती है जहां पे ये अल्प जो तैयार होने वाले जो फल है, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो एक स्ट्रॉबेरी है जो इस समूह में बिल्कुल फिट बैठता है, जो करीबन 3 महीने में तैयार हो जाता है। और इसके अलावा जो है जैसे पपीता है, रसभरी है, और केला है। केला मतलब कह ले कि 10-11 महीने लगेंगे ही उसे, लेकिन हाँ साल भर में वो आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। और साथ ही फल जहाँ लगाते हैं वहां पे अक्सर ये किसान भाई ये करते हैं कि उसमें जो है सब्जियां लगा लिए, दलहन वाली हो या कम जो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाए, साथ ही कुछ जो कहते हैं जिसे फ्लोरिकल्चर क्रॉप, जैसे गेंदा बहुत ही बेहतरीन क्रॉप है जो किसानों को अच्छी आय देता है, और ये उसकी 3 से 4 कतार लगाते हैं जिससे कि उसे फिर उसे ड्रिप पे लगा लेते हैं, फिर उसकी अच्छी फसल लेते हैं। साथ ही औषधीय फसल है, कई हैं, सगंधीय फसलें हैं, इनको लगा के किसान जो है पहले 3 से 4 वर्ष में अच्छी आय ले सकता है, और जिससे कि जो मेन जो फल जो लगाया है वो उसकी बढ़वार हो रही है, और ये जो अंतर जगह में जो फसल लगी रहती है इनसे वो अच्छी तरह से आय ले सकता है।
0: अच्छी उपज और आय प्राप्त करने के बीच अगर रोड़ा होता है कोई तो वो कीट होते हैं, तो डॉक्टर विश्वजीत आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस मौसम में छोटी अवधि की फसलों को कीटों से किस तरह से बचाया जा सकता है?
4: देखिए ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कीटों का प्रकोप जो है छोटी अवधि फसलों में मुख्यतः 1.5 महीने क्रॉप की जब उम्र हो जाती उसके बाद आती है।
0: अच्छा।
4: और अक्सर उस वक्त गर्मी काफी होती है तो छोटे कीट ही पनपते हैं, बड़े कीट ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं।
0: ठीक।
4: तो इन छोटे कीटों में मुख्यतः थ्रिप्स हैं और माइट्स हैं जिसे कुटकी कहते हैं, थ्रिप्स है, माइट्स है, कुछ प्लूम मॉथ्स हैं, और खास तौर पे जो बीन की फसलें हैं या जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, इनमें मारुका टेस्टुलालिस जो है जो पत्तों को लपेट लेती है आपस में, उसका काफी प्रकोप देखा गया है। लोबिया में भी इसका बहुत प्रकोप होता है, और कुछ जगहों से तो यहाँ तक रिपोर्ट होता है कि 50-60% तक जो है नुकसान पहुंचाती है ये कीट। और इनका रोकथाम करने के लिए मुख्यतः किसान जो है कीटनाशी दवाओं पर ही आश्रित होते हैं
0: जी, जी।
4: और क्योंकि ये फसलें छोटी है, कीटनाशी दवाएं डालने के बाद बहुत कम वक्त रह जाता है फसलों को तोड़ने के बीच में, तो अक्सर जो है इनके अवशेष, कीटनाशियों के अवशेष फसलों पे पाई जाती है। तो इसके इसको ध्यान में रखते हुए हम ये सलाह देंगे कि जैविक पद्धति अपनाएं जिससे कि इन कीटनाशियों का दुष्प्रभाव कम हो सके
0: जी।
4: तो जैविक पद्धति में मुख्यतः परजीवी और परभक्षी कीट आते हैं जो कि काफी अच्छा नियंत्रण कर लेते हैं
0: जी।
4: बशर्ते कि इनको वक्त पे प्रयोग में लाया जाए, जैसे ही फूल खिलने शुरू हो फसल में उस वक्त अगर इनका प्रयोग किया जाए
0: जी। तो किस तरह से जैविक पद्धति अपनाएं, इसके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इसकी कैसी उपयोगिता है। और तो मुझे आप बताएं हमें कि सब्जी की जो फसलें हैं वो आमतौर पर काफी नाजुक मानी जाती है, तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अगर देखें तो कितनी सुरक्षित है इनकी खेती?
1: देखिए, जलवायु के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम सब्जी फसलों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब हम अवधि के साथ इसको जोड़ते हैं कि छोटी अवधि होने के कारण ये वातावरण के जो कारक हैं उनको सहन करने की अक्षमता बढ़ जाती है, यानी कि किसान को भी इनके होने वाले जो मौसम परिवर्तन के प्रभाव हैं उसको भी झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये तो एक सैद्धांतिक और मौलिक बात हुई
0: जी।
1: अब किस प्रकार से इस बदलते हुए वातावरण में हमारे किसान भाई अपनी जो सब्जी फसलें हैं उनका प्रबंध कर सकते हैं या उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा मुख्य विषय आता है गर्मी में सिंचाई की बात आती है कि भाई गर्मी में जैसे वृद्धि होती है तो जल मांग बढ़ जाती है, जमीन से भी पानी का नुकसान होता है इवोपरेशन के माध्यम से, और वाष्पोत्सर्जन का रेट भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में पौधों को, सब्जी फसलों को विशेष करके, इस अवस्था में बनाए रखना कि उनके अंदर मुरझान की स्थिति ना आए, क्योंकि अगर मुरझान की स्थिति में आ जाता है तो पौधे की बढ़वार है और या पुष्पन है या फलन है और फल का विकास भी प्रभावित होता है, चारों प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो सिंचाई के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम ये अक्सर कहते हैं कि जैसे गर्मी में तापक्रम दिन के समय अभी हाल का देखें कल ही 38 डिग्री के आसपास तापक्रम हमारे पूसा संस्थान में नापा गया, तो और आज संभावना है कि ये शायद 39 या 40 डिग्री तक जा सकता है। तो ऐसे में सब्जी फसलों में सिंचाई का समय क्या हो, कितना जल स्तर रखा जाए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम ये कहते हैं किसान भाइयों कि पानी आप पहले तो सुबह के समय दें या शाम के समय दें और दिन के समय पानी ना दें तो बेहतर होगा
0: जी जी।
1: लेकिन कई बार किसान की व्यवस्था होती है कि बिजली की उपलब्धता अगर दिन में है तो मजबूर हो जाता है, वो दिन के समय निरंतर पानी लगाने के प्रयास करता ही है। तो ऐसे में हम उनको सलाह देते हैं कि भाई आप पानी की मात्रा सीमित कर दें, पानी को भरा ना रहने दें, और एक बार गीला हो जाए तो उस पानी को दूसरी नाली में निकाल दें या क्यारी में निकाल दें, जिससे सिंचाई जल की भी बचत होती है और जल भराव के कारण जो पौधों में नुकसान होता है, जैसे अगर पानी भरा हुआ है तापक्रम ज्यादा है तो भरे पानी में तापक्रम में वृद्धि होने के कारण जड़ क्षेत्र और उसके साथ जो सहयोगी बहुत सारे, जैसे दलहन की बात करें, अगर आपने लोबिया लगा है, ग्वार लगा है, तो ये ऐसे सहजीवियों को भी आश्रय देते हैं, और जब तापक्रम अधिक हो जाता है पानी के साथ, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बन जाती है, तो उनको भी नुकसान होता है और फसल प्रभावित होती है। तो पानी देने का समय,
0: इसके प्रबंधन के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल इसके बात हम कर रहे हैं कि ये जो छोटी अवधि की जो फसलें हैं वो किस तरह से उपयोगी है, और इसमें मिश्रित खेती का भी जिक्र आया। डॉक्टर झा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर मिश्रित खेती की जाए तो इससे फायदा होता है। मैं चाहूंगी कि आप और विस्तार से समझाएं कि किस तरह से मिश्रित खेती छोटी अवधि के जो फसलें हैं उनको शामिल करके की जा सकती है और उससे किस तरह के लाभ होते हैं।
2: मिश्रित खेती, जैसा कि आपने बताया, वो तो आवश्यक है कि यदि हम अधिकांश हमारी जो खेती है वो बारानी है, और बारानी खेती में हम मानसून पे निर्भर रहते हैं, बरसात के पानी पे निर्भर रहते हैं, और उसमें यदि कमी आती है तो हमारी फसलें प्रभावित होती हैं कम पानी की वजह से। तो ऐसे में कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे दलहन है, तिलहन है, ये सब फसलें हैं, इसको पानी कम आवश्यकता है इसको, जबकि धान और गेहूं है उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि हम किसी तरह से इनको मिक्स करते हैं, यदि तो एक बैलेंस बनता है कि एक कम पानी वाली फसल है, कम पानी लेने वाली फसल है, एक अधिक पानी लेने वाली फसल है। और आज का विषय, आज का जो विषय है जिसमें छोटी अवधि, तो यदि हम छोटी अवधि इनकी भी करें जो ज्यादा पानी ले रही हैं और वो कम जल समय में पकेंगी, जल्दी पकेंगी, तो उनको पानी देने की भी आवश्यकता कम होगी, तो इस तरह से उस पे भी किसान का बचत होगा।
0: तो ऐसे में किस तरह की सिंचाई विधि को अपनाना चाहिए किसानों को?
2: हाँ, निश्चित रूप से यदि पानी की कमी है तो कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं जिसमें खासतौर से माइक्रो इरिगेशन व्यवस्था है, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, और इन सब पर भी और साथ साथ ऐसी किस्मों का भी विकास हो रहा है हमारे आईसीआर की तरफ से, जो पानी और पोषक तत्व इनके भी उपयोग करने की दक्षता उसमें बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो यूज न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंट वैरायटी जिसको कहते हैं कि ये दक्ष वैरायटी का भी विकास जो है वो इस तरह से इस को लाभकारी बनाता है किसानों के लिए कि कम अवधि कम खर्च ज्यादा फायदा।
0: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
5: पूजा भाती भाती कोर्तलामु झाड़े बोईड़ा दोगड़ा पानी ये सब हमरा छे, इनु वाचाड़ीन राखनो अपनी जवाबदारी छे। यो गीत इनु पर आधारित छे, ती शंभु भाष्य।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: હમણે આપું એક સુંદર શું પહેર્યું છું ભીલી ગીતને સાંભળ્યું અને એના બ્રેકની બાદ ફેરથો એકવાર ફેર તમારું બહોત બહોત સ્વાગત કરું છે રેડિયો ટાટિયા ભીલ 90.8 FM એના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં। કિસાન ભાઈઓ, આપણું લગાતાર કમ અવધિમાં કંઈની કંઈની ફસલે જો હે તે થઈ શકે હે અનાધિક મુનાફો આપું લઈ શકીએ તેના બારામાં આપણું લગાતાર ચર્ચા કરી રહ્યા હે વિશેષજ્ઞોના માધ્યમથી। આપણે ઘણી ખરી જાણકારીને હજુ તક સાંભળી હે અને હજુ એના કાર્યક્રમને આગાડી બઢાવતા જઈને હજુ સાંભળીએ કે એના કમ અવધિમાં કંઈની કંઈની ફસલે આપણું કરવામાં આપણો કિસાન કરવામાં સક્ષમ થઈ શકે હે।
2: हमारे देश में छोटी अवधि वाली फसलों की जरूरत और महत्व लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि लंबी अवधि वाली फसलों की भी जल्द पकने वाली किस्में तैयार की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर अरहर की ही बात करें तो MA3 किस्म 220 से 250 दिन में तैयार होती है, जबकि पिछले साल तैयार की गई पूसा अरहर 16 सिर्फ 120 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है, यानी आधे समय में। इसी तरह अगर धान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली IR 36, IR 64 और महामाया ऐसी किस्में हैं जो पकने में 140 से 150 दिन का समय लेती हैं, जबकि JR 201, JR 245, पूर्णिमा और तुलसी सिर्फ 100 से 115 दिन में ही पक जाती है। सरसों की पूसा विजय 145 दिन में तैयार होती है, जबकि पूसा सरसों 25 और पूसा सरसों 28 की अवधि केवल 107 दिन है। नागपुर स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने एक नई किस्म विकसित की है। योगांक नाम की यह किस्म 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आमतौर पर हमारे देश में कपास को पकने में 200 से भी ज्यादा दिन लग जाते हैं। युगांक को विदर्भ और तेलंगाना के किसानों के लिए एक वरदान माना जा रहा है। उम्मीद है कि अगले साल तक ये किस्म किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह की और भी बहुत सारी जल्द पकने वाली किस्में तैयार की जा रही हैं।
3: तो आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर झा आपने बताया था कि किस तरह से कई अनुसंधान किए जा रहे हैं और हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से नई किस्मों का ईजाद किया जा रहा है, लंबी अवधि की फसलों को भी कम अवधि में बदला जा रहा है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी इसकी?
4: जैसा आपने बताया कि लंबी अवधि वाली किस्में जो थीं या फसलें हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर तोमर ने बताया था कि गन्ने की फसल है वो लगभग पूरा साल ले लेती है, उसी तरह अरहर की फसलें हैं वो 8 महीने 9 महीने की फसलें हो जाती थी। तो ऐसी फसलें उसमें हम उनको बहुफसली पद्धति में नहीं ला पाते हैं। किसानों को मूल रूप से जो मुनाफा और लाभ होना चाहिए वो एक फसल नहीं दे पाती है। ऐसे में यदि उनकी हम अवधि कम कर देते हैं तो वो किसी न किसी फसल चक्र में घुस जाती हैं, फिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी आय बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ तो फसलें ऐसी हैं जो कम अवधि की ही होती हैं। उदाहरण के लिए जैसा मूंग उर्द मैंने बताया था, लोबिया है या और सब फसलें हैं या सब्जी की फसलें हैं, लेकिन जो लंबी अवधि की फसलें हैं उनमें भी आयु कम करने की, उनकी भी अवधि कम करने की अनुसंधान हमारे परिषद के माध्यम से किया जा रहा है, देश के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, ताकि स्थानीय परिस्थिति अनुसार अच्छी किस्म जो कम अवधि की हो, चाहे वो धान की एक किस्म है, धान की एक किस्म पूसा बासमती 1509 है, अब वो उसमें उसकी अवधि कम कर दी गई है लगभग 15 से 20 दिन की, तो उसमें कम अवधि होने से उसकी 2 सिंचाई लगभग बच जाती है। तो ये जो सिंचाई बच जाती है तो सीधे सीधे तौर पे किसान को फायदा होता है। अब अरहर की किस्म है उस पर भी हमारा अनुसंधान बहुत सघन हो रहा है और हमने देखा है कि जो एक्स्ट्रा अर्ली, मतलब अर्ली मतलब छोटी से भी अति छोटी, लघु से भी बहुत कम अवधि में लगभग 110 से 120 दिन की अवधि, जबकि अमूमन 240-250 दिन लंबी अवधि की अरहर की किस्में हैं, कुछ मध्यम हैं जो 150 से 190 दिन की हैं, 150 से कम दिन की कुछ किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन अब 120 दिन से भी कम समय में यानी 4 महीने में, तो 4 महीने की फसल हो जाने के बाद ये जो किस्म है ये किसी भी सिस्टम में फिट हो सकती है, फसल चक्र में फिट हो जाएगी। तो इसके लिए भी तैयारी हमारी अनुसंधान चल रहे हैं। इसी तरह से गन्ना हो गया, धान है, या जो भी लंबी अवधि की फसलें हैं, या छोटी अवधि की भी फसलों में, जैसे मैंने बताया मूंग की अवधि कम करके पिछले साल दो किस्में निकाली गई हैं, पूसा ये आईपीएम 205-7 जिसको विराट कहते हैं, और शिखा आईपीएम 410-3, ये दोनों किस्में जो आई हैं, ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतवर्ष की संस्था ने इतनी कम अवधि की मूंग की किस्में तैयार करके दी है, और आने वाले समय में ये किसानों
3: के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। तोमर जी, आपसे भी हम जानना चाहूंगी कि सब्जियों के मामले में कुछ ऐसी किस्में जिनका भी हाल में अनुसंधान करके ईजाद किया गया है, जो कम अवधि की है और बेहतरीन फायदा दे रही है किसानों को।
5: देखिए, कम अवधि में जैसे हम बात कर रहे हैं कि कम अवधि के साथ अधिक आय कैसे होगी, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे धनिया एक ऐसी सब्जी फसल उभर के सामने आई है कि इसका इस्तेमाल हर एक घर में पूरे वर्ष और हर दिन होता है।
3: बिल्कुल,
5: तो मांग हमारे पास धनिये की है, और अब धनिये में किस्मों की उपलब्धता या बीज की उपलब्धता के कारण ये संभव है कि हमारे किसान भाई धनिया को उगा सकते हैं। धनिया की जो फसल है, जैसे अभी हम कहें कि 35-40 दिन में या 38 दिन के अंदर पहली एक कटाई इसमें मिल जाती है। अभी मौसम ऐसा है कि एक बार बुआई करें और निकाल लें, फिर दोबारा उसकी बुआई करें और फिर निकाल लें। इस प्रकार से 40-40 दिन के अंतर्गत पे हमारे किसान भाई धनिया की फसल ले सकते हैं। दूसरा जो है, मैं बताना चाहूंगा कि पालक की हमने बात की थी पहले, पालक में पूसा भारती या आल ग्रीन, ये दो किस्में ऐसी हैं जिनको किसान भाई लगा सकते हैं, अभी गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं, और ये भी 35-40 दिन में एक कटाई दे करके निकाल सकते हैं, फिर दोबारा उसको दूसरी फसल को रोपाई की जा सकती है। और साथ ही साथ में अभी दो फसलें ऐसी हैं जिनको हम सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा बेबी कॉर्न एक फसल है
3: जी।
5: ये 55-60 दिन में तैयार हो जाती है, तो इसको भी किसान भाई अपना सकते हैं,
3: और काफी मांग भी बहुत अच्छी है,
5: किसान भाइयों ने अपनाया भी है। हमारे जी। दिल्ली के आसपास के कई ऐसे जिले हैं हरियाणा में जहां पे किसानों ने इसको सघनता से उगाया है और उसका पूरा भरपूर फायदा भी लिया है, क्योंकि कम अवधि है तो साल में 3-4 फसलें आसानी से ले सकते हैं।
3: क्योंकि डॉक्टर सिंह, ये बताएं कि कम अवधि की ये जो फसलें हैं और जो खासतौर पर ईजाद की जा रही है, नई नई किस्में हैं, इनमें उपज या गुणवत्ता के मामले में किसी तरह का असर तो नहीं आता है?
5: देखिए, जब हम उपज की बात करते हैं और गुणवत्ता की, ये दोनों एक ही चीज के प्रतिपूरक हैं। हमको उपज चाहिए, उपज के साथ उपभोक्ता को गुणवत्ता चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो जब जातियों का विकास किया जाता है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है कि उसकी उपज भी हो जाए और उसकी उपयोगिता यानी कि उसके पौष्टिक गुणों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये तो हमारे जो ब्रीडर हैं सब्जियों के, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, बैगन है, बैगन आप देखते पूरे साल लगता है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं, अभी कुछ किस्में ऐसी हैं जिनको किसान भाई अभी गर्मी में भी लगाते हैं, और गर्मी में कई बार बैगन के बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। तो किस्म विशेष का अपना महत्व रहता है, जैसे बेबी कॉर्न हमने एक बताया, बैगन का एक स्थिति है जिसको फायदा, इसके अलावा लोबिया एक ऐसी फसल है जिसको अपनाया जा सकता है कम अवधि के रूप में, और वो रोपाई के 35-40 दिन बाद तुड़ाई संभव है, दलहनी फसल है, और एक बार रोपाई करते हैं तो गर्मी में 4-6 बार तुड़ाई उसकी सब्जी की ली जा सकती है, तो निरंतर किसान को आमदनी का जरिया रहता है। जैसे अभी गेहूं की कटाई के बाद किसान को पैसे की आवश्यकता है, तो गेहूं की बिक्री करेगा, और उसके बाद अगर उसको निरंतर आमदनी चाहिए तो सब्जी फसलों को अपनाना पड़ेगा, और वो भी छोटी अवधि की, ताकि उनको निरंतर कम समय में उनको पैसा मिलता रहे, ताकि उनको किसी पैसे के लिए किसी की ओर आश्रित ना होना पड़े या निर्भर ना होना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में
3: एसके सिंह, आपसे जानना चाहूंगी कि बागवानी के क्षेत्र में, फलों के मामले में खासतौर पर, किस तरह के अनुसंधान इस दिशा में हो रहे हैं?
6: फलों में तो ये देखा गया कि जब हम सुधार के कार्यक्रम में जब देखते हैं कि एक अर्ली हो या एक्स्ट्रा अर्ली क्रॉप मिल जाए, जैसे फल लगाते हैं उसमें मध्य अवधि वाली है, लेट जो लेट या लंबी अवधि वाली होते हैं, तो जैसा जलवायु जैसे परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ ये देखा जाता है कि जब भी किसान जब कोई भी किस्म या लगाता है तो वहाँ यह देखे कि कुछ अर्ली हो, कुछ एक्स्ट्रा अर्ली हो, कुछ मध्य हो, कुछ लेट हो, तो ये लगाते हैं तो उनके पास एक ये विकल्प रहता है कि अगर मान लीजिए कि ओलावृष्टि हो जाए या बेमौसमी बारिश हो जाए, तेज हवा चल जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे आम है, आम में जो सारी जो अगेती जो जो किस्में हैं उनमें फल लग चुका है और जैसे कि दो बार बारिश हुई या ओला पड़ा है जो जैसे उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर क्षेत्र है वहां पे, या कश्मीर में जहाँ पे सेब जहाँ फूल आए हुए थे वहां पे बिल्कुल चोट करके उनको बिल्कुल बिल्कुल तोड़ डाला है, तो यहाँ एक विकल्प होता है किसान के पास कि जब किस्म की चयन करें तो साथ ही कुछ अवधि में भी थोड़ी सी तब्दीली सी रहे कि तीन चार से ज्यादा किस्म रहे जिससे कि जिसमें किसी में पुष्पन थोड़ा पहले हो किसी में बाद में हो, तो वहां वो बच सकता है।
3: जैसे सेब के बागों का ही आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आप उदाहरण के तौर पर आप समझाएं कि किस तरह से बागों को उन्हें लगाना चाहिए था।
6: अब जैसे सेब के बाग लगाते हैं तो यहाँ एक ये देखी जाती है कि सिर्फ किस्में ही नहीं लगाते, वहां पे एक पोलिनाइजर जो परागण में सहयोग देता है, और यहाँ देखें कि दोनों ऐसी किस्में हो जिनमें परागण भी साथ साथ हो और सेट भी बने और फल भी बढ़िया बने, तो यह जो अगेती किस्में हैं उनके लिए भी जायज है और जो दीर्घ में पकती हैं जो लेट पकती हैं तो वहां भी ये किस्मों को लगाना जरूरी होता है। और जैसे जैसे अंगूर है, अब अंगूर में क्या होता है कि कुछ पहले पकती है कुछ गुच्छे कुछ बाद में पकती है, तो इसे अगर हम समान रूप से एक समय पर पकाना चाहते हैं तो जैसे वृद्धि नियामक है जैसे इथरेल है उसका यूज जो है करीब 250 से 400 ppm, अगर पौधों को पकने जब पकने के तैयार हो जाते हैं एक महीने पहले का छिड़काव कर दे तो सारे गुच्छे एक साथ पक सकते हैं, तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको अपनाकर किसान जो है इनमें गुणवत्ता सुधार फलों में कर सकते हैं, चाहे वो आम हो चाहे वो नींबू वर्गीय फल हो चाहे अमरूद हो, तो यहाँ ये सारी चीजें वो कर सकता है।
3: बिल्कुल, और गुणवत्ता की बात हो रही है तो जैविक खेती अगर आप करते हैं तो उससे अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है, और कीट नियंत्रण के मामले में भी डॉक्टर विश्वजीत आपने बताया कि जो जैविक विधि है वो कितनी कारगर है। मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ा विस्तार से और बताएं कि किस तरह से जो किसान है वो इस विधि को।
7: देखिए, जैविक विधि थोड़ी लंबी ड्यूरेशन तक चलती है क्योंकि हमारे जो परजीवी और परभक्षी कीट है ये अपना समय लेते हैं जो नाशिकारक कीट हैं उनको नियंत्रण करने में, लेकिन सबसे मुख्य बात ये है कि इनका समय पर जब जरूरत हो उस वक्त प्राप्त होना, उस वक्त ये कहाँ से प्राप्त करेंगे ये हमेशा किसान भाइयों के सामने समस्या रहती है।
3: जी।
7: तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो समय निकल जाता है जब इनका सही टाइम पे सही समय पे उपयोग होना चाहिए, तो इसलिए जैविक विधि जो है अक्सर किसान भाई कहते हैं कि ये कारगर नहीं है, अगर समय पे करे तो ये बहुत कारगर होती है, और इसमें खास तौर पे जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए तो नीम खली का जो अर्क निकाल के स्प्रे किया जाता है 4% पे कुछ क्रॉप्स में करते हैं, कुछ क्रॉप्स में 5% पे करते हैं, वो काफी कारगर होती है, खास तौर पे जो थ्रिप्स है माइट्स हैं इनके लिए मीली बग वगैरह है
3: जी।
7: इनका जब प्रकोप बिल्कुल शुरू में जब इनकी जनसंख्या कम होती है उस वक्त अगर डाला जाए तो इनकी जनसंख्या बढ़ नहीं पाती है, किसान भाई वो मौका चूक जाते हैं अक्सर।
3: अच्छा।
7: क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं ये उनके नजर में नहीं आते, जब इनका प्रकोप बढ़ जाता है तब ये नजर में आते हैं, तो तब तक बहुत देर हो जाती है, तो अगर किसान भाई थोड़ा सजग रहे और हर तीसरे चौथे दिन अगर अपने फसल को जरा बारीकी से देखें तो उनको ये कीट दिख जाएंगे, खास तौर पे जो कोमल कलियां है या कोमल पौधे के जो कोमल अंग है वहां पे ये कीट दिख जाएंगे, तो उस वक्त जो है ये जैविक पद्धति अपनाएं तो ज्यादा कारगर होगा।
3: जी,
7: नहीं तो अगर लेट हो गया तो फिर कारगर नहीं होती है। बाकी इल्ली वर्गीय जितने कीट हैं उनके लिए बैसिलस थुरिंजेंसिस है, जो 1 gram/L के हिसाब से अगर वो छिड़काव करे बहुत अच्छा काम करती है।
3: जी, जी।
7: और खास तौर पे जो बीन वर्गीय फसलें हैं, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, उसमें जो इल्लियां आती है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है, उनके लिए बैसिलस थुरिंजेंसिस बहुत अच्छा काम करती है।
3: डॉक्टर जी, हम मिश्रित खेती के बारे में भी चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि किस तरह से फायदेमंद है अगर छोटी अवधि की जो फसलें हैं वो ली जाती है, लेकिन एक धारणा ये भी है कि मिश्रित खेती करे तो जो मुख्य फसल है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। क्या ये धारणा सही है? इसमें किस हद तक सच्चाई है? क्या किया जा रहा है इस दिशा
4: में? नहीं, इसमें मिश्रित खेती में यदि कोई अनुपात में यदि कतारों का अनुपात नहीं रखते हैं तब तो नुकसान है, क्योंकि दोनों फसलों को फिर बढ़ने में असुविधा होगी। लेकिन यदि एक निश्चित मात्रा में कतारें एक मुख्य फसल की होंगी और फिर जो सह फसली हैं उनकी होंगी और इस कतारों

0: में यानी कतारों में यदि आप करते हैं तो बहुत ही लाभकारी है।
1: जी, यानी कि उचित विधि और उचित तकनीक से ही ये इस खेती को करना चाहिए। तोमर साहब, हम बढ़ते तापमान की और जलवायु परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बताएं कि जो सब्जियों की फसल है उन्हें इस बढ़ते तापक्रम से किस तरह का असर उन पर पड़ता है और किसानों को किस तरह से सजग रहना चाहिए ताकि जो उत्पादकता है, जो गुणवत्ता है, उस पर किसी तरह का प्रतिकूल असर न पड़े।
2: पहले तो मोनालिसा में डॉक्टर झा की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि मिश्रित खेती की आपने बात की है। मिश्रित खेती में हमारे बहुत सारे किसानों के हमने अनुभव देखे हैं कि जैसे फ्रेंच बीन एक ऐसी फसल है, दलहनी फसल है, बहुत वातावरणीय कारकों के प्रति सहन शक्ति कम रखती है, यानी कि बहुत जल्दी उस पर वातावरण के कारकों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई किसानों ने मिश्रित खेती के रूप में अपना करके फ्रेंच बीन की खेती को बहुत सफल बनाया है। वो उसका अनुभव ये है कि किसान भाई 2 से 4 कतारें लगाते हैं मक्का की, भुट्टे के लिए, उसकी बुआई पहले कर देते हैं और उसके बीच में 2 से 2.5 मीटर की क्यारियां बनाते हैं जिसमें फ्रेंच बीन लगाते हैं और उसकी लगाने की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
2: हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं इनमें पश्चिम की या उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम दिशा की हवाएं ज्यादा चलती हैं।
1: अच्छा।
2: तो बुआई की विधि में उसमें वो कतारों को दक्षिण उत्तर दिशा में बुआई कर देते हैं और उसके साथ फिर फ्रेंच बीन करते हैं, तो इसे एक सूक्ष्म जलवायु का विकास हो जाता है, छाया भी मिलती है और तेज हवा की गति को भी कम कर देते हैं और जो उसे उड़ने वाला पानी है वो वातावरण की हवा को थोड़ा ठंडक दे करके फसल को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। तो जो मिश्रित फसल की जो कंसेप्ट है बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं और कई भाई किसान भाई इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि उनके लाभकारी जो फायदे हैं, उनके जो फायदे हैं उनकी जानकारी या उनको अनुमान नहीं कर पाते हैं। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात आपने कही कि जो तापक्रम में बदलाव है, निश्चित रूप से इस वर्ष विशेष रूप से देखा कि वातावरण ने कई बार अपनी ऐसी करवटें बदली हैं कि महसूस हुआ कि गर्मी आ गई और फिर एक अचानक से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आया, बर्फबारी हुई और मैदानी क्षेत्र दोबारा फिर ठंडे हो गए। बीच में इस प्रकार के कई अनुभव इस वर्ष हमने इस मौसम को बदलते हुए महसूस किया है। ऐसे में सब्जी फसलें हों या दूसरी फसलें हों उनके बढ़वार पे, उनके फलन पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है अपने अनुसंधान के कार्यों में, हम परागण का कार्य करते हैं या बीज उत्पादन का कार्य करते हैं, तरह तरह की हमारी जो पेरेंटल लाइंस हैं या वैरायटीज हैं उनमें हमने देखा कि टमाटर तो बहुत अच्छे बन गए लेकिन उनमें बीज ही नहीं बना क्योंकि परागण के समय जब फल बना तब तो हो गया और फल बीज का विकास नहीं हुआ। ऐसे ही कई फसलों में अनुभव किया हमने, चाहे मूली का बीज उत्पादन था या शलजम का बीज बना या प्याज में भी हम देखते हैं, क्योंकि जब वातावरण में परिवर्तन आता है तो परागण करने वाले जो लाभकारी कीड़े हैं उनकी गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। अगर अचानक में तापक्रम वृद्धि होती है तो परागण वाहक कार्य करने वाले कीड़े अपनी गतिविधि को कम कर देते हैं, अपने आप को समायोजित करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए। और जो हमारा परागण की क्रिया, जो फूल में आज पराग बना है उसका इस्तेमाल अगर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए तो निश्चित रूप से जो स्टिग्मा है वो अबोर्ट कर जाएगा और उसे बीज का नुकसान होता है। ऐसे ही सब्जी के फलों की बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
1: जी।
2: तो बदलता जो वातावरण है, तापक्रम है, ये सब्जी फसलों को ज्यादा चुनौती पेश करता है अपेक्षाकृत दूसरी फसलों के।
1: डॉक्टर झा कुछ कहना चाहेंगे यहाँ?
0: यहाँ मैं डॉक्टर तोमर की बात में थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां बनी है, तापमान में परिवर्तन होता है और हमारी जो फसल है उनको उसका सामना करना पड़ता है, तो हर फसल की अपनी एक प्रकृति है कि वो किस तापमान के रेंज में वो पैदावार देगी। कोई खरीफ की फसलें हैं जब गर्मी का मौसम होता है, कुछ जारे की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं जो ठंड के मौसम में बनती हैं, सरसों चना वगैरह। तो ऐसे में जब ये जलवायु परिवर्तन होता है तो काफी कुछ महीना इनका छोटा सिकुड़ जाता है, जैसे जारा कम हो गया, गर्मी आ गई जल्दी, तो रबी की फसलें जो है उनको फोर्स हो करके उनको पकाया जाता है, ये फोर्स हो जाती हैं, यानी कि जबरदस्ती पकती हैं तो वो फिर पैदावार कम होती है। ऐसे में ही छोटी अवधि की जो किस्म

0: होते हैं ये स्केप कर जाती है, बच जाती है, जो बाद में जैसे रबी की फसल में ही बाद में यदि गर्मी अचानक बढ़ती है तो ऐसे में यदि कम अवधि की फसल होगी तो बच जाएगी। दूसरी तरफ खरीफ की यदि फसल है, कम अवधि की फसल है, तो ऐसे में वो जल्दी कट जाएगी, यानी कि अगर बरसात कम हो गया, नमी की कमी है खेतों में, तो वहां पर वो अपना पूरा साइकिल पूरा कर लेती हैं। तो ये इस वजह से भी काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है छोटी अवधि के।
1: डॉक्टर एस के सिंह, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर कि तापक्रम बढ़ने से किस तरह से फसलों पर उसका असर पड़ता है, इससे पहले आपने बताया भी कि परागण की दृष्टि से या फिर जैसे ओला या वृष्टि है उसकी दृष्टि से भी किस तरह से योजना बनानी चाहिए किसानों को। मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी कुछ सुझाव दें कि बढ़ते तापक्रम से बचाने के लिए जो फलों के बाग जिन्होंने लगाए हैं उन्हें किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए और किस तरह से उन्हें लगाने चाहिए बाग।
2: जैसा कि पहले मैंने बताया कि जब किस्म की चयन करते हैं तो वहां ये देखें कि से कम दो से तीन, मतलब कुछ अगेती हो, कुछ पछेती पकने वाली हो, या उसमें पुष्पण पहले हो फिर बाद में फलत बाद में लगे, तो इस तरह की किस्में तो वो चयन कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि परागण के लिए भी ये बहुत अभी आवश्यक होता है,
1: ठीक है।
2: और जैसे कि उत्तरी भारत में जैसे आम के बाग में आपने सुना कि अभी जो फल जो है टिकोले के रूप में आ रहे हैं, तो इसमें जो गर्मी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हम देखते हैं, करीब 40 डिग्री टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, तो यहाँ जो छोटे छोटे फल बने रहते हैं ये गिरना शुरू कर देते हैं, तो इन्हें इनका रोकथाम करना इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ एक पेनोफिक्स नाम की दवा आती है जो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं 15 ppm का घोल, करीब 2.5 milliliter प्रति 10 लीटर में घोल कर इसके जो है पौधों पर छिड़काव करने से जो फल जो गिर जाते हैं इनको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही जैसे कहीं परागण नहीं हो पा रहा है और जहां कि हम देख रहे हैं कि बहुत क्षारीयपन मृदा बनती जा रही है, जहां पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी का रोग है, प्रकोप है, तो यहाँ क्या देखा गया है कि जिंक की बहुत ज्यादा कमी होती है, और यहाँ जब परागण से संबंधित जितने भी ये होती है क्रियाएं होती है वो बिल्कुल नहीं होंगी, वहां फल नहीं बन पाता या बनके पौधे पे टिक नहीं पाता, गिर जाता है। तो यहाँ बेहतर होता है कि किसान जो है करीब 0.2 जो कहते हैं घोल बनाकर जिंक सल्फेट का छिड़काव कर ले, या सूक्ष्म तत्व कोई और का जो कमर्शियल घोल मिलता है उसको छिड़काव कर ले पौधे पे, और जिससे कि ये फल बने, बढ़वार ले सके और अंत तक अच्छी गुणवत्ता वाले बनके तैयार हो, तो ये सारे उपाय किसान कर सकते हैं।
1: जी,
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: अब बदलते मौसम का जिक्र कर रहे थे, ऐसे में हम देखते हैं कि जो कीट है उनका भी पैटर्न जो है वो लगातार बदल रहा है, ऐसे में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे इससे बचाएं अपनी फसलों को?
4: देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि आगे भी इस साल कम से कम तापमान काफी बढ़ेगा, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि रस चूसने वाली कीट खासतौर पर थ्रिप्स और फिर माइट्स जिसे कुटकी कहते हैं और कुछ लीफ माइनर जो खासतौर पर कद्दू वर्गीय फसल और टमाटर में लीफ माइनर का प्रकोप होता है, और ये काफी हद तक, शुरू में तो पता नहीं लगता कि कितना क्षति पहुंचाएगी, लेकिन ये काफी हद तक क्षति पहुंचा देती है, तो इनके लिए खास ध्यान रखना है। और बैंगन जो लोग लगाते हैं, जो किसान भाई बैंगन लगाएंगे, जो बैंगन का कीड़ा है वो तकरीबन 50% डैमेज कर देती है और हर किसान भाई इससे परेशान है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, इसका फेरोमोन ट्रैप बहुत ही कारगर है
1: जी।
4: और जो फल मक्खी है खास तौर पे इस सीजन में आपको फल मक्खी से सारे के सारे कद्दू वर्गीय फसलें जो है प्रकोपित होती है, तो उसके लिए जो क्यूल्यूर का ट्रैप आता है या जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप मार्केट में अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, और हर 15 दिन में उसका जो ल्यूर है उसको बदलना बहुत जरूरी है, उसको 15 दिन से ज्यादा ना रखें, तो इससे करीब 1 हेक्टेयर में 25 से 30 ट्रैप लगाना पड़ेगा आपको ठीक ढंग से नियंत्रण करने के लिए। और ये कोई किसान भाई अकेला ना करे, मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे एक गांव के सारे किसान भाई अगर मिलके करें तो ज्यादा फायदा होगा और आपको उसका असर दिखाई देगा। कोई अकेला किसान भाई करता है तो उसको असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके उनके खेत में बाकी अड़ोस पड़ोस के खेत से भी कीड़े आ जाएंगे
1: जी।
4: तो वो उनको पता नहीं लग पाएगा। अगर सभी लोग मिलकर करें तो इसका फायदा बहुत होगा।
1: जी बिल्कुल। तोमर साहब, हमें ये बताएं कि दलहनी फसलों पर काफी जोर दिया जा रहा है और हमने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह से इसका रकबा भी बढ़ा है, यानी किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन तापक्रम के घटने बढ़ने की वजह से इसका असर दलहनी फसलों पर भी क्या पड़ता है?
5: देखिए, जो तापक्रम में अचानक वृद्धि या उसमें बदलाव आता है तो उसका निश्चित रूप से हमारी जो पुष्पन है या परागण की क्रिया है
1: जी।
5: दलहनी फसलों में चाहे आप मूंग की बात करें, उड़द की बात करें, और इनमें प्रभाव होता है। और जहां तक बात है सब्जी फसलों की, जहां हमें निरंतर फलियां लेनी है तो वहां पर भी प्रभावित होती है। हमने देखा कि अगर तापक्रम अचानक से बढ़ जाता है तो उस दौरान जो फूल बनते हैं या तो उनसे फलियां बनती नहीं है या गिर जाती हैं, तो ऐसे में किसान की जो तुड़ाई की अवधि है वो बढ़ जाती है या फसल की उपज कम हो जाती है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जैसे ही मौसम में बदलाव की स्थिति आती है, आजकल दूरदर्शन के माध्यम से या हमारे जो मुख्य समाचार हैं उनमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती, तो हम इस बात को किसान भाइयों को सचेत करते हैं कि आप उनकी जानकारी का फायदा लें। जब तापक्रम बढ़ने की स्थिति हो तो एक तो अपने खेत में वो सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू कर सकते हैं ताकि नमी की कमी ना हो और पौधे उष्णता का जो प्रभाव है उसको सहन कर सकते हैं। दूसरा, जब गर्मी बढ़ती है तो निश्चित रूप से पौधों में पानी का तो अपना महत्व रहा ही है, सूक्ष्म तत्वों का भी महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में पौधों में हरियाली बनी रहे और उनका विकास निरंतर रहे तो इसमें सूक्ष्म तत्व में जैसे जिंक और बोरोन है या कैल्शियम है, इनकी हम अक्सर बात करते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। किसान भाई हमारे नत्रजन के उर्वरक के रूप में यूरिया का या फॉस्फोरस के रूप में डीएपी का या सिंगल सुपरफास्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारा किसानों से जब संवाद होता है तो हम किसान भाइयों से पूछते हैं कि भाई आपने पोटेशियम उर्वरक का इस्तेमाल किया क्या? बहुत सारे किसान भाई इस बात को बड़े आश्चर्य के बाद सोचते हैं कि अरे पोटेशियम उर्वरक क्या चीज है। पोटेशियम उर्वरक का महत्वपूर्ण योगदान सब्जी फसलों में, विशेषकर दलहनी फसलें हों या पुष्पों के फलों में बदलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है या तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो पोटेशियम उर्वरकों का अपना विशेष महत्व है।
1: जी, तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप बताएं कि जो छोटी अवधि की फसलें हैं वो अगर किसान लेते हैं तो पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से किसानों को ध्यान में रखे करना चाहिए?
0: देखिए, जहाँ तक छोटी अवधि की फसल दलहनी फसलें हैं तो दलहनी फसलों में खास तौर से मिट्टी के अंदर नेत्रजन जो पोषक तत्व है उसको संश्लेषित करने की क्षमता होती है। उसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया से ये नेत्रजन जो है गैस जो वातावरण में होता है वो लेकर के वो मिट्टी में डालते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों आपको वो फायदा होता है नेत्रजन का, जिससे आपका खर्च भी कम हो जाता है। और इस वजह से इस तरह से अगर आप करते हैं पोषक तत्व तो आप निश्चित रूप से नेत्रजन की मात्रा कम करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, पोषक तत्व तो और भी हैं जैसे फास्फोरस एंड पोटास उनकी, और खासतौर से मोलिब्डेनम। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर की उनकी कमी पाई जाती है, कुछ और बोरन और जिंक ऐसे भी तत्व जो है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व हैं। तो इसलिए मृदा परीक्षण बहुत आवश्यक हो जाता है और उसके ऊपर हमारी सरकार भी काफी ध्यान दे रही है। तो जिन किसान भाइयों ने करवा रखा है वो तो उनको तो सूचना मिल चुकी है, और जिन्होंने नहीं करवाया है वो अवश्य करवा लें और अपने खेत के पोषक तत्व की जांच करवा लें। जांच के बाद जो अनुशंसा की जाती है उस हिसाब से अगर आप करते हैं। कई जगह पर जैसे 2% यूरिया का स्प्रे ये काफी फायदेमंद हो रहा है, तो 2% यूरिया का स्प्रे बना करके अगर आप फूल की अवस्था डालते हैं, थायो यूरिया का छिड़काव की भी अनुशंसा की गई है, तो ऐसे में आप पोषक तत्व का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में ना डालें, अनुशंसित मात्रा में ही डालेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कीड़े बीमारियां इन सब की भी समस्या बढ़ जाती है।
5: डॉक्टर जाम, मैं एक चीज आपको और शायद ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप जो चर्चा करके ये कहना बताना चाह रहे हैं किसान भाइयों को, जो दलहनी फसलें छोटी अवधि की हैं और नत्रजन ये वातावरण से फिक्स करती है स्वतंत्र नत्रजन को अपनी नोड्यूलेशन के माध्यम से, क्या किसान भाई अगर उसको राइजोबियम का टीका लगा के बुआई करें तो क्या वो बेहतर अल्टरनेट?
0: सकता बिल्कुल, उनके बिल्कुल लिए। सही कहा, राइजोबियम का टीका करके अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि खेतों में उनकी मात्रा पर्याप्त नहीं होंगी। ऐसे में यदि आप बीज के साथ में उनका प्रवेश करवा देते हैं मिट्टी में तो वो बेहतर स्थिति में होगी, वो ज्यादा नित्रजन
1: संचय। सिंह, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि फलों के बाग जिन किसानों ने लगाए हैं, सिंचाई के मामले में किस तरह का ध्यान रखे वो, और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी हमें संक्षेप में बताएं।
2: किसान भाई जैसे कि सब लगाए हुए हैं, अगर उन्होंने फल लगवाया हुआ है तो सिंचाई तो सबसे पहले है उसमें। अब जहां भी जितने भी स्कीमें आ रही हैं सरकार के द्वारा, उसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है, टपक सिंचाई जिसे कहते हैं, या स्प्रिंकलर हो, तो इनका सारा प्रयोग बढ़ रहा है और किसान अपना भी रहे हैं। और देखा यह जाए जहां ये नहीं लगा पा रहे हैं तो वहां जैसे नाली के रूप में सिंचाई करते थे तो वहां रिंग मेथड पे जाएं, जहां किसी पौधे में अगर रोग है तो दूसरे पौधे पर ना पहुंचे। तो ये छोटी छोटी बातें वो कर सकते हैं। साथ ही जहां पोषण की बात की, तो पोषण जैसा कि फल जो है ये बहुवर्षीय होते हैं और इनमें देखा गया है कि जैसा कि जो बताए बायोफर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक आता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजल फंजाई जो होती है ये बहुत उपयोगी होती है, और जो बहुवर्षीय फसल है जैसे फल है इनमें बहुत साल तक इसका असर होता है। और ये इसका उपयोग नर्सरी से लेकर जब इसको पौध को लगाते हैं खेत में वहां जरूर करना चाहिए। साथ ही एजोटोबैक्टर या जो स्पाइरलम इत्यादि जो है, या फॉस्फोरिलेटिंग जो बैक्टीरिया होती है, इनका उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे कि जब बहुत सूखा पड़े तो इनमें ये क्षमता होती है, जैसे कि मैंने माइक्रोराइजा बताया, ये करीब पौधे के जड़ से करीब 125 मीटर तक से नमी को ले सकती है। अच्छा। तो ऐसी तकनीक जो बहुत साधारण है, शुरुआत में हार्डली इसमें 500 से 1000 रुपया खर्च आएगा प्रति एकड़, लेकिन उसके दूरगामी प्रोग्राम होते हैं। और साथ ही कई सूक्ष्म तत्व, या फास्फोरस हो या जिंक हो या और भी तत्व हैं, इनके उपयोग पौधा ले पाता है। साथ ही जैसे कोई किसान जैसे उन्होंने लगाया हुआ है इंटरक्रॉप, तो इंटरक्रॉप लगाने के साथ ही यह देखना होता है कि सिंचाई दोनों को मिले
1: जी।
2: लेकिन यह ना हो कि जैसे मुख्य फसल अगर आम है और ऐसी फसल लगा दी जिसकी कटाई का समय हो गया, तो एक को पानी नहीं देना है, दूसरे को देना है। तो यहाँ ऐसे अगर आप स्थिति पैदा करते हैं तो जैसे आम है उसमें पुष्पण की एकदम बिल्कुल जो है उसके समय पर सिंचाई कर देते हैं तो उसमें पुष्पण जो है वो उससे इफेक्ट होगी और उसमें वो सारे पुष्प जो है या फल लगेंगे वो गिर जाएंगे। तो यह देखें कि जब अगर आप मिक्स लगा रहे हैं उसमें सिंचाई जो है अगर उसकी प्रणाली ड्रिप में है तो बेहतर होता है
1: जी।
2: अगर खुले पे लगाते हैं तो वो ये घातक होता है। ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। जब अगर इंटरक्रॉप लगाएं तो मुख्य फसल को देखें, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझे कि उसमें कब पुष्पण आने का समय होता है, कब उसमें फलत लगेगी, कब हार्वेस्ट होता है। और जो छोटी सी फसल है, या वो आप पपीता लगाया हुआ है या और भी सब्जियां लगाई हो, तो इतना ना लगाएं कि मेन क्रॉप जो है वो प्रभाव उस पर पड़े ले। साथ ही जैसे उनमें ऐसा ना लगाएं जैसे आलू लगा रहे हैं या प्याज जो बहुत ज्यादा खाद लेती है, उर्वरक लेती है, तो ये ऐसा ना हो कि मिट्टी को बिल्कुल उर्वरता कम कर दें और आपकी जो मेन फसल है वो उस पर।
6: किसान भाइयों, आजना एना कार्यक्रम में आपुए लगातार कम अवधि में कई नी फसलें आपु करी सकी अने तीनी फसलों करवा हरू कई नी वातों ने आपण ध्यान में राखवो जोवे तीना बारा में आजना एना कार्यक्रम में आपुए हामळ्यू, विस्तृत में हामळ्यू। किसान भाइयों, हमने समय थई गयो है तमारथी विदा लेवानो, एतरे बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम नी हाथे। किसान साथियों, आज ना इना कार्यक्रम में जो भी आपुए हिक्यू है, आशा करी है कि त्यू हंगलो आपू आपड़ गले थी उतारी अने आपड़ा खेतरों में इनो उपयोग करिए, इनो इस्तेमाल करिए, ना केवल यो आपू वातू वातू में इना नी खोवी दिए। अलग अलग प्रकार की कृषि है, खेती है, हमारा किसान भाई है, कहीं भी काम करवा आगाड़ी होशे जरूर है, पने अगर कहीं भी इनथी जोड़ेली कहीं भी मुश्किलें आवे है, अगर काम ने हमज नहीं पड़ी है, तो आप केविकी है, किसान विज्ञान केंद्र है, आप रेडियो डांडिया भील नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम है, तमो हमारी तक अपनी समस्या पुगाड़ी सको। हमो आना आप केविकी ना किसान जो विशेषज्ञ है अने जो भी गाँव में जो भी किसान भाई आवी ने लोगों ने समझाड़ी रहा है, सोशल वर्कर वाला समझाड़ी रहा है, अने जस सेवक आवीन समझाड़ी रहा है, तिना हांगड़ाना माध्यम थी अमुक कोशिश करूँ कि तमारी तक जे भी फसल तमु करवा मांगो तिनी सुविधा तिनी जानकारी तमारी तक पुगे, तिनु बीज तमारी तक पुगाड़ी सकी। तो किसान भाइयों, आशा करी है आज ना कार्यक्रम में तमु ये घनी खरी महत्वपूर्ण वातू ने जाणियो है, समझियो है, अने अपनी खेती में इनो आपू प्रयोग करवा वाला है। તો એની હાથે આજના એના કાર્યક્રમમાં બસ એટલું જ. મળેલા રહો અમારી હાથે રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM છાવાની આવાજ પર.

संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम

0: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो टैलेंट जो सिंगर हमारे साथ हैं उनका नाम है डॉक्टर उमेश। बाकी की बातचीत हम उन्हीं से करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर उमेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी।
0: थैंक यू सो मच।
1: सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, आप क्या करते हैं।
1: यस सर, मेरा नाम उमेश अवसर मोल। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज है, वहां से मैं हूँ बेसिकली। और पिछले 24 इयर्स से 24 सालों से मैं पुणे का रेसिडेंट हूँ और पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश। दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर उमेश मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो चलिए सुनते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं डॉक्टर उमेश के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत प्यारी गायकी। चलिए डॉक्टर साहब बचपन में चलते हैं, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: तो बचपन में हमारा जो मैंने जो इसे आपको बताया कि छोटे से गांव से मैं आता हूं, तो वहां पे जो है वो हर एक जो इंसान है वो टीचर ही बनना चाहता, क्योंकि टीचर इज अ रिस्पेक्टेबल पोस्ट। सो मैं प्राइमरी टीचर उस समय बनना चाहता था और उसी टीचिंग प्रोफेशन में मैं अभी हूँ। ठीक है, कॉलेज लेवल का टीचर हूँ लेकिन टीचर ही हूँ।
0: वाह, ये बहुत बढ़िया बात है कि जो बचपन में आपने सोचा था जैसा आप बनना चाहते थे आप वैसा ही बने हैं। चलिए दोस्तों इस बात पर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, डॉक्टर उमेश के बचपन के नाम।

0: बहुत प्यारा गीत। तो डॉक्टर साहब, बचपन में ही आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: यस, सो टीचर का बहुत प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, और टीचर्स ने बहुत प्यार दिया है और कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ाया है। तो मैं कुछ स्कूल से लेके कॉलेज तक के टीचर्स के नाम लेना चाहूँगा सर। मेरे स्कूल में जो पसंदीदा टीचर थे वो आवारे सर करके एक टीचर थे, देन 11th एंड 12th में दिवेकर सर के करके केमिस्ट्री के टीचर थे, प्रोफेसर दिवेकर। देन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे बी मैकेनिकल के कोर्स में डॉक्टर जाजू थे, वो हमारे एचओडी थे, उनके जैसा मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पीजी में एमटेक में डॉक्टर लोंडे सर थे, जिनका प्रभाव भी मेरे ऊपर है। और मेरा जो पीएचडी हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे डॉक्टर पीसे सर। तो ये सारे टीचर्स हैं सर जिनका मेरे ऊपर प्रभाव रहा है और जिन्होंने मुझे बहुत प्यार देके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने सारे टीचर्स को आज रेस्पेक्ट के साथ याद करते हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन पे है, उन्होंने आपके जीवन को बनाया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो कि डॉक्टर उमेश के टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। हम सुनते हैं।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। तो उमेश सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
1: तो सबसे पहले जो हम लोगों ने गाने सुने हैं या मेरे घर में सभी को जिनकी आवाज बहुत पसंद है और सब उनकी आवाज पहचानते थे, तो वो आवाज थी सुरेश वाडकर की। तो सुरेश वाडकर मेरे पसंदीदा गायक है। बाकी और भी सिंगर्स का गाना मैं पसंद करता हूँ, तो लाइक आशा भोसले है, एसपी बाल सुब्रमण्यम है, येसुदास है, और जो मराठी गजलें मैं सुनता हूँ वो भीमराव पांचाळे करके है, उनकी गजल मुझे सर ज्यादा पसंद है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खास हम का आपके फेवरेट गायक सुरेश वाडकर साहब हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे भी एक फेवरेट गायक हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उमेश साहब की ही आवाज में प्यारा सा गीत।

0: उमेश साहब, अपनी जिंदगी में सबसे पहले खाने की चीज आपने क्या बनाई थी, कब बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: या सर, तो सबसे पहले जो मैंने खाने की मतलब पीने की चीज बनाई थी वो चाय। तो चाय तो ठीक ठाक बनी थी। देन जो खाने की जो पहली चीज बनाई थी मैंने, वो गेहूं की रोटी बनाई थी। तो टेस्ट में तो बेस्ट थी, लेकिन जो उसका अपीयरेंस था वो कौन से कंट्री का नकाशा है वो अभी तक समझना मुश्किल है।
0: ओके,
1: बट ये दो चीजें मैंने बनाई थी।
0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये एक्सपीरियंस सभी को एक ना एक बार हो ही जाता है और बहुत मजा आता है उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए। बहुत प्यारी बात। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर उमेश साहब ने खाने की चीजों में, पीने की चीजों में क्या पहले बनाया। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उमेश साहब की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। सर आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? जब कभी भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो अपने को एंटरटेन करने के लिए क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं?
1: यस सर, तो गाने सुनना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ सर। मतलब मैं बहुत सारे एक्टिविटीज है, पढ़ते समय या बाकी भी कोई और काम करता रहा तो मेरा यदि बैकग्राउंड में गाना चल रहा हो तो मुझे बहुत फ्रेश लगता है। तो इवन कॉलेज के लाइफ में भी मेरे गाने चलते थे एक साइड पे और मेरी पढ़ाई चलती, तो सिंगिंग मतलब गाने सुनना मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यदि थोड़ा टाइम मिल जाता है तो फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट है लाइक फ्लूट है, हारमोनियम है, उसको मैं थोड़ा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिस इज नाइस। दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर उमेश बांसुरी भी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, हारमोनियम भी सीख रहे हैं, यही चीज हमें आगे चलाए रखती है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत डॉक्टर उमेश साहब की आवाज में।

0: तो मेरे एक विचार आता है कि जो मैं अभी हूं, जो मेरा लाइफ है, या मेरे जैसे कई लोग हैं जिनका लाइफ सवारा है, उसमें हमारी तो हार्डवर्क रिस्पॉन्सिबल है ही है। उसके साथ साथ जो हमारे देश के महामानव हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च करके, कुर्बानी देके हमारे जीवन को संवारा है। गौतम बुद्ध हो सकते हैं, शिवाजी महाराज है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, सावित्री माई फुले है, डॉक्टर आम्बेडकर है, बिरसा मुंडा है। इन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दिए हैं ताकि हमारा लाइफ अच्छा बने। तो यदि मुझे 24 घंटे के लिए अदृश्य किया जाए, तो मैं इन 24 24 घंटों में अतीत में जाके इन सभी महापुरुषों को मिलके आना चाहता हूँ, और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सचमुच क्रिएटिव। आपने बहुत अच्छा विचार किया है कि उन लोगों को शुक्रिया अदा करना ज़रूरी भी है, और ठीक है, हम लोग तमाम तरीके से उनकी मूर्तियां बनाकर और उनके जयंती मनाकर भी बहुत सारे उनको श्रद्धांजलि या शुक्रिया कहते
0: अर्पित
1: हैं, लेकिन आप पर्सनली जाकर उनसे मिलकर शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उमेश साहब की आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। उमेश साहब, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि या बेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट टिल डेट क्या रहा है?
1: सर एक्चुअली मैं, जैसे कि बोला है कि मैं टीचिंग फील्ड में जाना चाहता था बचपन से, और कुछ हालात ऐसी हो गई कि वो जो प्राइमरी टीचर वाला फील्ड मुझसे मिस हो गया है। और उसके बाद फिर मैं आगे जाके इंजीनियरिंग में गया और फिर मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे या दोस्त लोग थे, कुछ लोगों को लगता था, मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि मैं टीचर बनूं, मेरे दोस्तों को लगता था, उनको लगता था कि मैं इंजीनियर बनूं, और जो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनको लगता था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो
0: अरे वाह,
1: जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ तो मैं इंजीनियर तो था ही, टीचिंग फील्ड में था तो प्रोफेसर भी, मतलब टीचर भी था, और फिर डॉक्टर भी मेरे सामने लग गए पीएचडी मिलने के बाद। तो ये मेरे लिए एक गौरवपूर्ण एक बात है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आपके सभी चाहने वालों ने जो जो कुछ भी चाहा, आपने उनकी इच्छाएं पूरी की। आप टीचर भी बने, आप डॉक्टर भी बने, बहुत बढ़िया दोस्तों,
1: थैंक यू।
0: बहुत खूबसूरत बात। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर उमेश साहब की आवाज में।

0: सर एक बात बताइए, आप किसी अंतरिक्ष से आए प्राणी से मिलना चाहेंगे, किसी एलियन से मिलना चाहेंगे और क्यों?
1: या एलियन के बारे में तो बहुत बातें सुनी है और एक मूवी भी उसके ऊपर देखी है, तो
0: अरे वाह,
1: उससे या तो ऐसा लगता है कि यदि ऐसा कुछ है जो अंतरिक्ष से डिस्क आती है और उसमें से कोई एलियन आता है, तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो एलियंस है उनके या वो जहाँ पे जिस भी प्लेनेट पे रहते हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही रिच टेक्नोलॉजी है, ऐसा हमने सुना है। तो मैं उनसे बात करके हमारे प्लेनेट के ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर जो जो भी कुछ प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल इशू रहेंगे, एनर्जी के एनर्जी कंजर्वेशन के अलग अलग उनके जो तरीके रहेंगे, देन ऊर्जा के जो नए नए स्रोत वो इस्तेमाल करते होंगे वहां पे, उनके बारे में जानना चाहूंगा ताकि उनके तरीके इस्तेमाल करके हमारे प्लेनेट का लाइफ भी हम लोग एक अच्छे तरह से बनाना चाहेंगे। इसके लिए मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा सर।
0: वेरी इंटरेस्टिंग एंड पर्पसफुल। आपका उद्देश्य बहुत साफ है कि आप अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी से क्यों मिलना चाहेंगे, क्या चाहेंगे उनसे। बहुत बहुत बढ़िया बात। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर उमेश साहब की आवाज में। सर, हम अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए ना उनको।
1: यस सर। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो म्यूजिक है हमारा एक हम सफर बन के रहा, तो हमारे बहुत सारे स्ट्रेसेस जो है रिलीज होते हैं। बहुत सारे कुछ डॉक्टर लोग हैं वो म्यूजिक को थेरेपी करके इस्तेमाल करते हैं,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो मैं या जो जो सुन रहे हैं उनको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो और औरों को भी खुशियां प्रदान करो, इतना ही मैं बोल सकता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर उमेश सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत जहीन, बहुत सुलझी हुई बातें, बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारा मैसेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश।
1: थैंक यू सो मच समीर जी, आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया। आपका और सारे श्रोतागण जो मेरा ये गाना सुन रहे हैं और मेरी सराहना कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू सर।
0: दोस्तों, अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और प्रतिभा के साथ, एक और गायक के साथ आज के कलाकार का ये सीजन, आज के कलाकार की ये शाम सजने वाली है। हमारे साथ हैं भारत शेट्टी भाई। तो हम बात करेंगे भारत भाई से कि वो कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करते हैं। तो भारत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। हमारे सभी सुनने वालों के मुखातिब होइए, थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में कि आप कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करते हैं।
1: ठीक है समीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। मैं एक मुंबईकर हूँ। मुंबई मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 38 से ज्यादा साल काम करने के बाद अभी अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ। अपनी हॉबी को परसू करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, काफी कुछ मतलब वक्त ऐसे बिताता हूँ। बस इसके सिवा मेरा एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है। मेरी पत्नी भी शिक्षा के क्षेत्र में 35 साल काम करने के बाद एक जाने माने इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल के पद से 2 साल पहले रिटायर हुई है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा एक डेंटल सर्जन और ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। मेरी बहू भी एक क्वालिफाइड इंजीनियर है और वो एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती है। मेरा छोटा बेटा भी इंजीनियर है और अभी फिलहाल वो US में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा है। मेरे बारे में यही है, एक मेरा छोटा परिवार है, बस खुश हूँ।
0: ओके, और मुंबई में आप कहाँ पर रह रहे हैं जैसे आपने बताया?
1: जी, मुंबई में कांदिवली में वेस्ट साइड में मैं रहता हूँ।
0: ओके
1: जी,
0: कांदिवली वेस्ट। ओके
1: यस सर,
0: यानी कि आप ठाकुर कॉम्प्लेक्स की तरफ रहते हैं?
1: नहीं सर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स वो ईस्ट में आता है।
0: अच्छा, ठाकुर विलेज आता होगा।
1: ठाकुर विलेज और ठाकुर कॉम्प्लेक्स जो है वो ईस्ट में पड़ता है और हमारा जो है वेस्ट साइड में है, जहां पर सी साइड में, उस तरफ आता है।
0: ओके, ऑलराइट, आई गेट इट। तो चलिए दोस्तों, आपको पता चला कि भारत भाई कहाँ रहते हैं, क्या करते थे और अभी क्या करते हैं। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी टायर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और भारत भाई म्यूजिक परस्यू कर रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और ये गीत पेश करता हूं जो भारत भाई ने हम लोगों के लिए प्रिपेयर किए, हम लोगों के लिए गाए। उसके बाद मैं वापस आता हूं भारत भाई से और बात करने के लिए।

0: बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत और बहुत ही प्यारी गायकी। तो भारत भाई, मुझे ये बताइए कि आपने जैसा कहा था कि आप, पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होंगे, थोड़ा बहुत प्रोफेशनली टच करेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो आपने जैसे कहा कि आप एक मुंबईकर हैं, तो आपकी मेरे ख्याल से नेटिव टाउन भी मुंबई रहा होगा, एम आई राइट?
1: हाँ, वैसे तो बर्थ तो मुंबई में ही हुआ है, लेकिन नेटिव प्लेस मेरा मैंगलोर है, MANG मैंगलोर।
0: अच्छा, जी जी जी जी,
1: मैं कर्नाटका में, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब यहीं पर है, मुंबई में।
0: अच्छा, ओके ओके। सो आपने फिर इसके बाद कहा दैट यू हैड बीन वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में हम सभी लोगों को साधारण जो जानकारी है वो ये है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या तो बेंगलोर में है, या शायद हैदराबाद में है, या पुणे में है, या नोएडा में है। तो मुंबई में भी ठीक है, मैं मानता हूं किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉरपोरेट्स मुंबई में है, तो हो सकता है आपकी कंपनी का भी कॉरपोरेट उसमें रहा हो। तो सॉफ्टवेयर में 28 साल काम करने का क्या
1: 38 years,
0: ओ माय गॉड, नियर टू 40, चार डिकेड्स, 40 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आपको क्या लगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है? क्या उसमें इतनी ताकत सचमुच है? क्योंकि हम लोग उस इरा के लोग हैं, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स, कि जिन्होंने फोन भी नहीं देखा था, कभी फोन था ही नहीं, और उसके बाद आज के रेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो काफी कुछ तो बदला, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने या सॉफ्टवेयर जो ये इरा आया, उसने हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है? थोड़ा भारत भाई हमें ये बताइए ना, बिकॉज आप तो बिल्कुल उसी समंदर में तैर रहे थे। क्या तो अच्छा हुआ, क्या खराब हो गया?
1: देखिए, वो मेरा लंबा सफर था, मतलब इस इंडस्ट्री में जब मैंने एम्प्लॉयमेंट शुरू किया, तब मेरे पिताजी मेटल बॉक्स नाम का एक मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद पिताजी ने मुझसे कहा कि यार चलो कंप्यूटर सेक्शन में तुम एक ट्रेनी के हिसाब से आप ज्वाइन करो। तो हमने उस वक्त क्या था ना, जो मेन फ्रेम्स बोलते थे कंप्यूटर को, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स, उसको कम से कम 3,500-4,000 स्क्वायर फीट की जगह इंस्टॉल करने के लिए लगता था, जो आज माइक्रो और मिनी के एज में हम आ पहुंचे।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: उस समय क्या था, सब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ही सिर्फ ये हुआ करता था कंप्यूटर, और मेटल बॉक्स एक ऐसा कंपनी था जिनके पास कंप्यूटर था। तो वहां से मैंने शुरुआत की कंप्यूटर से इन्वॉल्व होने को, फिर वहां से ऑपरेशन सीखा, उसके बाद ट्रेनी प्रोग्रामर बना, उसके बाद प्रोग्रामिंग करने शुरू किया, फिर एक 10 साल में उस कंपनी में था। लेकिन मेटल बॉक्स एक कंपनी जो है ना, जो कंपनी के जितने भी एप्लीकेशंस है, जैसे पेरोल है, फिर इनवॉइसिंग है, जैसे इन्वेंटरी है, ये सब खुद का कंपनी मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे ना, उसी को हम बनाते थे। फिर मेटल बॉक्स होने के बाद 10 साल के बाद फिर मैं दूसरे केमिकल कंपनी में 1-2 साल था, वहां पर मैं फिर उस वक्त अभी सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डिवीजन कहते हैं, उस वक्त EDP बोल रहे थे उसको, EDP मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
0: ओके
1: ओके, या अभी उसको IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तरक्की होते गया, और आज के तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए। जबकि उस वक्त हमको अगर एक छोटा प्रोग्राम भी लिखना होता तो भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे से लिखना होता था, लेकिन अभी ऐसा है ना, अभी आधे से ज्यादा कोड जो है ना, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डेवलप ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, लॉजिक को सिर्फ आपको भरना होता है उसमें। तो ये जो मेरा जो सफर रहा ना, ये जो 30, 35, 38 years वाला, वो शुरू किया हमने एक ट्रेनी के हैसियत से, फिर आगे बढ़ते गए, और फिर जब मैं पटनी में आया तो पटनी में फिर हम कस्टमर्स के लिए सब सॉफ्टवेयर बनाने लगे, तो वहां पर डेट्स और टाइमलाइन और ये सब काफी महत्वपूर्ण था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर एक इंडस्ट्री है ना सर जी, वो ऐसा है ना कि आज जो सॉफ्टवेयर है वो कल ऑब्सोल्यूट हो जाता है, यू नो। तो आपको हमेशा लेटेस्ट के साथ रहना होता है। अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ नहीं रहे ना, तो आप ऊपर नहीं जा सकते इस इंडस्ट्री में। तो ये बड़ा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, और आज तो इतना कॉम्पिटिशन बड़ा है ना कि हर एक बंदा जो है वो इंजीनियरिंग में जाता है, और हर एक बंदा चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाए। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है अभी।
0: कॉम्पिटेटिव आई परफेक्टली अंडरस्टैंड सर कि ये बहुत कॉम्पिटेटिव है, बट मेरा सिंपल सा पूछने का पर्पस ये था कि क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने, इस डिजिटलाइजेशन ने हम सब नॉर्मल रूटीन लोगों की जिंदगी में क्या असर लाया है? क्या हम लोग बेहतर हो गए हैं, या क्या हम थोड़े अकेले हो गए हैं? क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स दोनों तरफ होते हैं ना, इसलिए पूछ रहा था मैं।
1: जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं तो सॉफ्टवेयर में से ही हूँ, इसके लिए मुझे तो प्रोस ही ज्यादा लगते हैं, कॉन्स कम लगते हैं। बट देखिए ना, आज एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ बैठकर समीर जी को अगर कोई कुछ पैसे ट्रांसफर करना हो तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ आज, जो कि पहले हम नहीं कर पाते थे। आज मैं बैठे बैठे घर पे जो मर्जी चाहे वो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। मेरा बैंक का ट्रांजैक्शन मुझे करना है तो मैं बैठे बैठे लैपटॉप पे कर सकता हूँ। ये सब चीज मेरे को लगता है ये बेनिफिशियल है, लेकिन कई लोगों का मतलब ये कंसेप्ट है, वो सोचते हैं कि जितना ऑटोमेशन होगा उतना मतलब बेकारी बढ़ेगी। मतलब वैसा तो नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री से मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा मतलब लोगों को नौकरियां मिल सकती है, और नए नए चीज का इन्वेंशन होते रहता है, एंड यू हैव टू बी विद द क्राउड एक्चुअली।
0: ओके, ऑलराइट। ये एक तरह से बहुत बड़ा डिस्कशन का मैटर है। सवाल तो मेरे दिमाग में बहुत उठते हैं। आपने कहा कि इसकी वजह से नौकरियां और मिल सकती हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले आपके ये गीत, आपके ये प्यारे से म्यूजिकल पैशनेट एंडेवर्स, इनको पहले हम लोग तवज्जो देते हैं, इनको सुने, और उसके बाद आई विल कम बैक टू भारत भाई फॉर मोर टॉक्स।

0: को गुलाब के कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिलरुबा।
1: बहुत सुंदर गायकी भारत भाई। चलिए, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, हमने थोड़ा बहुत आपकी इंडस्ट्री को टच किया, अब आपके इंटरेस्ट्स को अगर टच करें आपको बेहतर समझने के लिए, तो आप एक बहुत ही ज्यादा हैपनिंग प्लेस में रहते रहे, मुंबई। मतलब इससे ज्यादा हैपनिंग प्लेस पूरी इंडिया में मेरे ख्याल से शायद ही कोई दूसरा हो। हर चीज वहां पर बहुत भरपूर तरीके से घटती है, फिर वो चाहे फिल्में हो, संगीत हो, या फिर गणपति बप्पा हो, कुछ भी हो वहां पर जम के होता है। तो ऐसे में आदमी का चारों तरफ से डेवलपमेंट होता है, आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपना वक्त बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजों में गुजारते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी के बारे में पूछना चाहूंगा, आप किस चीज के बारे में पैशनेट है? सिंगिंग तो है ही है, उसके अलावा डू यू कलेक्ट समथिंग? क्योंकि क्या होता है, एक्सीडेंटली लोग, पता नहीं चलता उनको, लेकिन वो कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं जूते कलेक्ट करता हूं, बुक्स कलेक्ट करता हूं, कुछ लोग पेंस, कुछ लोग पर्सेस। तो डू यू कलेक्ट एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड व्हाई?
2: यस समीर जी, एक्चुअली बहुत ही वियर्ड है, मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो 200 पेन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स।
1: वाओ।
2: और उसमें से एक भी अभी चलेगा नहीं।
1: चले, कोई बात नहीं।
2: लेकिन जी जी, वो स्कूल के जमाने से मेरे पिताजी हीरो पेन यूज करते थे, तो वो तब से मुझे ऐसा लगा कि यार ये पेन इतना फेमस क्यों है। तो मैंने पापा से कहा था कि आप यूज करने के बाद उसको अगर डिस्कार्ड करना चाहे तो मत करिए, आप मुझे दीजिए। तो मेरे पास इतने पेंस के कलेक्शंस पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं वो, और वो एक चीज है। दूसरा, मैं रिस्ट वॉच का बड़ा शौकीन हूँ।
1: ओके।
2: जी, और रिस्ट वॉच एक्चुअली ये तो बड़ा किस्सा है, हर बर्थडे में मेरी मिसेस पूछती है मुझे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं हमेशा उसको बता रहा था कि यार मुझे एक अच्छा घड़ी गिफ्ट कर दो। तो जी, तो वो दो तीन साल मुझे हर साल पूछती है, तो हर साल मैं बोल रहा हूँ घड़ी गिफ्ट करो। फिर चौथे साल फिर वो मेरे को बोली, देखो घड़ी के सिवा और कुछ भी मांगो घड़ी नहीं मिलेगा। ऐसा है।
1: ओह, सो क्यूट। ओके।
2: तो ये बड़ा रेयर शायद मेरा हॉबी है। आज तक मेरे पास कुछ नहीं तो एकदम क्या बोलते हैं उसको, महाबादम टाइप के भी घड़ियां हैं जो चलती नहीं है, बट मैं रखा हुआ उसको, मैं रखा हुआ।
1: ओके ओके
2: जी जी।
1: वाओ, नहीं, दिस इज रियली वेरी वेरी गुड, वेरी क्यूट। घड़ियों का शौक होना भी अपने आप में बहुत बहुत ही खूबसूरत चीज है। आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट घड़ियां, और मोर ओवर अभी कुछ ही दिनों पहले मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी वेब सीरीज भी आई, जिसमें इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड फेम वॉचेस क्रिएट की। दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, ऑफकोर्स। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह के पैशनेट इंसान है हमारे भारत भाई। आप अपने पैशन के बारे में जरा सोचिए, व्हाट डू यू कलेक्ट, और आप आराम से देखेंगे ना कुछ पा जाएंगे जो आप कलेक्ट करते आए हैं आज तक। मे बी टी शर्ट्स, मे बी कैप्स, मे बी सॉक्स, कुछ भी वियर्ड हो सकता है, उसके लिए आप चिंता ना करना। मेरी वाइफ जो है वो की चेन्स कलेक्ट करती हैं, सो इट इज ऑल ब्यूटिफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले ये गीत सुनते हैं भारत भाई के, एंड देन वी विल कम बैक टू टॉक मोर।

बहुत खूबसूरत। चलो भरत भाई, अब आपके संगीत की बात कर लेते हैं। आपको हमने जान लिया कि किस तरीके के मस्त इंसान हैं आप, घड़ियों के शौकीन, पेनों के शौकीन, और आपने एक बहुत पुराने ब्रांड

0: उसले कृष्णा की मूर्ति सभी बैठे हों तो आप और आपको ये बिल्कुल परमिशन हो कि आप किसी भी एक सिंगर को स्टेज पर इनवाइट कर सकते हैं और वो आएंगे और आपके साथ गाएंगे
1: जी।
0: तो आप किसको बुलाना चाहेंगे, किसी एक को?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है।
0: आई नो
1: बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि सर जी ये ऐसा है ना कि मैं तो यू नो पुराने रेट्रो गाने ज्यादा पसंद करता हूँ और पुराने जितने भी सिंगर्स थे वो सब मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है और उनका जो टोनल क्वालिटी वॉइस का इतना अलग अलग था और वो उनकी आवाज को रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता है कभी भी मिल सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मोहम्मद रफी जी का जो गाना सुनने में भी अच्छा लगता है और वो काफी वर्सेटाइल भी है तो मैं तो मोहम्मद रफी साहब के साथ अगर स्टेज में गाने का मौका मिला तो जरूर जरूर गाऊंगा उनके साथ।
0: बहुत खूब बहुत खूब। ये हुई ना बात शानदार। तो मोहम्मद रफी साहब आपके बगल में खड़े होकर माइक लेकर जब गाएंगे तो कमाल तो होना ही है, क्या बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इन गीतों का लुत्फ उठाएं और वापस आएं भारत भाई के पास और बात करने के लिए

0: बात खूब। भरत भाई देखिए, हम लोग सामाजिक प्राणी होते हैं, हम लोग समाज में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, लेकिन कई कई मौके ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, सिर्फ झूठ है, पाखंड है। कहने को तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब काम पड़ता है, आप उन्हें पुकारो तो वो आते नहीं है। तो ऐसे दोस्त से क्या फायदा, कई बार ऐसा महसूस होता है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में दोस्ती का जज्बा सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में, रिश्तों से भी ऊपर। तो क्या आप अपने किसी दोस्त के बारे में हमें बताना चाहेंगे जिसने आगे बढ़कर आपका साथ हमेशा दिया, इमोशनल सपोर्ट किया, कभी डांटा भी, कभी बुराई भी हो गई, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, बट अगेन वापस आए, मिले और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या किसी ऐसे दोस्त के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे?
1: ऐसे तो काफी मेरे वैसे दोस्त हैं जो आज तक, मतलब स्कूल टाइम वक्त से जो मेरे साथ थे, वो उसमें से कुछ गिने चुने आज तक हम मिलते हैं। सब लोग अपना अपना प्रोफेशन में व्यस्त है, कोई डॉक्टर्स है, कोई कंप्यूटर प्रोफेशन में है, तो कोई यू नो टीचर टीचिंग प्रोफेशन में है, सब रिटायर्ड हो चुके हैं अभी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज समझता हूँ कि अ गुड पर्सन, यू नो, एक अच्छे इंसान की पहचान मेरे हिसाब से जो है वो एक ईमानदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, और मुश्किलों का सामना करने का क्षमता उसके उसमें होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे खराब दिनों में मुझे हेल्प करें, उसी तरह से मैं भी हमेशा आगे रहता हूँ। मतलब मेरे क्लोज जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मेरे पे इतने भरोसा करते हैं कि भाई कल को कुछ अगर हुआ तो एक ही बंदा है जो हमें सपोर्ट कर सकता है इमोशनली या एनी अदरवाइज, तो वो मेरे पास आता है। सिमिलरली मेरे दो तीन, मतलब इवन कॉलेज के कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे दो चार है जो आज तक हम लोग मिलते हैं, उसमें से कई दो तीन लोग तो मतलब हम लोग साथ में सिंगिंग के शोज भी करते हैं साथ में, और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब यू नो, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो आई ऑलवेज फील दैट यू नो एक ग्राउंडेड पर्सन हूँ, तो आई ऑलवेज लाइक पीपल हु आर यू नो जेन्युइन, यू नो जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेके चलते हैं, और यू नो एक अप्रोचेबल होना चाहिए बंदा। तो ऐसे मेरे चार पांच फ्रेंड्स हैं जो आज के वक्त काफी बिजी भी है, जो डॉक्टर है वो बहुत ही बिजी है क्योंकि उनको तो रिटायरमेंट तो है नहीं, तो वो लोग करते हैं, लेकिन हम मिलते हैं महीने में एक बार या कभी दो महीने में एक बार, ऐसे कभी आउटिंग्स करते हैं हम लोग फैमिलीज के साथ, तो ये चलता है सर जी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरीके से हम इंसान सामाजिक बने रहते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी का लुत्फ भी उठाते हैं। चलिए, आपके सारे दोस्तों को डेडिकेट करते हुए ये गीत आपके मैं यहां पर पेश करता हूं। आइए दोस्तों, इनका लुत्फ उठाएं, भारत जी के ही सभी दोस्तों को समर्पित।

0: बहुत खूब भारत भाई। भारत भाई, आज जो आपने नए फ्रेंड्स बनाए हैं आज के कलाकार फैमिली के, उन लोगों ने आपकी बातें सुनी, आपके गीत सुने, तो वैसे तो बहुत प्यारे से दोस्ती यारी हो ही चुकी है, बट फिर भी क्या कहना चाहेंगे उनसे, आप क्या संदेश आज देना चाहेंगे उन्हें?
1: ये संदेश, मतलब मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले कहूंगा कि एसएम रेडियो से जुड़े रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर चलिएगा और ईमानदार रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा वो है कि खुद की तुलना कभी दूसरे के साथ करना बंद करें और संगीत को हमेशा अपना सहारा बनने दें।
0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल, क्रिस्प, बड़ा ही प्यारा सा मैसेज। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये बात बहुत गहरी है। अपने को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग आपसे जलते हैं, आपको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको नीचा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये मान रहे हैं कि वो आप जो कर रहे हो वो नहीं कर सकते, इसी वजह से वो आपको नीचा खींचते हैं। सो यू आर डूइंग बेटर। तो इसलिए दोस्तों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और गीत सुनते रहिए, आज के कलाकार से जुड़े रहिए। भारत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू।
1: धन्यवाद समीर जी, थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में।